मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि दूसरी, तदनुसार 23 जून 2026 ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का।
1: यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है। इसकी संरचना बड़ी ही अद्भुत है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन इस पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन तभी संभव है जब हम इस शरीर की क्षमताओं का सही उपयोग कर सकें। 84 लाख योनियां हैं, उनमें केवल मनुष्य को ही वो ज्ञान और विवेक प्राप्त है जिसके कारण वो अपने करणीय और अकरणीय कर्मों पर विचार कर सकता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसमें और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं है। जितने भी दूसरे जीव हैं वो निद्रा, भय, मैथुन और आहार में लिप्त हैं। यदि मानव भी यही कर रहा है तो उसमें और दूसरे जीव में अंतर ही क्या है? दूसरे जीवों को ये अवसर तो मिला ही नहीं, ये तो केवल मनुष्य को ही शरीर के रूप में मिला है, एक साधन मिला है जिसके द्वारा वो केवल इस जन्म ही नहीं बल्कि अपने अगले जन्म को भी सुंदर बना सकता है, शांति और आनंद पा सकता है। उसे निरंतर ये ध्यान रखना है कि ये शरीर साध्य नहीं है, साधन है। लेकिन अक्सर हम भौतिकता के मकड़ जाल में उलझे हुए अपने शरीर को ही साध्य मान लेते हैं, इसकी सुंदरता के लिए खर्च करते हैं, इसे भरा रखने के लिए खर्च करते हैं, इसे जितना से ज्यादा सुख प्राप्त हो सके इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। साधन के रूप में अगर हम उपयोग करें अपने शरीर का तो ये हमें भवसागर से मुक्ति दिला सकता है। तुलसीदास जी ने कहा, शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी ये शरीर एक साधन है, ये एक मोक्ष का द्वार है। माँ के गर्भ से जब शिशु बाहर आता है तो अपनी बंद मुट्ठी में बहुत कुछ लेकर आता है और फिर जब बड़ा होता है, बहुत सारे सुकर्म को कर्म करता है, अपना सब कुछ यहीं छोड़कर खुले हाथों से इस दुनिया से प्रस्थान कर जाता है। लेकिन एक वस्तु वो अपने साथ ले जाता है, वो होता है उसका संस्कार। अच्छे या बुरे संस्कार उसका प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में उसके साथ जाते हैं। ये संसार एक बाजार है, मनुष्य तो खरीद बिक्री करने वाला एक तुच्छ प्राणी है। कुछ लोग सत्कर्मों के द्वारा लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बुरे कर्मों द्वारा इस मानव जीवन रूपी मूलधन को ही खो बैठते हैं। जिसने इस संसार रूपी बाजार में आकर भी अच्छी खरीदारी नहीं की, अर्थात सत्कर्मों के द्वारा अच्छे संस्कार नहीं बनाए, उसके लिए दूसरी हाट कहाँ है? पता नहीं ये मानव जीवन फिर मिले या ना मिले। इसीलिए कबीर और उनकी तरह जितने भी संत कवि हुए, उन सब ने संसार रूपी हाट से सत्कर्मों के द्वारा अच्छी खरीदारी करने की बात बार बार कही है। अच्छे संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं जो इस संसार में रहते समय हमारा साथ देते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ अच्छा सिखा जाते हैं, उनके लिए कुछ भलाई का काम करते हैं।

0: और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो आगे की दुनिया में भी ये संस्कार हमारा साथ देते हैं, तो क्यों ना अपने संस्कारों को बेहतर बनाने की दिशा में सोचा जाए।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे का। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: और गैर दलहनी फसल में आजुक कृषि चर्चा शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हमारा लोकन के खेती में बेसी से बेसी खादक रूप में जीवाणु खादक व्यवहार करवाक चाही। वो जैविक खेती के प्रश्रय देवाक चाही। माटिक उर्वरा शक्ति के टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण रखबाक लेल कृषि वैज्ञानिक लोकन द्वारा प्रकृति प्रदत्त जीवाणु के चिन्ह को विभिन्न प्रकारक पर्यावरण हितैषी खाद ओ उर्वरक बनौलन अछि, जकरा हम सब जीवाणु खाद अथवा जैव उर्वरक ओ अंग्रेजी में एकरा बायो फर्टिलाइजर सेहो कहैत छी। जीवाणु खाद में सूक्ष्म जीव सब उपस्थित रहैत अछि, तैं एकरा जीवित उर्वरक सेहो कहि सकैत छी, जे कल्चर के रूप में हमरा सबके उपलब्ध होइत अछि, जेना राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, पीएसबी बैम, माइकोराइजा, अजोला, नील हरित शैवाल इत्यादि। किसान भाई लोकनि, जीवाणु खाद सँ फसिल के बहुतो प्रकारक लाभ होइत अछि। पोषक तत्व के गाछक लेल प्राप्य अवस्था में बदलबाक काज सूक्ष्म जीव द्वारा कयल जाइत अछि। ई सब गाछक क्रिया में वृद्धि, फसलक गाछक लेल हार्मोन्स ओ विटामिन्स के निर्माण करैत अछि। संग संग एकर क्रियान्वयन एंटीबायोटिक्स ओ रोग निरोधक क्षमता के निर्माण करैत अछि। जीवाणु खादक व्यवहार कयला सँ फसलक गाछक जड़ि में नमी बनल रहैत अछि, संगहि कतेको प्रकार सँ फसलक गाछक सुरक्षा होइत अछि। ओ फसलक मनोनुकूल उपजा में ई सहायक होइत अछि। फसल में जीवाणु खादक व्यवहार कयला सँ वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गाछ के अमोनिया के रूप में सुगमता सँ उपलब्ध भ जाइत अछि, मुदा एकर मात्रा आवश्यकता अनुसार देबाक चाही। माटि में पहिने सँ उपस्थित अघुलनशील फॉस्फोरस के अन्यान पोषक तत्वक संग घुलनशील अवस्था में परिवर्तित ई कऽ दैत अछि। ओ तत्पश्चात गाछ के आसानी सँ फॉस्फोरस भेट जाइत अछि। जीवाणु प्राकृतिक होइत अछि, यह कारण जे खेतक उर्वरा शक्ति बढ़ैत अछि, संग संग पर्यावरण ओ मनुखक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ैत अछि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, जीवाणु खादक व्यवहार कयला सँ आर्थिक बचत सेहो होइत अछि, कारण ई रासायनिक उर्वरकक अपेक्षा सस्ता होइत अछि। जीवाणु खादक व्यवहार सँ दलहनी फसिल में 70-90% धरि नाइट्रोजन के आपूर्ति होइत अछि और गैर दलहनी फसिल में 10-30% धरि नाइट्रोजन के आपूर्ति होइत अछि। एतबे नहि, जीवाणु खादक व्यवहार सँ दलहनी फसलक उपजा में 10-30% धरिक वृद्धि होइत अछि, ओ गैर दलहनी फसलक उपजा में 5-21% धरिक वृद्धि सेहो भऽ जाइत अछि। परिणाम स्वरूप एतेक मात्रा में रासायनिक खाद उर्वरकक बचत भऽ जाइत अछि, जाहि कारणे मृदा संरचना में सुधार होमय लगैत अछि। जीवाणु खादक व्यवहार सँ पर्यावरण सेहो सुरक्षित रहैत अछि। तैं स्नेही किसान भाई बहन लोकनि, हमरा लोकनि के बेसी सँ बेसी खादक रूप में जीवाणु खाद के व्यवहार करबाक चाही, जे बेरक मांग अछि। अहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल, चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आपने सुना कृषि चर्चा। समय है हिंदी समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मेरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है लकवा रोग। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज और इनसे बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे लकवा यानी पैरालिसिस के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। लकवा का क्या कारण है, किन कारणों से लकवा हो सकते हैं?
2: देखिए, लकवे के अनेकानेक कारण हैं, किंतु मुख्य रूप से आम तौर पर यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य जन में किसी को भी हो सकता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में जैसे कि उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर या अथवा डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया अर्थात चर्बी की मात्रा का शरीर में अधिक होना, धूम्रपान या तंबाकू की लत एवं अत्यधिक शराब का सेवन या किसी भी प्रकार के नशे की लत, विशेष रूप से भांग या कोकेन का सेवन, यह लकवे की संभावना को कई कई गुना जो है सो बढ़ा देता है। अतः इनका परित्याग करना चाहिए। और कुछ कारण अनुवांशिक भी होते हैं। यदि परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को पर्व में पहले लकवा हो चुका है तो उनकी संतान को यह होने की संभावना सामान्य से अधिक होती है।
1: और जिनमें हाइपरटेंशन है यानी उच्च रक्तचाप है?
2: जिनमें उच्च रक्तचाप है उनमें सबसे प्रमुख कारण उचित निदान न लेना और अपनी दवा की डोज को मिस कर जाना, यह सबसे सर्व प्रमुख कारण है लकवे का।
1: अच्छा, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लग जाए उस वजह से भी कई बार लकवा देखा जाता है?
2: रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लग जाती है, कई बार हमारे सुषुम्ना नाड़ी में या स्पाइनल कॉर्ड में खून का जमाव हो जाता है अथवा चोट लग जाती है, इस कारण से भी लकवा होता है। और इस स्थिति में यदि सर्वाइकल रीजन में अर्थात गर्दन के रीजन में ये चोट लगी हो तो हाथ और पैर दोनों का लकवा होता है। और यदि सर्वाइकल रीजन से नीचे अर्थात कंधे या कमर के रीजन में चोट लगी हो तो दोनों पैरों का लकवा होता है। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में सिर्फ एक हाथ अथवा सिर्फ एक पैर का भी लकवा हो सकता है।
1: लकवा यानी उस अंग का शिथिल पड़ जाना, सुन्न पड़ जाना, उसमें किसी भी तरह की हरकत नहीं होती है।
2: लकवा एक आम अवधारणा के तहत यदि किसी अंग में ताकत की कमी हो रही हो तो उसको मानते हैं लोग, किंतु मेडिकल परिभाषा में हम लोग किसी भी अंग का सुन्न पड़ जाना, उसमें ताकत क्षीण हो जाना, इन सभी स्थितियों को हम लोग लकवे की श्रेणी में रखते हैं।
1: क्या कुछ लक्षण हैं जिससे ये पता चल सके कि ये जो मरीज है वो लकवे का मरीज है?
2: बिल्कुल हैं, जैसे कि आपको मुस्कुराने में दिक्कत हो रही हो, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही हो, चलने फिरने में संतुलन आपका गड़बड़ा रहा हो, तो आप एक सामान्य जन के नाते समझिए कि शायद कहीं आप लकवे के शिकार हो रहे हैं। ये प्रारंभिक लक्षण हैं।
1: बोलने में कभी कभी लड़खड़ाहट,
2: बोलने में लड़खड़ाहट, पानी पीने में दिक्कत, आप उचित उपचार समय पर लेने से आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं।
1: एक समय था जब एक जनधारणा थी कि लकवा का कोई निदान नहीं है, दैवी प्रकोप है, लेकिन आज मेडिकल साइंस का क्या कहना है?
2: आज के मेडिकल साइंस का कहना है कि लकवे शुरू होने के 5.5 घंटे के भीतर यदि आप किसी एडवांस्ड मेडिकल सेंटर में पहुंच जाते हैं और सीटी स्कैन में हम लोग इसको सिद्ध कर देते हैं तो कुछ दवाएं, कुछ इंजेक्शन हैं जिसको दे करके खून की नली में आई हुई ब्लॉकेट को हम लोग घुला सकते हैं और होने वाली क्षति को 80-90% या उससे भी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और यदि उससे विलंब से भी आप पहुंचते हैं, लकवा हो भी चुका है, तो भी उचित उपचार द्वारा 5-6 महीने में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आप पूर्ण रूप से सामान्य ना भी हो पाएँ किंतु 70-80% सामान्य स्थिति में आप जरूर पहुँच जाते हैं।
1: ऐसे कौन से परहेज हम रखें जिससे लकवा से हम बचे रह सकते हैं?
2: सबसे पहले अपनी जीवन शैली

0: कुछ दवाएं, कुछ इंजेक्शन हैं जिसको दे करके खून की नली में आई हुई ब्लॉकेट को हम लोग घुला सकते हैं और होने वाली क्षति को 80 से 90% या उससे भी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और यदि उससे विलंब से भी आप पहुँचते हैं, लकवा हो भी चुका है, तो भी उचित उपचार द्वारा 5 से 6 महीने में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आप पूर्ण रूप से सामान्य ना भी हो पाए, किंतु 70-80% सामान्य स्थिति में आप जरूर पहुंच जाते हैं।
1: ऐसे कौन से परहेज हम रखें जिससे लकवा से हम बचे रह सकते हैं?
0: सबसे पहले अपनी जीवन शैली में नियमित व्यायाम को शामिल करें। 30 मिनट प्रतिदिन, कम से कम 5 दिन सप्ताह में धूम्रपान ना करें, मानसिक चिंता तनाव से बचें और अपनी जीवन शैली को प्रकृति के पास रखें। अधिक चर्बी तेल मसाले का प्रयोग खान पान में ना करें। उच्च रक्तचाप या डायबिटीज़ यदि है तो उसका उचित उपचार कराएं तो आप लकवे से बच सकते हैं।
1: लकवा रोग के बारे में डॉक्टर मनीष कुमार धीरज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। वक्त है भक्ति संगीत का, तो सबसे पहले ये देशगान।

मनुष्य तन बड़ा ही भाग्य से मिलता है। इस तन को पाकर जिसने प्रभु भजन कर लिया, जिसने नाम जपन को जीवन में अपना लिया, उसका जीवन नया पार समझो। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में ये सुंदर सा भजन।

सच्चे भक्त को और कुछ ध्यान कहाँ रहता, वो तो अपने इष्ट की भक्ति में ही लीन रहता है, उनके ध्यान में मगन रहता है। भक्ति और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तभी तो प्रभु ने प्रेम के वशीभूत होकर कुंजगली में रास रचाया।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने ये भजन सुना। इसके पहले हमने आपको जगदीश सिंह के स्वर में सुनवाया था, अब लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ में ये सुंदर सा भजन।

वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से अगला कार्यक्रम रामचरित मानस गान, स्वर सविता देवी का।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित्र और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

रामचरित मानस गान। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। दिन के 10 आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे बज्जी का कार्यक्रम अंगना।

11 बजे आप सुन सकेंगे उपशास्त्रीय संगीत। NCERT का प्रसारण समय होगा 11:30। दिन के 12 बजे आप आनंद ले सकेंगे नए फिल्मी गीतों का। हेलो जिंदगी आप सुन सकेंगे दिन के 12:30 पर।

देशभक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर, 1:15 और 2:30 पर। आप आनंद लेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का। प्रादेशिक समाचार का समय होगा दिन के 2:00 और 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

रोजगार सूचना आप सुनते हैं 2:10 पर। बज्जी का लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे अपराह्न 3:00।

हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे तरुण कुसुम। नए फिल्मी गीत एक बार पुनः आप सुन सकेंगे शाम 5:40 पर। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। मैथिली संवाद, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे शाम 6:25 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नव ऊर्जा शाम 6:30 पर। किसान श्रोताओं का कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण समय होगा शाम 7:00।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दिन के 2 बजे। और शाम में 7:30 पर, 7:47 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे पटना केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:52 पर, 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात

0: गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला में सब श्रोता का आशीष का दिस नमस्कार,
0: और मेरी ओर से भी सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हूँ आपके साथ बबीता आशीष, आपको भी सुबह का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार बबीता, और जना कि हम सब सुविचार से कार्यक्रम का शुरुआत करे छी, ताजुक सुविचार है।
0: तो आज का सुविचार है, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आबे सोई कहाँ करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु या बड़े व्यक्ति को देखकर छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सिलाई का काम सुई से होता है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता। रहीम,
1: निश्चित तौर पर, और कहलो गया लेज कि सब व्यक्ति चाहे छोट हुए पैग हुए, चाहे धनी हुए गरीब हुए, सब एक समान छथि, सबके इज्जत देबाक चाहिए। और जखन अहाँ कोनो विपरीत परिस्थिति में फँसे छी या विपरीत परिस्थिति अहाँ के संगे अबैत अछि, तऽ जे आदमी के अहाँ सोचै छियनि कि सब अहाँ के छोट छथि, हमरा संगे किछु हिनका सने केना हम रहब, वएह व्यक्ति सबसे पहिले ठाढ़ होइ छथि। और वो व्यक्ति अहाँ के लेल कोनो तरह के केहनो मदद के काज पड़ै छनि तो संगे अहाँ के हरदम भेटतथि। ताहि दुआरे ई देख के नहि कि बहुत पैघ आदमी छथि, बहुत पहुँच वाला आदमी छथि, खाली हिनके सँ हम सम्पर्क राखी, ओ सम्पर्क अहाँके भऽ सकैए, समय पर काज नहि दिए। मुदा जे व्यक्ति के अहाँके बुझा पड़ैत अछि कि हिनका से रखला से हमरा की फायदा हैत, मुदा अगर किछु फायदा नुकसान से अगर बढ़ि के देखी तो संबंध अहाँके बेसी अकार्ड हैत।
0: बिल्कुल, और इसीलिए इस पे बिल्कुल ना जाए कि ये छोटा है, हमारा क्या काम आएगा। हर जगह हर का महत्व एक अलग अलग रखा गया है, तो इस पे हम बिल्कुल ध्यान दें। और अपने आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नज़र डालते हैं आज के दिन इतिहास के आईने में क्यों है खास इस पे। तो आज 23 जून है और आज ही के दिन यानी 1912 में एलेन ट्यूरिंग का जन्म हुआ। वे अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आज ही के दिन यानी 23 जून 2001 को राजेंद्र नाथ लहरी का जन्म हुआ। वे भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। 1934 में चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ। वे गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1936 में प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्म हुआ। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं। 2015 में निर्मला जोशी का निधन हुआ। वे मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की प्रमुख थी। आज ही के दिन यानी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 23 जून 2001 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करना और समुदाय में लोक सेवा के महत्व देने के लिए मनाया जाता है। तो ये थे आज के दिन इतिहास के आईने में क्यों है खास, इस पर हमने थोड़ी सी नज़र डाली। और आशीष जी, अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्यों ना शुरुआत एक मैथिली सुगम संगीत से करते हैं, क्योंकि जब भी शुरुआत भगवान का नाम लेके किया जाता है तो वो दिन अपने आप एक नया और खास होता है। तो आइए सुनते हैं ये मैथिली सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत, और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब वक्त हो चला है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालने का, यानी हालचाल का। और हालचाल के साथ है आशीष कुमार सिंह, तो आइए सुनते हैं हालचाल।
1: धन्यवाद बबीता। आज सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। वीरपुर में बिहार ग्रामीण बैंक के सहयोग से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एहिमे लोक सबके बैंकिंग सेवा, नियमित बचत, ऋण प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी देल गेलन। मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग संभावित बाढ़ के खतरा के देखैत तैयारी शुरू कऽ देलक। सबटा जिला में आवश्यक दवा और चिकित्सा उपकरण के भंडारण करे के निर्देश देल गेल अछि। कृषि विज्ञान केन्द्र सीतामढ़ी दिस से फल आ सब्जी सबके मूल्यवर्धन आधारित प्रशिक्षण देल गेल। वैज्ञानिक सब युवा सबके सब्जी उत्पादन

और मूल्यवर्धन के फायदा के बारे में जानकारी दलत। तकनीकी जानकारी, पैकेजिंग और विपणन से जुड़ल सुझाव से साझा कल गल। मुहर्रम के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न करवे के लिए काल्हिखन सीतामढ़ी नगर थाना परिसर में शांति समिति के बैसार आयोजित भेल। पूसा के महमदा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के आयोजन कल गेल। अही शिविर में मरीज सबके आँखि के जांच कल गेलन और हुनका उचित सलाह देल गेलन। 8 मरीज के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए सूचीबद्ध कल गेलन। समस्तीपुर पुलिस लाइन में 266 प्रशिक्षु सिपाही सबके एक वर्ष के प्रशिक्षण पूर्ण हुई पर पासिंग आउट परेड समारोह भेल। डीआईजी मनोज कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में भाग ललत। दलसिंहसराय आ शाहपुर पटोरी स्टेशन पर वाणिज्यिक परिसंपत्ति सबके ई नीलामी के द्वारा सफल आवंटन कल गेल। इससे रोजगार में वृद्धि होत और रेल यात्री सबके जरूरत के सबटा सामान उपलब्ध रहतन। महापौर अंजुम आरा के अध्यक्षता में काल्हिखन नगर निगम दरभंगा स्थित सभागार में सशक्त स्थायी समिति के बैसार आयोजित कल गेल। बैसार में कुल 17 एजेंडा पर चर्चा भेल। कुशेश्वर स्थान प्रखंड में कोसी या कमला बलान नदी के जलस्तर में काल सोम दिन से वृद्धि शुरू भ चुकल अछि। बताओल जा रहल अछि कि पिछला एक सप्ताह से नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा होय से कोसी नदी के वीरपुर बैराज के 7 फाटक खोल देल गेल अछि। एहि से पूर्वी प्रखंड क्षेत्र में कोसी के उपधारा के अलावा कमला बलान के जलस्तर में सेहो वृद्धि शुरू भ चुकल अछि। जलस्तर में वृद्धि से नदी सबके बहाव तेज भ रहल अछि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरे सबके तिथि सबके घोषणा कल गेल अछि। छात्र सब 25-30 जून धरि बिना दंड के फॉर्म भर सकै छथि। गोरापट्टी गाम में ब्रह्मस्थान परिसर में काल्हि सोम दिन से अष्टयाम शुरू भेल। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक के चेयरमैन अशोक सिंह ठाकुर दरभंगा शहर के महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के भ्रमण कलत। ओ संग्रहालय के सामग्री सबके देखत कहलत कि देश विदेश के बहुत रास संग्रहालय के हम देखलों, मुदा हाथी दाँत से निर्मित कला के वस्तु एतेक पैघ संख्या में आ एतेक सुंदर हमरा कतौ देखै ले नै भेटल। आइवरी म्यूजियम घोषित हेबाक चाही लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के। संभावित बाढ़िग्रस्त क्षेत्र में गर्भवती माता सबके सूची बनबे के निर्णय लेल गेल। मनीगाछी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में प्रखंड प्रमुख पवन कुमार यादव के अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी के लऽ कऽ अनुसरण समिति के बैसार भेल। मुहर्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखे के लेल काल्हि सोम दिन बहेरा थाना पर SDO वासुकीनाथ झा के अध्यक्षता में शांति समिति के बैसार भेल। धरोरा में आई 23 जून से 2 दिवसीय अष्टयाम यज्ञ शुरू भ रहल अछि। सहरसा में भीषण गर्मी के देखैत जिलाधिकारी दीपेश कुमार 27 जून धरि सबटा शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगा देने छथि। ई कक्षा 8 धरि के बच्चा सबके स्वास्थ्य के देखैत निर्णय लेल गेल अछि। सुपौल के एकमा गाम में बाबा पारसमणि महादेव मंदिर के पुनर्निर्माणक लेल पूजा कार्यक्रम के आयोजन भेल। मधुबनी जिला प्रशासन मुहर्रम के शांतिपूर्ण आ भाईचारा संगे मनबे के लेल पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था केने छथि। जिला के 451 संवेदनशील स्थान पर 902 दंडाधिकारी आ पुलिस पदाधिकारी के तैनाती कयल गेल अछि। सीतामढ़ी में अनुमंडल अग्निशामालय वेलसंड दिस सँ सुरक्षा के लेल जागरूकता अभियान चलाओल गेल। ग्रामीण सबके जागरूक करे के लेल मॉक ड्रिल आ लिफलेट के वितरण कयल गेल। आंधी आ बरखा सँ लोक सब प्रचंड गर्मी से कनी राहत महसूस कयलथि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम विभाग में चल रहल 7 दिनक प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त भ गेल। प्रशिक्षण लेवला सबके बीच प्रमाण पत्र वितरण कयल गेलन। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हालचाल।

0: और अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पे। मौसम विभाग द्वारा उत्तर बिहार के लिए 24 जून तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि एक दो दिनों में उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बादल छाए रहने, गरज तड़क के साथ बारिश तथा तेज़ हवा चलने की संभावना जताई गई है। इसके अनुसार बिहार में मानसून का प्रवेश के साथ उत्तर बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 38 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अब कुछ लोकल अपडेट्स की बात करें तो पारण पैरेट प्रशिक्षुक सिपाहियों का स्थान पुलिस लाइन लहरियस राय, समय होगा सुबह 7:23 पर। परीक्षा आचार्य शिक्षा शास्त्री के स्थान शिक्षा शास्त्र विभाग संस्कृत विश्वविद्यालय, समय होगा सुबह 10:00। बैठक बाढ़ अनुश्रवण समिति का स्थान प्रखंड सभागार क्यूटी, समय होगा सुबह 11:00। सेमिनार भारतीय ज्ञान मीमांसा के विविध आयाम विषय पर स्थान पीजी संस्कृत सभागार ललित नारायण विश्वविद्यालय, समय सुबह 11:23।
1: तो ये कि हम सब अहाँ के जानकारी प्राप्त करते रही किछ लोकल अपडेट्स के बारे में और हालचाल के माध्यम से किछ अपन अगल बगल के सबटा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि के बारे में सेहो जानकारी प्राप्त केलहुँ। और कतौ न कतौ एखन देख रहल छी हमसब जे मौसम बदलि रहल अछि। मौसम हमरा अहाँके सावधानी से रहैके लेल कहैत अछि, कियाकि बहुत गर्मी छल और एके बेर में आंधी और बरखा अयलाके बादसँ कनि मौसम में परिवर्तन भेल, फेर गर्मी शुरू भऽ रहल अछि। तऽ कतौ ने कतौ जे एखन हमसब देखै छी मौसम बदलैत मौसममे, ताहिमे स्वास्थ्यके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ैके बहुत बेसी संभावना रहैत अछि। खास कऽ के बच्चा जे छथि और बूढ़ जे छथि हुनका सबके स्वास्थ्य पर बेसी ध्यान देबाक चाहियनि। और हम अहाँ सेहो सतर्क रही और कतौ घरसँ बाहर निकली तऽ पानि जरूर पीब के निकली, जैसे लू लगे के संभावना से कम भर जाए।
0: बिल्कुल, और मौसम जब चेंज होता है ना तो हर घर ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे और बूढ़े को ये जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण हम और आप ही होते हैं। कई बार बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो आते ही वो सीधे फ्रिज का पानी निकालते हैं और गटक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गर्म से आए और एक ही बार फ्रिज का पानी, ऐसे तो कहा जाता है कि फ्रिज का पानी आप पिए ही नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल ही करके पीते हैं या थोड़ी देर बैठ के पीते हैं तो ये बहुत आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा कि आप ठंड पानी तो बिल्कुल ही छोड़ दें। इसके लिए आप घरे के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी फ्रिज का पानी या खाना कुछ भी हमें नुकसान ही करता है, और बदलते मौसम में इसका प्रभाव तो घर घर देखने को मिलता है। तो हो सके तो आप मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करें या पानी को स्टोर करके रखें, तो वो कहीं ना कहीं ठंड होता है। अगर जिसके पास हैंड पंप लगा हुआ है तो वो तो डायरेक्ट पी सकते हैं, वो तो फ्रिज जैसा ही ठंडा पानी होता है। और घर से निकलते समय दो चार बातों का अगर हम ख्याल रखें, और जैसा कि मानसून आ गया है तो अगर रहे तो भी और ना रहे तो भी छाता लेके साथ में निकले, साथ में पानी लेकर निकले, सनग्लास का इस्तेमाल करें, और चलते समय इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखते हैं और हो सके तो कड़ी धूप में निकलने से बचें। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम हर मौसम का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहा भी गया है जहाँ जो है ना थोड़ा सा भी असावधानी होता है वही हमें बीमार वो चीज़ कर देता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हम कहीं भी जाते हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर घर से बाहर निकले। और मौसम हर मौसम अच्छा होता है, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम हर मौसम का मजा ले सकते हैं।
1: तो और जैसे कि कार्यक्रम में हम सब किछ बहुत किछ समेट के आने छी, आइकाल्हि हम सब चर्चा करै छी अहाँके बहुत रास विषय सब पर जानकारी प्राप्त करै छी, समसामयिक आने छी। और सबसे पैघ गप, आप रेडियो सेट के अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से अपने सब देश विदेश में रहकर कतौ से अपन कार्यक्रम सब सुन सकै छी, अपन माटि पानि से जुड़ल रह सकै छी।
0: बिल्कुल, और इसके लिए

0: जरूरत है कि हम हर घर अब मोबाइल है तो इस ऐप को हम डाउनलोड कर ले। अब तो पहले वाली बात भी नहीं रही कि हम हर जगह रेडियो ले, और रेडियो के साथ कहीं ना कहीं उसका बैटरी का चक्कर हुआ करता था। तो अब हर हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो ये ऐप डाउनलोड करके हम जहाँ भी रहें, यहाँ दरभंगा में रहें या फिर कहीं भी रहें, हम सुन सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करें। और सबसे बड़ी बात है ना आशीष जी, कि कहीं भी जब हम रहते हैं और आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हम अपने देश से, अपने समाज से वही जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये भाषा जब मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं लगता है अपनापन हो गया, तो हम दूर नहीं है। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए अलग जाते हैं, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि हम आपको सुनते हैं, आपको सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं अपने जहाँ हूँ वहीं पर हूँ। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और कई हम लोग सामग्री लेकर आए हैं जो एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आज हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सामग्री हम बहुत सारा लेके आए हैं जो एक एक करके अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे।
1: तखन किछे जेनाकि एखन चर्चा करैत रही ओलंपिक के, अगर तऽ सब साल 23 जून के पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि दिन खाली खेल के उत्सव नहि, एक बल्कि एकता, सौहार्द और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश सेहो दैत अछि। 23 जून 1894 के पेरिस में बैरन पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास सँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी यानी IOC के स्थापना भेल छल। आधुनिक ओलंपिक खेल के पुनर्जीवित करे के श्रेय यह संस्थान के जाइत अछि। ई ऐतिहासिक दिन के मोन पारैत 1948 सँ सब साल 23 जून के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाओल जाइत अछि।
0: हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जैसा कि आपने बताया कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस दिवस खेलों के महत्व और शारीरिक फिटनेस तथा विश्व में शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का गठन किया गया था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाने लगा। ओलंपिक खेल विश्व के सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन खेलों के मुख्य उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं जीतना नहीं है, बल्कि खेल भावना, अनुशासन, सम्मान और एकता का संदेश देता है। ओलंपिक का आदर्श अर्थ है तेजस उच्चतर और मजबूतर। यह खिलाड़ियों के लिए निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर विभिन्न देशों में दौड़, साइकिल रैली, खेल प्रतियोगिता, योग शिविर तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों में भी खेल कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़े और स्वस्थ जीवन शैली अपनाए। और खेल व्यक्ति को सिर्फ ये नहीं है कि मनोरंजन ही देता है, खेल व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित खेल गतिविधियाँ शरीर को स्वस्थ बनाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है तथा टीम भावना विकसित करती है। और कहीं ना कहीं खेल जो है ना, वो लोगों की एक भावना है ना, उसको एक साथ बनाती है।
1: और खास करके अगर ओलंपिक दिवस के गप करी, तब हम सब अहाँ के हिलू डुलू, किछ नया सीखू और अपने आप के ताकू। जी हाँ, 2026 के थीम यह है मूव लर्न डिस्कवर, यानी कि हिलू डुलू, किछ नया सीखू और अपने आप के खोज करू। ओलंपिक दिवस के जेनाकि अखन तक हम सब अहाँ के चर्चा कर रहल छी, मुख्य उद्देश्य है लोग के जीवन के हिस्सा बननाय, बिना कोनो प्रतिस्पर्धा के दबाव के। तै दुआरे दुनिया भर में आइ के दिन दौड़, वॉक, साइकिलिंग, योग आ बहुत रास एहन फिटनेस से संबंधित गतिविधि सब के आयोजन होइत अछि। एकर मकसद ही अछि कि लोक सब स्वस्थ रहत और शारीरिक सक्रिय

0: विद्या जे एखन कतौ ने कतौ घटि गेल अछि, हम अहाँ आब मैदान से दूर भऽ चुकल छी, हम अहाँ की बच्चा सब मैदान से दूर भऽ गेल छथि, आब बहुत रास ठाम मैदान बचबो नहि कयल अछि, तऽ लोक अहाँके किछु मोबाइल पर बच्चा सिमटि गेलथ हँ, तऽ ई एकटा बहुत पैघ हमरा सबके लेल खराब अछि, कियाकि अबैवला समयमे हुनकर शरीर जे छनि बच्चाके, अगर एखन ओ दौड़त नहि, माटि पानिमे खेलेतत नहि, तऽ हुनकर एहन नाजुक शरीर भऽ जेतनि कि छोटसँ छोट अगर कोनो ठाम गेलथि तऽ तुरन्तमे मोन खराब भऽ जेतनि आओर प्रतिरोधक क्षमता जे छनि से खराब भऽ जेतनि। ताहि दुआरे खेल बहुत किछु सिखबैत अछि, आओर बच्चामे अगर कहै छै हम अहाँ जाइ छी खेलाइके लेल, बच्चा सब अगर खेलाइके लेल जाइ छथि तऽ कए बेर खसै छथि, एक दोसरासँ घुलैत मिलै छथि, आओर केना समाजमे रहबाक चाही सेहो सिखबैत अछि खेल। आओर कोनो विकट परिस्थिति होइ छनि, कए बेर एहन होइ छलै बच्चामे हमसब रहै छलहुँ, खसि पड़ैत रही, आब घरमे जायब तऽ किछु फुटि गेल अछि, चोट लागि गेल अछि, घरमे जायब तऽ अहाँके एहन नहि हुए कि आब डांट सुनऽ पड़ै, मारि खाय पड़ै, ताहिसँ बचै लेल बच्चा सब अपनेमे ओ चीजके किछु मैनेज करै छलथि, सब कोइ मिलकर केना कऽ के मैनेज करी ताकि घरमे नहि पता चलत, तऽ ई सब एकटा सीख दैत अछि।
1: एकता कैसे भावना एक दूसरे में बनती है कि कैसे बातों को अगर छिपाना है तो एकता मिलकर छिपाते थे, तो कहीं ना कहीं ये टीम भावना उत्पन्न होती थी। और ओलंपिक दिवस हमें ये भी संदेश देता है आशीष जी कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि व्यक्तिगत निर्माण का एक प्रभावी माध्यम भी है। भारत में भी ओलंपिक खेलों की कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है और भारतीय खिलाड़ियों ने भी विभिन्न खेलों में पदक जीतकर देश का गौरव भी बढ़ाया है। उनकी सफलता युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस खेल स्वास्थ्य शांति और वैश्विक एकता का प्रतीक है। यह दिवस हमें खेल भावना को अपनाने, स्वस्थ जीवन जीने तथा आपसी सहयोग, जैसा कि हम लोग बताए कि कैसे आपसी सहयोग एक दूसरे में रहता था, ये सद्भावना को बढ़ावा देने में भी प्रेरणा देती है। हमें इस अवसर पर खेलों के महत्व के समझते हुए अपने जीवन में नियमित शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने के संकल्प लेना होगा और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। और कई बार ये चीज़ प्रेरित करने का अपने घर से ही हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बच्चे लोग ऐसे घर में चिपके रहते हैं कि मतलब आउटडोर तो वो जाना ही नहीं चाहते। एक समय हुआ करता था कि हम लोगों को कान पकड़ के बाहर से अंदर घर में लाया जाता था कि चलो शाम हो गया है, बिल्कुल इतने देर तक बाहर नहीं रहो। और आजकल ये स्थिति हो गई है कि हम लोगों को कान पकड़ के बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है कि थोड़ी देर जाओ बाहर खेलो, कुछ ऐसा खेल जो आउटडोर खेल है उस पर थोड़ा सा फोकस करो।
0: ई कतौ ने कतौ हमर अहाँके गलती अछि, गार्जियनके गलती छनि कि गार्जियन आब खुश भऽ जाइ छथि, बच्चा अहाँके किछु खेनाइ नहि खा रहल छथि हुनका मोबाइल थमा दियौन, बच्चा अहाँके किछु कानि रहल छथि हुनका मोबाइल थमा दियौन, तऽ ई जे मोबाइल थमा दियौन तऽ फेर ओ मोबाइल हुनकर जीवनके हिस्सा बनि जाइ छनि आओर ओ एना घुल मिल जाइ छनि कि ओ बाहर निकलनाइ बिसरि जाइ छथि।
1: बिल्कुल, आर हर घरमे ये आप हमें देखने को मिलेगा। आप अपने ही घर से शुरुआत करिए या फिर कहीं भी आप जाइए तो कहीं ना कहीं ये दिल को बहुत दुख देता है कि एकदम छोटे छोटे बच्चे जो अभी सही से चलना भी नहीं सीख रहे हैं वो भी मोबाइल लेके बैठे हैं, उस पर रैम्स देख रहे हैं, ये कविता देख रहे हैं। तो पहले क्या हुआ करता था कि वही कविता दादी और नानी सुनाया करती थी कहानी के माध्यम से, गाना के माध्यम से, और आज हम मोबाइल देख के अब कहीं ना कहीं इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम इसका परिणाम नहीं देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इस चीज़ से हमें बचना होगा। अगर हम ही अब बच्चे को मोबाइल देना शुरू करेंगे तो वही कहीं ना कहीं तो आदत हमने लगाया और फिर हम बोलते हैं कि मेरे बच्चे बहुत ख़राब हो गए हैं, दिन भर मोबाइल में जुड़े रहते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण तो हम है कि हम बच्चों से थोड़ी देर के लिए शांति और छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे धीरे धीरे वो आदत लग जाती है, इसीलिए तो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं खेलने के लिए। तो इस सोच को हमें रोकना होगा कि हम कैसे बच्चे को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत, उसकी जो उस समय बढ़ने का है खेल कूद के माध्यम से वो नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी चश्मे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारण ये मोबाइल का ही है। और इस चीज़ को जो है ना ख़त्म करने के लिए घर से ही शुरुआत करना होगा कि बच्चे को एक साथ बैठ के कुछ अपने आपस में ही जो कुछ महिलाएं हैं या पुरुष हैं एक मीटिंग करें कि कैसे हम बच्चे को बाहर करें, उसके लिए कुछ

0: ये है एक छोटी सी समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है।
1: और खेल से जुड़ा पड़ा, खेल
0: बिल्कुल,
1: अहाँ के
0: और
1: खाली
0: साथ में
1: शारीरिक ही
0: हम
1: नहीं
0: और
1: अहाँ के
0: बच्चों को
1: करे थे,
0: खेलने के लिए
1: मानसिक
0: उसके साथ भी हमें खेलना होगा।
1: मानसिक सेहो अहाँ के किछे बच्चा के किछे अहाँ के सशक्त बनबैत अछि। ताहि दुआरे शारीरिक और मानसिक अगर बच्चा के स्वस्थ बनबै लए चाहै छी, और एखुनका समयमे देखै छी छोट छोट अगर अहाँके दिक्कत अबै छनि तऽ अहाँके मनोबल टूटि जाइ छनि बच्चा सबके, मुदा खेल एकटा एहन चीज अछि ओ अहाँके की छै ओहि विकास करबैत अछि अहाँके शारीरिक और मानसिक एहन तौर पर सशक्त बना देत कि अहाँके हार होइत अछि। कए बेर अहाँके खेलाइत बच्चाके दूटा ग्रुप खेलाइ छथि हारि जाइ छथि, तऽ ओ हार अहाँके किछु आगू फेर मनोबल बढ़बै छनि हुनका कि केना हम अहाँके सकारात्मक तौर पर फेर अगला बेर जीती। तऽ
0: बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग हार नहीं पसंद करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर बच्चे बाहर खेलेंगे तो वो हमेशा कोई बात नहीं इस बार हम हार गए हैं अगली बार जीतेंगे, तो वो जुनून के साथ खेलेंगे। और घर में क्या होता है कि घर में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम अभिभावक को भी उनके साथ जुड़ना होगा। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है जब माँ बाप ही वो मोबाइल पे देखते रहेंगे तो बच्चे भी आके देखेंगे, तो उनके साथ उनको भी आउटडोर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, उनके टीम की भावना बताना होगा। और आज बच्चे लोगों को कहीं ना कहीं ये कमी आ गई है, तो इसको हम कैसे एकजुट होके इसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए वर्क करना होगा और हमें ही शुरुआत करना होगा।
1: निश्चित तौर पर, और जा देर हम सब एहि पर ध्यान नहि देबै ता देर कि जे हमर सबके जे अबै वाला पीढ़ी जे अछि से कतौ न कतौ ओकर जे स्थिति रहतनि से अहाँके बहुत एहन कोमल भऽ जेतथि कि हुनका घर से बाहर निकलै मे डर लगतनि, हुनका सोचै मे किछु माटि पानि छुए मे डर लगतनि। तऽ से नहि हेबाक चाही कि हमसब अहाँके धरती से जुड़ि के अगर किछु बच्चा एखने से रहतथि तऽ अबै वाला समय हुनकर अहाँके शारीरिक और मानसिक दुनू दृष्टि से बहुत सशक्त बनतन। ओना कार्यक्रम सेहो हमसब किछु अहाँके सब तरीका से किछु कार्यक्रम के सशक्त बनबै के दिशा मे बहुत किछु के समेट काने छी। इएह करीमा अपने सबके ये गीत सुनबै छी।

अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार हम बच्चे को अपने घर से बाहर निकालिए निकाले ताकि वो आउटडोर गेम पर ध्यान दें। और आज वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, तो इस दिन हम लोग एक मत होकर ये बनाए कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार, एक 5 मिनट का खुद ही चिंतन करें कि किस प्रकार हम बच्चे को बाहर निकालें ताकि वो जो होने वाले नकारात्मक प्रभाव है उन पे मोबाइल के थ्रू और इंडोर में, तो इससे वो किस प्रकार बच सके। और

0: हम और भी एक बात करेंगे अपने चर्चा में कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराया जाए। वर्तमान में भारत के अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिससे लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनावी गतिविधियों चलती रहती है। इस व्यवस्था को बदलकर एक साथ चुनाव करने का प्रस्ताव एक राष्ट्र एक चुनाव कहलाता है। इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। चुनाव आयोग सुरक्षा बलों तथा प्रशासन पर बार बार पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। एक साथ चुनाव होने से सरकारी धन की बचत होगी, जिससे विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। दूसरा लाभ यह है कि बार बार लागू होने वाली आचार संहिता से मुक्ति मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था में किसी न किसी राज्य में चुनाव होने के कारण विकास योजना और सरकारी निर्णय कई बार इस पे प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होने पर सरकारें अधिक समय तक विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेगी। तीसरा लाभ यह है कि प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी। चुनावों में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। एक बार चुनाव होने से उनका समय और संसाधन दोनों ही बचेगा, साथ ही अपने नियमित कार्यों पर वो अधिक ध्यान दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त मतदानों में भागीदारी भी बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें बार बार मतदान केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
1: निश्चित गप कल बहुत नीक गप कल अखनका बबीता कि अगर एक बेर चुनाव है तो लोग के दिमाग में रहते हैं कि हमरा एक बेर जेबाक है अपन अहाँक जतेक अहाँ के किछु, चाहे मुखिया चुने के गप हुए, चाहे विधानसभा में अपन प्रतिनिधि पठबे के बात हुए, या सांसद चुने के गप हुए, वा एहन कोनो जे प्रतिनिधि का अपन चुनाव हैत, से अगर एक बेर हैत तो लोग अहाँ के छुट्टी लो के उतत, क्योंकि रहतन कि हमर भविष्य ऐसे बनत है, और जखन लो के उतत तो भागीदारी बढ़त, लोकतंत्र सशक्त हैत, और लोकतंत्र सशक्त हैत तो निक सरकार के चुनाव अहाँ के रहत, जे हमरा अहाँ के भविष्य बनत है, और भविष्य बनबे के लिए अगर एक समय में एक चुनाव हैत तो खर्चा से कम है, तो खर्चा के अंठाम लगाएल जा सकते हैं, क्योंकि बेर बेर चुनाव हुई से सबटा तंत्र के फिर उतबे खर्चा लगे छन। अगर हम सब घर में खनाए बनबे छी, अगर एक आदमी के खनाए बनाओ या दू आदमी के तीन आदमी के खनाए बनाओ तो लगभग खर्चा बराबर भ जाते हैं। सह बात चुनाव में होते हैं, अगर हम एक बेर में किछ सबटा चुनाव करब तो खर्चा जे छे से बहुत सीमित भ जात, और वो खर्चा हमरा अहाँ के लेल भविष्यक लेल बहुत फायदामंद हैत। तो हम सब चाहब कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमरा अहाँ के बीच में हुए, जैसे कि बेसी से बेसी भागीदारी सुनिश्चित सेहो भ सके। और जानकारी सबके गप कऽ रहल छी तऽ कनी समसामयिक घटना के बारे में सेहो चर्चा कऽ ली। एकटा कनी चिंताजनक खबर अछि कि बिहार के 18 जिला में एखन धरि 50% कम वर्षा भेल अछि, और सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कलथि, और वर्षा के बनि रहल अछि योग। आद्रा नक्षत्र 22 जून से 6 जुलाई तक रहत। 3,96,000 किसान सबके खाता में 200 करोड़ रुपया पठाओल गेल। डॉक्टर बनबाक अछि वा इंजीनियर, आब 9वीं कक्षा में बच्चा अपन कैरियर चुनतत। बिहार में प्रतिभा के तरासल जायत, मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी के लेल विशेष कक्षा चलत। और रैयाम संगे 9टा बंद चीनी मिल के पुनर्जीवित कयल जायत, मुख्यमंत्री ई गप कहलत है। और भूजल के अनियंत्रित दोहन रोके के लेल कानून बनत। लघु जल संसाधन विभाग के समीक्षा बैसार में बहुत रास दिशा निर्देश देल गेल अछि।
0: और सस्ते हो रहे हैं फूड से तेल कंपनियों की राहत। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर संयुक्त मार्जिन अब पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर से ऊपर। मई के कोर सेक्टर की वृद्धि 7 महीने से निचले स्तर पर, और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सेंसेक्स 291 अंक उछला।
1: आब समय से हमरा सबके किछ धीरे धीरे बढ़ रहल अछि, तो बढ़त समय के उपयोग करैत चले चले अपने सबके एकटा और गीत सुनबै छी।
0: तो आइए सुनते हैं ये फिल्म संगीत।

0: तो ये सुंदर से गाने के बाद इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन आनंदमय हो, खेलों के साथ बीते, इसी उम्मीद के साथ हमें बबीता को
1: और हमरा आशीष के दिया विदा।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जाते अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
4: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं, नहीं।
3: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
5: तुम नाचो रस बरसी।
3: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर

0: आक्रोश व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैदाप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा

0: दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा

0: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials.

0: अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज आबनाए हुरमुस को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
0: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत की पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ।
0: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीयत मिली है।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, नियो मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मजकूरा अवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी

0: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
1: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
0: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्षों के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहल राष्ट्र निर्माण के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

0: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: राज्य सरकार भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भूजल के संरक्षण और विनियमन के लिए बिहार भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2026 लाने की दिशा में तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए जिसमें वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिले। उन्होंने भू जल स्तर में सुधार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों को अपनाने पर जोर दिया। इस बैठक में विभागीय मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक को ही थाना अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार वर्तमान में चिन्हित 208 थानों के अलावा 217 थानों को सामान्य श्रेणी के थानों में उत्क्रमित किया गया है। इन थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी थाना अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन या अल्पकालिक अवकाश की स्थिति में पुलिस निरीक्षक रैंक से नीचे के किसी भी पदाधिकारी को इन थानों में प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र गुरौल फेज एक में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बैठक उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 एकड़ में स्थापित होने वाली इस इकाई के लिए 17 करोड़ 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामले में 6 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 8 मई से प्रभारी हो गया है। आदेश में कुछ अधिकारियों की वेतन पेंशन से कटौती और वेतन वृद्धि पर रोक की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गौरतलब है कि पिछले महीने आयोजित पुरस्कार के पहले चरण के तहत बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और डोमकच लोक नृत्य परंपरा के पुरोधा विश्वबंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके परिजनों ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग के अनुसार मानसून की रेखा फिलहाल गया और मुजफ्फरपुर से गुजर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका के कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इस बीच दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बराज से 1,955 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इधर मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मानसून अवधि में 4 महीने के प्रतिबंध के दौरान अन्य राज्यों में बालू की बिक्री और परिवहन की अनुमति दे दी है। खान और भूतत्व विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बालू स्टॉक के लाइसेंसधारी 26 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य के बाहर बालू भेज सकते हैं। इसके लिए ई चालान निर्गत किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज और कल 13 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। ये ट्रेन पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और दानापुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों से परिचालित होगी। रेलवे की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 6 और कल 7 विशेष ट्रेनें चलेंगी। इधर आगामी 27 जून से दानापुर और पुणे के बीच अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह साप्ताहिक ट्रेन पुणे से प्रत्येक शनिवार और दानापुर से प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वहीं धनबाद मंडल में छीपादोहर, बरवाडी, मंगरा रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन चालू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। साथ ही 16 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। लखीसराय जिले में आयोजित नीट पुनर्परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों के माध्यम से परीक्षा दिलाने वाले संगठित गिरोह के 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच में यह कार्रवाई की गई है। श्री कुमार ने बताया कि जिले के 3 परीक्षा केंद्रों से 9 फर्जी परीक्षार्थी, सहयोगी और बायोमेट्रिक कर्मियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में किउल तथा कवैया थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिवहर जिले की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में एक दोषी को 20 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड दिया है। मधुबनी जिले में कलवाही थाना पुलिस ने मांगा टोल बेलाही में छापेमारी कर 100 लीटर देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 एक दिवसीय लीग मुकाबले में टीम बी ने

0: ए को 5 विकेट से हरा दिया। भागलपुर के सैंडिश कंपाउंड में खेले गए मुकाबले में टीम ए के लिए कप्तान और विकेटकीपर अक्षरा गुप्ता ने 68 गेंदों में 164 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि उनकी ये पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर नीट पुनर्परीक्षा से जुड़ी है। अखबार लिखता है, मेडिकल छात्र ने बनाया स्कॉलर गैंग, 30 गिरफ्तार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, किसानों को राहत, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजी 260 करोड़ की राशि। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पीएमसीएच में अब सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे एक छत के नीचे। प्रभात खबर की विशेष खबर है, म्यूचुअल फंड निवेश में बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल, औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट में 80,731 करोड़ रुपये पहुंचा। आज अखबार का शीर्षक है, भरत तिवारी मुठभेड़, 5 पुलिसकर्मी निलंबित। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, लखनऊ की कोचिंग में लगी आग, 15 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थाना अध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: मीडियम पेप 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
0: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
6: मामा बने जाने, बाबा देने
7: जाने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से।

अमनजुमन के साथ हम हाजिर खिदमत हैं मोहम्मद आलम। पहले अपने तमाम सामईन का इस्तकबाल व खैर मकदम है। सामईन, आज माह मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। इस माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से कुछ ख़ास पेशकश होगी। आप सुनेंगे सोज सैयद जर्रार हुसैन से, और एक नोहा भी पेश किया जाएगा। नोहा खाहूंगी मोहतरमा मुमताज़ी बानो, और फिर एक

ले जाते हैं जहरा के पिसर को, सब छोड़ चले जाते हैं जहरा के पिसर को। इतने में रजस पढ़ के पुकारा वो खुश अंजाम, ऐ कौम हबीब इब्ने मज़ाहिर है मेरा नाम। होशियार के अबमियान से खींचती है ये शमशाम, वारिस का है दुश्मन के लिए मौत।

आका मेरा वो है जो इमाम अजली है, मजलूम है, सैयद है, वली इब्ने वली है। हर जंग में अक्सर मेरी तलवार चली है, उस शेर के बेशे में पला हूँ जो अली है। चलता नहीं मर कर इसी मैदान में गड़ूंगा, तलवार ना होएगी तो हाथों से लड़ूंगा। फिर ना थके बस पड़ने लगी तीरों की बौछार, देखा जो उधर पुश्तू पे नैजे का लगा वार। चाहा उसे मारे के लगे फर्क पे तलवार, और जुल्म की बरछी भी कलेजे के हुई पार। कहते थे तनो जान शह दिलगीर के सदके, हर जख्म पे नारा था के शब्बीर के सदके। हर जख्म पे नारा था के शब्बीर के सदके। छाती बिछीनी तीरों से और फर्क दो पारा, रग रग जो कटी फिर न रहा जब्त का यारा। शीराज अज आए बदन खुल गए सारा, गिरते हुए घोड़े से ये आका को पुकारा। या आपका आना मेरी बख्शिश की सनद है, ऐ शेरे इलाही के पिसर वक्त मदद है। नागा सफ़े चीड़ के आए शहज़ीशा, देखा कि वो मजलूम है, कोई दम का है मेहमा। लाशे से लिपट कर ये पुकारे बस तबगा, ऐ दोस्त मेरे तेरी मोहब्बत के मैं कुर्बा। दिखला दो मुझे जख्म कहाँ खाए हैं भाई, छाती से लिपट जाओ के हम आए हैं भाई। छाती से लिपट जाओ के हम आए हैं भाई। आका की सदा सुन के उसे होश जो आया, गर्दन के तले जानू शब्बीर को पाया। आँखों से कफे पाए मुबारक को लगाया, अकबर की तरफ जोड़ के हाथों को सुनाया। कुछ अपने नमक खार पे ऐसा नहीं करते, हजरत पे उठा के मुझे कुर्बान नहीं करते। ये कहते थे कि बस गुलशन दुनिया से सिधारे, निकली रही होठों पे ज़बां प्यास के मारे। बाजू को हिला

होते थे अभी मर गए भाई। हाय हाय मेरे आशिक मेरे शहदा मेरे यावर, हाय हाय मेरे सलमान मेरे मुग़दाद बबूज़र, हाय हाय मेरे रुस्तम मेरे ज़ैग़म मेरे सफ़दर, हाय हाय मेरे अम्मार मेरे मालिक अश्तर। ताज़ीस्त तेरे हिजर में फरियाद करूँगा, ताज़ीस्त।

0: भी मैं तुझे याद करूंगा। फिर लाश दरे खेमे पे लाए शहे आलम, सर पीट के फरमाया के ऐ ज़ैनब पुरगम। मैदान में हबीब इब्ने मज़ाहिर हुए बेदम, मातम करो बेकस का बिछा कर सफ़े मातम। यारों ने को उसके जनो फर्जंद नहीं हैं, मजलूम मुसाफिर के अगर हैं तो हम ही हैं। यारों ने को उसके जनो फर्जंद नहीं हैं, मजलूम मुसाफिर के अगर हैं तो हम ही हैं। जब शैन सुनी हजरत इब्ने तकरीर, जब शैन सुनी इब्ने मज़ाहिर की ये तकरीर।
1: सामिन ने अगली पेशकश में आप सुनेंगे नौहा, पेश कर रही हैं मोहतरमा मुमताजी बानो।

0: या तारीख दानों ने जो कुछ लिखा है उसमें इतना रत्व याबिस भर गया है कि बहुत मुश्किल है कि तमीज किया जाए। कई मौरख ने यह लिखा कि ये असलन बनु अब्बास या बनु उमैया की या बनु हाशिम की लड़ाई थी, और उस लड़ाई का असर जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे वो दबा हुआ रहा, और ज़माने जाहिलियत की असबियत जो है उस पर गालिब नहीं हो सकी। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब उनके चारों खुलफा दुनिया से चले गए तो अब वो जो पहले की तासुब वाली चीज़ें थी
1: दबी हुई
0: बनु अब्बास की, बनु उमैया की, बनु हाशिम की, तो वो सारे मैदान में आ गए और मुख्तलिफ अवामिल के तहत जो है ये काम हुआ। चुनांचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जो हुकूमत का सिलसिला चला कुछ दिनों तक बनु उमैया में चला और उसके बाद फिर बनु अब्बास में चला गया। तो ये पसम तारीख को सामने रख करके लोग ये भी कहते हैं कि ये तारीख़ के एतबार से भी तारीखी अवामिल भी थे इसके, तो उस पस मंज़र में लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता
1: हूँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है और अभी आपने जिस जानिब इशारा किया है बिला शुबहा इसका ताल्लुक मुसलमानों से है, तो क्या इस वाक़या ने आम इंसानियत को भी मुतासिर किया और आम इंसानी माहौल में भी इसके कुछ असरात पड़े?
0: बहुत पड़े। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद इस वाक़े का असर बहुत पड़ा, उस वक्त भी पड़ा और आज भी उसके असरात देखे जाते हैं। असर ये पड़ा कि वो लोग जो हज़रत हुसैन के ख़िलाफ़ हो गए थे उनकी शहादत के बाद उनके हमनवा हो गए और उन्होंने इस पूरे वाक़े की तारीख़ में बड़ी मज़म्मत कि उन्होंने बेदाया व नहाया देखा जा सकता है, महमूद अब्बाद की अबकरियात अली देखी जा सकती है, हज़रत माना अबुल हसन अली नदवी की अलमुर्तज़ा देखा जा सकता है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बाद में उसकी मुखालफत की, बल्कि तारीख़ में यह भी लिखा है कि यजीद के दरबार में जब सर पेश किया गया तो उसने बहुत लानत मलामत की उस शख्स की जिसने ये काम अंजाम दिया था, और उसने कहा कि अगर ये मेरे पास आ जाते और बातें हो जाती तो ये हादसा नहीं होता। तो गोया के हज़रत हुसैन का खून रायगा नहीं गया, उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस दौर में खुसूसियत से नई ताजगी, नई तवानाई और हक पर जमने की वो सलाहियत पैदा की जो दूसरे किसी वाक़े से मुमकिन नहीं था। तो इस तारीख वाक़े का ये मुस्बत पहलू है, वो लोग जो हक़ पर जमने का मलका खोते जा रहे थे हज़रत हुसैन के जम जाने और हज़रत हुसैन की शहादत के बाद
1: उनके अंदर की
0: हौसला और जुरत पैदा हुई और उसके असरात देर तक रहे। बनु उमैया के बाद बनु अब्बास का सिलसिला चला और उसके बाद खुलफा के नाम से मुतसिम बिल्ला, मुतसिम बिल्ला का सिलसिला चला, सब में उसके असरात देखे गए।
1: इस वाक़या को गुजरे हुए तकरीबन 1350 साल के करीब हो गया है, अब ज़माना बहुत बदल गया है, हालात बहुत बदल गए हैं, तो इतना अरसा गुजरने के बाद मौजूदा पस मंज़र में आज के हालात में आप इस वाक़े को किस नौयत से देखते हैं?
0: देखिए, इस वाक़े से इबरत पज़ीरी और असर लेने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा आज है। उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो हक़ कहने की जुरत भी रखते थे, हौसला भी रखते थे, कुछ लोग थे जो ऐसा नहीं कर सके, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आज का जो दौर है इस दौर में हर आदमी मसलहत अंगेज़ और मसलहत आमेज़ गुफ्तगू करता है, और बल्कि
1: मफाद का गलबा ज़्यादा,
0: मफाद का गलबा है,
1: हक बात का नहीं कहना,
0: खुदगर्ज़ी का गलबा है, उसको जिधर मफाद नज़र आता है उधर बढ़ जाता है। तो ऐसे मौक़ों से हज़रत हुसैन की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा उसवा और नमूना है कि चाहे आदमी तनहा पड़ जाए लेकिन जो हक़ बात है और जो हक़ कहना चाहिए और हक़ के लिए मैदान में खड़ा होना चाहिए, ये वो पैगाम है जो आज के दौर में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हमें मिलता है। हम वाक़े करबला पर मातम तो खूब करते हैं लेकिन उसका जो सबक है और उससे जो इबरत पकड़ना है और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में, अपने फ़िक्र में, अपनी सोच में, अपने आमाल में जो तब्दीलियां लानी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो कम जाती है।
1: हम

आप ऐसे तो न थे। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास के स्वर में। गीत के बोल निदा फाजली के और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। अब सुनिए फिल्म निकाह का ये गीत महेंद्र कपूर एवं सलमा आगा की आवाजों में, बोल हसन कमाल के और धुन बनाई है रवि ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
1: एनपीएस पेंशन?
0: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
1: बुढ़ापा सुरक्षित?
0: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जुनून का गीत, इसके बोल लिखे थे संतोष आनंद ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसके पहले आपने सुना था फिल्म बारिश का गीत, लता मंगेशकर एवं मनमोहन सिंह की आवाज़ों में बोल लिखे थे वर्मा मल्लिक ने और संगीत उत्तम जगदीश का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के आखिरी में फिल्म संगीत का ये गीत अनुराधा पौडवाल एवं सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में।

फिल्म संगीत का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा प्रणवाल एवं सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सुनिए वज्जिका कार्यक्रम आंगना।

अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करित हती। अपने सबके बज्जिका के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करित हती जल संरक्षण के विषय में। तो देखो, जल के महत्व अपन सबके जीवन के लिए बहुत मायने रखित है। कहल भी जाइए, जल है तो जीवन है। जल के बिना अपन सबके जीवन अधूरा है। ई धरती पर पेड़ पौधा के लहलहाए के लेल, रंग बिरंग के फूल खिले के लेल, खेत खलिहान में अन्न उपजावे के लेल हर हमेशा जल के जरूरत पड़े। जल के अभाव में पेड़ पौधा लहलहाए के बदले सूख जाइए। बगीचा में रंग बिरंगा फूल नहीं खिल सकैए। खेत खलिहान में अन्न नहीं उपज सकैए। ई सब कुछ होइए जल के अभाव के कारण। देखो, जल के महत्व इतने नहीं है, अपन सबके दैनिक काम में भी जल के खूब इस्तेमाल होइए। भोर से लेके रात तक पानी के जरूरत अपना सबके पड़ैए। चाहे खाना बनावे के रहे, ब्रश करे के रहे, स्नान करे के रहे या भोजन करे के रहे, पानी के इस्तेमाल के बिना ई कुछ भी संभव नहीं है। ई तरह से देखल जाए तो जल अपन सबके जीवन के अभिन्न अंग है। एकरा बिना जिंदगी के कल्पना करना व्यर्थ है, काहे कि हम सब पूर्ण रूप से जल पर आधारित हती। पर आए भी कितने लोग ऐसन हथिन जे जल के महत्व नहीं बुझे थतीन आ ओकरा बर्बाद करित हथिन। कितने के आदत होइए कि वो ब्रश करित समय नल के पहले से खोल देत हथिन। नतीजा पानी बेवजह बर्बाद होइए। अगर ब्रश करे के बाद नल खोल के कुल्ला कैल जाए तब पानी के बर्बाद होई से बचायल जा सकैए। अगर स्नान करे के लिए पानी भरल जाए तो तनका देर वहीं पर खड़ा रख के पानी भरल जाए से बाल्टी से पानी बाहर नहीं गिरत आ एना करे से पानी बर्बाद होई से बच जायत। कभी भी नल के जल्दबाजी में नहीं बंद करे के चाही। वैसे नल ठीक से नहीं बंद होइए आ बूंद बूंद पानी टपकित रहे से कितने पानी बर्बाद हो जाइए। तो जल्दबाजी में नहीं बल्कि आराम से नल बंद करे के चाही आ एगो बाल्टी हर वक्त नल के नीचे लगा के रखे के चाही। जैसे बूंद बूंद टपकित पानी से बाल्टी भर जाए आ उहे पानी अपना सबके दूसर काम में उपयोग हो जाए तो इस तरह से पानी के बचाव करे के चाही। देखो, यह छोट छोट सावधानी बरते से पानी के बर्बाद होए से बचायल जा सकैए। काहे कि जल संरक्षण आय समय के मांग है, आय के जरूरत है। देखो, आय जल संरक्षण के जरूरत अला है काहे कि ई धरती पर पर्यावरण संरक्षण संकट में है। आय पेड़ रोपल कम आ काटल ज्यादा जाइए जकरा कारण वर्षा कम होइत है। धरती पर नदी तालाब सूख जाइत है। कहे के मतलब है जल के जितने स्रोत है वो सब प्रभावित होइत है। अब तो पहले की तरह कुआं भी नहीं देखे के मिलैया। आज जहाँ कुआं दिख जाइए वो कुआं सूखल रहैया। अब तो चापा कल भी सिर्फ नाम के रह गेल है, वैसे पानी तनको नहीं आबित है। तो आय के समय में जे भी पानी के स्रोत है जकरा से हम सब लाभ उठा सकत हती ओकरा अपना सबके सहेज के रखे के चाही। अपना सबके ई नदी तालाब के पानी साफ रहे, स्वच्छ रहे, अला ओमे कूड़ा कचरा बहावे से बचे के चाही। तभी नदी तालाब के जल साफ

0: अस्वच्छ रह सकैया आ हम सब उ जल से लाभान्वित हो सकित हती। अपना सबके जल संरक्षण के लेल बारिश के पानी के भी जमा करके रखे के चाही, मतलब वर्षा जल संचयन के अपनावे के चाही। देखू, यदि हम आए पानी के बचावे के आदत अपना अंदर समाहित करत हती तो हमर आबे वाला पीढ़ी के भी पर्याप्त जल संरक्षण के आदत अपने आप हो जायत आ उ भी जल संरक्षण के महत्व के समझित जल बचाव आ जल प्रदूषण पर ध्यान देतन आ पीढ़ी दर पीढ़ी में जल बचाव के आदत पड़त। अहिला अपना सबके ई संकल्प लेवे के चाही कि जल संरक्षण हर केकरो करे के है, काहे कि जल है त कल है। जल के महत्व के विषय में एगो आदमी के की कहना है, हुनकर की विचार है, आओ सुनित हती।
1: जैसे जैसे गर्मी बढ़े है, पानी में कमी होए लगे है, चापाकल के लेयर नीचे चल जाए है और पानी के भयानक दिक्कत होए लगे है। गर्मी के मौसम में देखल गेले है, जब गर्मी बहुत तेजी से पड़े छे तो कुआं पोखर भी सूखे लगे है, पेयजल के भयानक संकट हो जाए है। जल संकट के समय ही जल के महत्व समझ में आवे है, वैसे पहले लोगों को अपना महत्व नहीं दे है जितना देवे के चाही। जल संकट एक ऐसा संकट है जेकरा से जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होए छे। जल और जीवन के बहुत गहरा संबंध है, कहल भी गेले है जल ही जीवन है। जल के महत्व के देखते हुए एकर दुरुपयोग नहीं करे के चाही, पानी के बर्बादी से रोकना ई हमर नैतिक दायित्व है। ई दायित्व के निभाना हर व्यक्ति के काम है। जल बचावे के मतलब है जीवन के बचावे के। पानी के संकट के समय ही पानी के बूंद बूंद के महत्व समझ में आवे छे। जल संकट होए से पहले पानी के महत्व के समझ के हम एकरा बर्बाद करे से रोकी तो जल संकट बिल्कुल नहीं होत।
0: अखनी अपने सुनित रही जल के महत्व के विषय में एगो आदमी के की विचार रहे, हुनकर की कहना रहे। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ अपने के सुनवावे थती अरुण कुमार अकेला के गायल ई लोक गीत।

0: अखनि अपने सब सुनित रही अरुण कुमार अकेला के गायल ई लोकगीत। अब बात करित हती संयुक्त परिवार के महत्व की। देखो, संयुक्त परिवार के महत्व बहुत होइया, एकरा नकारल नहीं जा सकैया। ई परिवार में माता पिता अब बच्चा के अलावा और भी कितने लोग एक दूसर के सुख दुख में काम आवित है। यदि कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो ओकर सेवा में ओकर देखभाल में हर कोई लगल रहैया। एना में बाहर के कोनो दूसर आदमी के जरूरत नहीं पड़ैया। चाहे तीज त्योहार हो, कोनो खुशी के मौका हो, परिवार के सब सदस्य एकत्रित होकर के ई खुशी के पल के आनंद उठावित हतीन। देखो, संयुक्त परिवार में जे छोट छोट बच्चा होइया, वो बच्चा के स्वभाव भी बहुत अच्छा होइया। कहे के मतलब है, वो बच्चा मिलनसार स्वभाव के, दोसर के मदद करे वाला, दोसर के तकलीफ के दूर करे वाला होइया। कहे कि बच्चा के अपन संयुक्त परिवार में ये संस्कार मिलैया। पर अफसोस, आज के समय में ज़्यादातर सामूहिक परिवार के जगह एकल परिवार देखे के मिलत है। आज के समय में परिवार के मतलब है पति पत्नी आ बच्चा। ऐसन परिवार में त्याग बलिदान प्यार एक दूसर के लिए परवाह के अभाव दिखाई पड़ित है। आ ऐसे में छोट बच्चा इस संस्कार से वंचित रह जाइया। आ जे बच्चा संयुक्त परिवार के बीच रहत है, ओकर पालन पोषण संयुक्त परिवार में होत है, वो बच्चा के संस्कार हमेशा अच्छा रहैया। वो बच्चा बड़ा के आदर आ अपना से छोट के प्यार करे जानत है। ऐसन बच्चा परिवार के हर सदस्य जे वो बच्चा से बड़ा है, सबके अच्छाई लेके अपने भी अच्छा इंसान बनित है। देखो, कहल जाइया एकता में बहुत बल होइत है। अइला परिवार के भी असली ताकत एकता में है, संयुक्त परिवार में रहे में है, मतलब एक साथ रहे में है। अगर परिवार में एकता के कमी होइया तो एकर जानकारी अगर परिवार से बाहर के लोग के लगित है तो वो इंसान एकर गलत फायदा उठा सकित है आ परिवार टूट सकित है। तो अइला संयुक्त परिवार में रहे के चाही, ओकर महत्व के समझे के चाही। जे लोग संयुक्त परिवार के महत्व समझेत उ परिवार में रहत है, पीढ़ी दर पीढ़ी निभावित है, ऐसन लोग परिवार आ समाज में मिसाल बनैया। ऐसन लोग दोसर परिवार के लिए, मतलब एकल परिवार में रह रहल लोग सबके लिए प्रेरणा बनैया। हुनका से दोसर परिवार भी दिशा निर्देश प्राप्त करैया। त ई है संयुक्त परिवार के महत्व आ ओकर विशेषता। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ित राम बाबू नीरव के खिस्सा सुनित हती। शीर्षक है शिबू भैया के अरमान।
1: श्रोता भाई बंधु प्रणाम करित हती, हम प्रस्तुत छे अपन कहानी शिबू भैया के अरमान लेके। शिबू भैया एकदम से फूल के महंत हो गेल है। ओकरा बधाई देवे के लिए गांव के सैकड़ों आदमी ओकर दरवाजा पर जुटल है। वही भीड़ में मुखिया जी भी शामिल हतन। आई शिबू से ज़्यादा खुशी मुखिया जी की हो रहा है। जे सपना शिबू देखले रहे वह सपना तो मुखिया जी भी देखले रहलन। आई उस सपना साकार हो गेल। शिबू के छोटका भाई ननका यानी रामनाथ हाकिम बन गेल। वो कोनो छोटका मोटका हाकिम ना, एकदम से बहुत बड़का हाकिम। मुखिया जी कह रहल हतन कि शिबू के भाई ननका SDO साहब बन गेल है। IAS के परीक्षा पास कैला के बाद वो पहले SDO बनल है, अब 1-2 साल के बाद कलेक्टर बन जाए। कलेक्टर माने पूरा जिला के मालिक। मुखिया जी के मुंह से ये सब बात सुन के शिबू के कलेजा फूल के गुबार हो रहा है। जब ननका छोट रहे तब ओकर गुरु दीनदयाल जी शिबू से कहले रहलन, शिबू तुम्हारा भाई तो पढ़ने में इतना तेज है कि गांव के सारे लड़कों को पीछे छोड़ चुका है। देखना एक दिन तुम्हारा भाई इस गांव का नाम रोशन करेगा। आज सचमुच ओकर ननका गांव के नाम रोशन कर दिलक। शिबू के ऐसा सामर्थ्य न रहे कि वो अपने भाई के पढ़ा लिखा के हाकिम बनवा सके। ओकर तेज बुद्धि के कारण सरकार से ओकरा छात्रवृत्ति मिलल। कुछ मदद मुखिया जी भी कैलन आ शिबू दिन रात मेहनत करे लागल। खेती बाड़ी से लेकर रिक्शा चलावे तक के काम, अपन भाई के हाकिम बनावे के खातिर शिबू कोई भी काम करे के तैयार रहे। जब शिवनाथ और रामनाथ छोट रहे तभी

बाबूजी गुजर गेलन। बाबूजी के गुजरला के 5 वर्ष के बाद ओकर माई भी गुजर गेल। दोनों भाई अनाथ हो गेल। बिलक बिलक के रोए लागल रामनाथ। ओकरा अपना कलिया से चिपका के शिवनाथ कहे लागल, चुप ननका चुप, माई गुजर गेलो तो तू घबरा मत, हम हती न तोरा कोनो तकलीफ न हो देव। सचमुच शिवनाथ अपन छोट भाई के लिए दिन रात मेहनत करे लागल। कुछ दिन के बाद शिवनाथ के शादी हो गेल। पहले रात में शिवनाथ अपन घरवाली रामरती से कह दिलक, देख रामरती, हमर छोट भाई ननका हमर बेटा जैसन है, ओकरा तनिको तकलीफ न होए के चाही। अगर ओकरा कोनो तकलीफ भेलौ तो हम तोरा घर से निकाल देबो। रामरती अपन पति के बात गांठ बांध लेलक। वह रामनाथ के अपन बेटा के से भी बढ़ के माने लागल। रामनाथ भी समझे लागल कि माई के बाद भौजिए माई है। हंसी खुशी के समय बीते लागल। रामरती एक लड़की के जन्म दिलक, ओकर नाम पड़ल झुनकी। रामनाथ झुनकी के लेल प्राण देवे लागल। धीरे धीरे झुनकी भी सियान होए लागल। तब रामनाथ शहर चल गेल पढ़े। मुदा जब भी छुट्टी में वो घर आवे तब झुनकी के बिना ओकरा चैन न रहे। एक एक करके शिवू के आँख के आगे पुरान बात सब नाचे लागल। शिवू भीड़ के छटला के बाद मुखिया जी शिवू के सामने आके खड़ा हो गेलन। जी मुखिया जी, हम तोरा से एगो विनती कर रहा हती। मुखिया जी के मुँह से ऐसन बात सुन के शिवू एकदम से सकपका के रह गया। आज तक तो शिवू मुखिया जी के आगे विनती करते रहे, आज समय ऐसा पलटा खा गया कि मुखिया जी ओकरा आगे विनती कर रहा था। मुदा कौन बात के लिए एक मुखिया जी के अभ्यागत बन गए। शिवू टुकुर टुकुर मुखिया जी के मुँह देखे लागल। शिवू, हम अपन बेटी के लिए रामनाथ के हाथ मांग रहा थी। शिवू के ऐसा लागल जैसे वो आकाश में उड़े लागल हो। उस सपना में न सोचले रहे कि एक दिन ओकर ननका के ब्याह मुखिया जी के बेटी के साथ होए। ओकरा तो कुछ बुझेबे न कैल, मुखिया जी से भी की कहो की ना। शिवू के चुप देख मुखिया जी के मन में शंका उत्पन्न हो लागल। शिवू के ई रिश्ता मंजूर न है। वो एकदम से खुशामद के स्वर में बोल पड़लन, शिवू हमार बेटी बीए पास है, वह शहर में रह के आधुनिक लड़की बन गई है। तब भी शिवू कुछ न बोलल। मुखिया जी निराश होके कहे लागलन, हम समझ गेली शिवू, तोरा ई रिश्ता मंजूर न है। अच्छा कोनो बात ना, ऐसा न कहो मुखिया जी। शिवू घबरा के बोल पड़ल, ई तो हमर सौभाग्य है जे आई अहाँ हमर ननका के ब्याह अपन बेटी से करे के लिए चाह रहल छी। अहाँ कहाँ गांव के अनाथ शिवनाथ और कहाँ मुखिया पदारथ बाबू। शिवू के आँख से खुशी के आंसू टपके लागल। मुखिया जी भी गदगद हो गेलन। शिवू, हम ई समझू कि रिश्ता पक्का। हाँ हाँ एकदम पक्का। शिवू खुशी से झूमे लागल। अपन हाथ में मुखिया जी मिठाई के डिब्बा ले ले रहलन। वही में से एगो मिठाई निकाल के शिवू के मुँह में ठूस दिलन। शिवू भी पीछे न रहल, वो उनका मुँह में एगो मिठाई ठूस दिलक। रामरती किवार के ओर से ये सब तमाशा देखते रहे। मुखिया जी के गेला के बाद वो झट से शिवू के सामने आके खड़ा हो गया। ई की कर दिली यहाँ, तनिक क्रुद्ध भाव से वो कहे लागल, ननका से ब्याह बिना पूछले। अरे ननका से पूछे के कौन बात है, वो हमर भाई है, बेटा है, कोनो हालत में वो हमर बात न टारत। शिवू के अपन ननका पर पूरा भरोसा रहे। तभी जमाना बदल गया है, तू चुप। शिवू एकदम से खींच पड़ल, तू हर समय हमर भाई के बुराई देखते रह गए, आई के बाद हम अपन ननका के खिलाफ एको शब्द बुराई के न सुनब। रामरती सुबह सुबह के रोए लागल। ओकरा पीछे पीछे झुनकी खड़ा रहे, वो अपन माई के भीतर खींच के ले जाके चुप करावे लागल। शिवू के स्वीकृति मिल गया जाए के बाद मुखिया जी के चैन कहाँ रहे। उस शिवू से अनुमति लेके दीनदयाल जी के साथ चल गए रामनाथ से मिले। बहुत कोशिश कैला के बाद उनका सबके रामनाथ से भेंट भेल। मुदा रामनाथ अब वो रामनाथ न रहे, एकदम से बदल गए रामनाथ। हाकिम बनला के बाद तो ओकर रुआबे दोसर हो गए। पहले तो वो अपन गांव के मुखिया जी और अपन बचपन के गुरु जी के भी न पहचानलक। आ जब पहचानलक तब उनका सबसे ठीक ढंग से बातों न कैलक। तभी मुखिया जी ओकरा बता देलक कि उनकर बेटी से रामनाथ के ब्याह शिवनाथ पक्का कर दिले है। ये बात सुन के रामनाथ के चेहरा पर भूचाल जैसन आ गेल, मुदा वो कुछ बोललक न। मुखिया जी आ दीनदयाल से खिन्न मन से गांव लौट के लन। मुखिया जी के मन में आयल कि शिवू के सब बात बता देवे चाहिए, मुदा दीनदयाल जी उनका रोक दिलक। रामनाथ के बदल जाए के और शादी के इनकार कर देवे के बाद सुनके शिवनाथ के बहुत तकलीफ होए। वो भोला भला इंसान है, ओकरा से ये सब बात बर्दाश्त न होए। यही खातिर शिवनाथ से अभी कुछ न बताओ, मुखिया जी मन महसूस के रह गेलन। सरकारी जिप्सी देख के पूरा गांव में हलचल मच गया। जिप्सी में ड्राइवर के साथ राइफलधारी पुलिस बैठल रहे। पीछे वाला सीट पर साहब वाला रुआब के साथ रामनाथ तथा ओकरा पीछे ओकर अर्दली बैठल रहे। गाड़ी के पीछे पीछे गांव के अबोध बच्चा सब शोर मचावे दौड़ित रहे। जिप्सी सीधा शिवनाथ के दरवाजा पर आके रुक गेल। सरकारी गाड़ी आ वही में पुलिस के देख के शिवनाथ एकदम से घबरा गेल। मुदा जैसे ही ओकर नज़र अपन ननका पर पड़ल कि ओकर छाती फूल के गुब्बार बन गेल। हाकिम बनला के बाद पहले बार रामनाथ गाँव में आयल रहे। अपन हाकिम भाई के देख के शिवू के आँख जुड़ा गेल। रामरती जल्दी आ, देख अपन ननका हाकिम बन के आ गेल हो। शिवू गला फाड़ के चिल्ला पड़ल। घर के भीतर से रामरती आ झुनकी निकल के आयल।
ई दुनू भी

0: रामनाथ के देख के रोमांच से भर गेल। रामनाथ गाड़ी से उतरल आ बिना केकरो और देखले सीधा घर के भीतर घुस गेल। ओकर ऐसन व्यवहार देख के तीनों आदमी के ठकमुर्गी लग गेल। पहले तक कभू रामनाथ ऐसन न कहलक, जब भी आवत रहे तो अपन भैया भौजी के पाछू के प्रणाम करित रहे, झुनकी के चोटी पकड़ के झुलावित रहे आ दुलार से कहित रहे, भौजी झुनकी तो तार गाछी जैसन बढ़ल जा रहा हो, एक कर शादी हम कोनो राजकुमार से करब, मुदा आज उ सब बेकार हो गेल, भैया जरा भीतर आइए। रामनाथ के करकदार आवाज़ सुन के तीनों के होश उड़ गेल। तैसे शिव भीतर पहुँचल, ओकरा पीछे रामरथ या झुनकी भी। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? शिवू के देखते रामनाथ बारूद जैसन फट पड़ल। ओकर तेवर देख के शिवू के जैसे ठकमुर्गी लग गेल। रामरथी या झुनकी के भी माथा चकरा लागल। रामनाथ के ऐसन रूप उ सब कहियो न देखले रहे। शिवू के तो समझ में न आयल रहे कि ओकर से कौन गलती भे गेल जे रामनाथ आग बबुला हो रहा है। आपने बिना मुझसे पूछे मुखिया जी की बेटी के साथ मेरी शादी क्यों पक्की कर दी? अब शिवनाथ के समझ में आयल कि आखिर ननका इतना पगला कह गया है। ननका बात यह है कि चुप रहिए, इतना कस के डपट दिलक रामनाथ शिवू के कि ओकर बोलती बंद भे गेल। ननका ननका कहकर मेरा अपमान मत कीजिए और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं किसी भी कीमत पर मुखिया जी की बेटी के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं इस लायक हो चुका हूं कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं। रामनाथ क्रोध से उपनीत तेजी से घर से बाहर निकल गया। शिवू के ऐसा लागल जैसे कोई ओकरा आसमान से नीचे धकेल दिले हुए। पल भर में ही ननका ओकर अरमान के बड़ी निर्ममतापूर्वक कुचल के चल दिलक। शिवू के दिल में टिस उठल आ एक आग करके बैठ गया। अपन पति की हालत देख रामरथ के कलेजा फाटे लागल। काका, झुनकी चिखित चिल्लाइत रामनाथ के पीछे दौड़ल। झुनकी रुक, इतने जोर से चिल्लायल शिवू कि झुनकी के कलेजा दहल गेल। मर गेलो तोहर ननका काका, खबरदार आई के बाद इस हमर घर में ओकर नाम के चर्चा भी न होए के चाहिए। शिवू निढाल होके गिर पड़ल। रामरथी आ झुनकी छाती पिट पिट के रोए लागल।
1: अखनी अपने राम बाबू नीरव के खिस्सा सुनित रही। शीर्षक रहे शिवू भैया के अरमान। अब बात अपन धरोहर की। आज हम बात करे थती बिहार राज्य के दरभंगा जिला में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल कुशेश्वर स्थान के। देखो, कुशेश्वर धाम दरभंगा बिहार के एगो प्रसिद्ध आ प्राचीन शिव मंदिर है। ई दरभंगा जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के धार्मिक मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग स्वयं भू है आ एकर स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा कैल गेल रहे, जेकरा कारण एकर नाम कुशेश्वर पड़ल। यहाँ आवे पर आप भगवान शिव के दर्शन से भक्त के परम शांति के अनुभूति हुई है। कुशेश्वर स्थान के महिमा के गुणगान हर तरफ हो चुकल है। यहाँ संपूर्ण मिथिलांचल, नेपाल के पड़ोसी जिला के अलावा पश्चिम बंगाल आ झारखंड से भी भक्त यहाँ सालों भर आवित है, लेकिन सावन माह में ई मंदिर के बात कुछ अलग हुई है। सावन महीना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ आके बाबा कुशेश्वर नाथ के जलाभिषेक करित हतीन। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुशेश्वर स्थान के शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के आयोजन हुई है। कहल जाइए 18वीं शताब्दी में नरहन सकरपुरा देवढ़ी के रानी कलावती द्वारा इस भव्य मंदिर के निर्माण कैल गेल रहे। फिर से 1970 के दशक में कलकत्ता के बिरला ट्रस्ट द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार कैल गेल आ 1990 के दशक में स्थानीय बाजार के नवयुवक संघ द्वारा इस मंदिर के देखभाल शुरू कैल गेल। वर्ष 2016 से न्यास समिति के अधीन इस मंदिर के कार्यभार सौंपल गेल। कुशेश्वर स्थान के पक्षी अभयारण्य के लेल भी जानल जाइए। पक्षी प्रेमी के लेल इ एगो पसंदीदा जगह है, जहाँ सर्दी के दिन में पक्षी के दुर्लभ प्रजाति बड़का संख्या में यहाँ प्रवास करैया। कुशेश्वर स्थान में एगो झील भी है। इ झील में कमला करे जैसन झील से पानी आवेत है। ये झील मछली उत्पादन के लेल भी प्रसिद्ध है। देखो, कुशेश्वर स्थान में ऐसन बहुत मनोरम दृश्य है जे पर्यटक के ध्यान अपना तरफ आकर्षित करित है। यहाँ के कलकल बहित नदी के धार, पेड़ पौधा के हरियाली, देसी विदेशी पक्षी के कलरव, हर तरफ नदी पोखर झील के जाल, दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के धरा पर प्रकृति द्वारा अपन प्यार लुटायल गेल है। ग्रामीण जीवन के शांत परिवेश, शरद ऋतु में यहाँ के धरा जन्नत से कम नहीं।

होइया अगर कोई प्रकृति प्रेमी है तो यहाँ अवश्य पधार सकत हतीन आ यहाँ के खूबसूरती के देख आनंद प्राप्त कर सकत हतीन। देखो वैसे तो दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के संबंध में बहुते बात है, पर आए बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब कार्यक्रम में समय हो रहा है शब्द सरिता की। शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है पचरा, एकर मायने होइया झंझट। जेना लोग कहत हतीन कि दोसर के पचरा में नहीं पड़े के चाही, मतलब दोसर के झंझट में नहीं पड़े के चाही, तब पचरा के मायने भेल झंझट। छूछे, एकर मायने है खाली। जेना लोग कहत हतीन हमरा भोजन में छूछे रोटी है, मतलब खाली रोटी है, तो छूछे के मायने भेल खाली। अनेजा, एकर मायने है इंतजार। जेना कोनो कोनो लोग कहत हतीन कि हम भोर से लेके साँझ तक हुनकर अनेजा करत रही, मतलब हुनकर इंतजार करत रही, लेकिन वो नहीं अलन, तो अनेजा के मायने भेल इंतजार। एगो शब्द आयल है गुमान। जेना लोग कहत हतीन हमरा अपन बच्चा के ऊंचा पद प्राप्त करत देख बहुत गुमान होइया, मतलब बहुत गर्व होइया, तो गुमान के मायने भेल गर्व होना। तो ई रहे शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। अब कार्यक्रम अपन समाप्ति पर है। बज्जी का कार्यक्रम अंगना अपने सबके कैसन लगैया, अपने अपन विचार अपन सुझाव पत्र के माध्यम से या ईमेल के जरिए हमरा सबके भेज सकत हती। हमर पता है बज्जी का कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तब बज्जी का कार्यक्रम अंगना संगे हम फिर अपने समक्ष उपस्थित हुए। तो अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हम विजेता सिन्हा एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

मज्जिका कार्यक्रम अंगना अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं।
3: हिंदी सामान किनना,
1: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
2: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर। भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घुराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
1: प्रगति।

0: भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
1: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
2: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
3: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
4: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी दरभंगा है, अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक

0: दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? ओ, तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल सब खोल रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर

0: नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
1: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे।

0: pensa comigo.
1: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
0: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है,
2: चल
1: ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल

0: बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या
2: है?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
4: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
2: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो
3: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
0: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और

बागेश्वर में भी पड़ता था और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT यह प्रायोजित कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब सुनिए फिल्म संगीत।

आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है नए जमाने के नए तराने। पहला गाना सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज में, फिल्म है सन ऑफ सरदार। संगीत और बोल जानियर के हैं।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए उदित नारायण की आवाज में, फिल्म है श्रीकांत, संगीत दिया है आनंद मिलिंद और आदित्य देव ने।

0: नए जमाने के नए तराने कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में। राम संपत का संगीत है और प्रशांत पांडे के बोल। फिल्म है लापता लेडीज।

नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अब सुनिए रूमी और अनुराग साकिया को। अनुराग साकिया का ही संगीत और शकील आजमी के लिखे बोल हैं। फिल्म है भीड़।

नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अब सुनिए रूमी और अनुराग साकिया को। अनुराग साकिया का ही संगीत और शकील आजमी के लिखे बोल हैं। फिल्म है भीड़।

नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए रूमी वरुण जैन की आवाज में। अनुराग साकिया का संगीत और कौसर मुनीर के लिखे बोल हैं। फिल्म है द डिप्लोमेट।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए फिल्म यारियां 2 से। आवाज है परंपरा टंडन की, मनन भारद्वाज का संगीत है और मनन भारद्वाज के ही बोल।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए अरुण देव यादव की आवाज में, अनुराग साकिया का संगीत और जूनो के लिखे बोल हैं। फिल्म है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी।

नए जमाने के नए तराने, वक्त होता है ख़त्म। आप फिर सुन पाएंगे नए जमाने के नए तराने शाम 5:40 पर।

0: फिल्म संगीत का भी आप आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे रविवार 21 जून 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश। विशेषज्ञ नरेंद्र प्रसाद निराला से बात कर रहे हैं संजय कुमार। प्रस्तुति होगी असद दाऊद की।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: योग सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ऐसा अनुशासन है जो मन और शरीर के बीच तारतम्य स्थापित रखने पर केंद्रित है। यह चित्त वृत्ति निरोध के संयम का द्योतक भी है और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर परमात्मा को देखने का प्रयास भी है। हजारों वर्षों से भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा रहा योग स्वस्थ जीवन जीने की कला भी है और विज्ञान भी। स्वास्थ्य संवर्धन, जीवन शैली से जुड़े स्वास्थ्य विकारों पर नियंत्रण और रोग निवारण में सहायक प्राचीन भारत की परंपरा के द्योतक इस योग को भारत की ही पहल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और पहचान मिली है और 21 जून को विश्व भर में हम 12वां योग दिवस मना रहे हैं। इस साल विश्व योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हम बता दें कि अनेक जटिल रोगों के साथ साथ जीवन शैली से जुड़ी अनेक समस्याओं में योग को सही ढंग से अपना कर हम बहुत हद तक राहत प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या बढ़ती उम्र के साथ योगाभ्यास करने में कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए? ये सावधानियां हैं कौन सी? किसी खास रोग से बचाव या निवारण के लिए हमें किस आसन या प्राणायाम से फायदे हो सकते हैं? कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों और इनसे जुड़े तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से। बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और बतौर विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं जाने माने योग परामर्शी नरेंद्र प्रसाद निराला जी। नरेंद्र प्रसाद निराला जी, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में संभवतः पहली बार, आपका स्वागत, नमस्कार।
2: धन्यवाद आपका और हमारे सभी श्रोताओं का जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।
1: जी, बहुत सारी बातें होंगी योग को लेकर और ये बढ़ती उम्र के साथ जो योग है, जो इस पर थीम है, उस पर भी हमारा फोकस होगा। एक श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, जय हिंद।
3: मोहन पासवान गांव बसतपुर से सर बोल रहा हूँ।
1: हाँ मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा है आज कार्यक्रम में?
3: सर, किसी बच्ची को कुछ देर दोनों पांव बंद बैठे रहने पर उठने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और गिरने लगे, ऐसे बच्चे को कौन सा ये करना चाहिए उसे ठीक होने के लिए? सर दूसरा है सर की किस प्रकार का योग और खान पान को अपना कर जीवन भर स्वस्थ सफल जीवन जी सकता है लोग? सर
1: जी,
3: तीसरा है सर की आजकल प्रत्येक उम्र के लोगों का नजर कमजोर हो रहा है और चलने लगे हैं, प्रत्येक बच्चों को और लोगों को किस प्रकार का योग किया जाए, खान पान का उपयोग किया जाए जिससे कि भविष्य में ऐसे बच्चों को चश्मा न लगाना पड़ेगा?
1: तीन सवाल आ गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो मोहन पासवान जी, एक एक कर हम लोग विचार कर रहे हैं इन सवालों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: इनका तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लगातार बैठने के बाद जो है उनके आंखों के सामने अंधेरा छाना। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन भर कैसे स्वस्थ रहे? और तीसरा क्वेश्चन है कि नज़र कमज़ोर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं पहले कि जो आँख के सामने अंधेरा छा रहा है उसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी होगी जिसके कारण से वो अंधेरा छा रहा है। तो सबसे पहले उनको अपने पोषक तत्व का जो भी कमी है उसका पहले एक बार चेक करवाना चाहिए। उसके साथ ही यदि नज़र कमज़ोर उनका आ रहा है या हो सकता है कि मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं या जो भी चीज़ें, तो उनके लिए हम लोग जल नीति और सूत्र नीति के बारे में बताते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कितने एज के हैं, और कम एज के हैं तो उनके लिए त्राटक जो है अभ्यास है, और जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए जो है तो
1: कार्यक्रम ही है।
2: हाँ, तो वो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे।
1: एक और श्रोता जुड़ गए। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: हमारा नाम है चंद्रेश्वर साहब, ब्रह्मपुर कुंडी जाली प्रखंड से बोल रहे हैं। सर
1: जी, चंद्रेश्वर साहब जी बताइए।
4: हमारा उम्र है 66 साल और उम्र जो है बढ़ती घटती में कब तक हम लोग व्यायाम कर सकते हैं, कितने उम्र से लेकर कितने उम्र तक?
2: रियली योग में कोई नहीं, कुछ भी सीमा नहीं होता है। मेरे साथ अभी साथ में 84 ईयर्स की एक

0: उषा जी हैं जो हमारे साथ योग कर रही हैं और बहुत अच्छे से सभी आसन परफेक्टली करती है। तो योग का कोई सीमा नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो बहुत ही धीमी गति से आसन करना है और ब्रेथ के साथ, आपके श्वास प्रश्वास के साथ प्रत्येक आसन को धीरे धीरे कीजिए करेंगे तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भूलने की बीमारी है उसके लिए जो है भ्रामरी प्राणायाम आप लगातार कीजिए 2 से 5 बार, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और कम से कम 7 मिनट 8 मिनट तक इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो आपकी जो भूलने की बीमारी है वो भी धीरे धीरे दूर होती चले जाएगा।
1: एक श्रोता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मैं दिनेश मिश्रा सरसा पाई से बोला हूँ। कुल्हे का दर्द और ठेहुने का दर्द, इन दोनों दर्द के निवारण के लिए कौन सी योग प्रक्रिया को अपनाई जानी चाहिए?
0: दिनेश जी, आपको जो है सबसे पहले जब भी आप योग आसन करते हैं,
1: इनका जवाब ले लेंगे। एक श्रोता और भी लाइन पर है ना,
0: ठीक है,
1: उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। हेलो।
3: नमस्कार सर। नमस्कार
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: महाकांत सिंह बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ महाकांत सिंह जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से।
3: जी सर
1: जी, कहा जाए, क्या जिज्ञासा है?
3: आपने योगा दिवस पर योगाचार्य को बुलाया, इसे बड़ा उपहार क्या मिलेगा श्रोताओं के लिए
1: जी
3: सर?
1: तो इसका फायदा उठाइए और जिज्ञासा व्यक्त कीजिए महाकांत सिंह जी।
3: 57 साल का हो, मधुमेह से ग्रसित हूँ, मुझे कौन सा योग करना चाहिए जिससे मुझे मधुमेह में फायदा मिले सर?
1: अच्छा सवाल है। और एक साथ जितने भी मधुमेह के मरीज हैं अगर वो इस कार्यक्रम को ट्यून करके रखे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उन्हें भी फायदा हो जाएगा।
0: तो सबसे पहले हम दिनेश मिश्रा जी जो सरसों पाही से हैं,
1: दिनेश मिश्रा जी का और महाकांत सिंह जी आपका, दोनों का सवाल हम ले चुके हैं और इसका जवाब बारी बारी से दे रहे हैं।
0: जिन्हें कूल्हे और घुटने का दर्द है उनके लिए सिंपल सा, जब हम दोनों पांव को सीधा करके और आराम से दोनों हाथ को बगल में रख के पैर की उंगली को जस्ट धीरे से मोड़ते हैं श्वास के साथ और ओपन करते हैं, खोलते हैं, मोड़ते हैं, ओपन करते हैं। बट श्वास के साथ जब हम ओपन और क्लोज करते हैं तो घुटने के दर्द में काफ़ी रिलीफ देता है। उसके साथ जो जानू नमन है, जानू मतलब घुटना, तो जानू नमन जब हम अभ्यास करते हैं तो उससे भी हमारा घुटने का दर्द में काफ़ी राहत मिलता है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं।
1: अच्छा।
0: कूल्हे के दर्द के लिए जो व्यक्ति भुजंग आसन में आके और थोड़ा सा होल्ड करेंगे आंखें बंद करके और अपने कूल्हे पे ध्यान देंगे और ये भाव करेंगे कि जो हमारा कूल्हा का दर्द है वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी इसमें इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है। तो ये कूल्हे के दर्द के लिए हो गया। मधुमेह जिनको भी होता है उनका ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है
1: जी।
0: जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा इनको। हो सकता है कि ये इनका जो सुबह होगा वो चाय लेते होंगे खाली पेट और इवनिंग में जो है वो लेट नाइट, मतलब लेट नाइट भोजन करते होंगे, तो उसमें भी इन्हें चेंज करना पड़ेगा। इनके लिए जो योगासन है उसमें इनको मंडूक आसन ये कर सकते हैं, इवन सिर्फ भुजंग आसन भी करेंगे और पेनक्रियाज पे ये ध्यान दे के इस आसन को करेंगे तो उनको मधुमेह में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा।
1: एक बात बताइए नरेंद्र प्रसाद निराला जी।
0: जी जी,
1: योग को कहा जाता है कि अगर कोई रोगग्रस्त है तो उसमें तो सहायता होती है, लेकिन हम आरोग्य हमें प्राप्त तो होता रहे, हम रोगी हों ही नहीं, इसके लिए योग में क्या है संधारण?
0: इसके लिए सिंपल सा है, जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखें, साथ ही साथ जो है क्योंकि 2017 में बायोलॉजिकल क्लॉक पे एक रिसर्च मिला था कि हम सन के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल होता है, सूर्य के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल होता है तो हम बीमार कम पड़ते हैं, ठीक है। और बीमार पड़ने का मेन कारण होता है कि हमारा स्लीपिंग का जो है वो भी प्रॉब्लम है, हमारा खान पान का भी इशू होता है।
1: ये भी बता दें कि अगर किसी भी तरह का कोई भी योगासन बताया जाता है कि आपके लिए ये बेहतर है, ये बढ़िया है, आप करें, तो अच्छा होगा कि अगर आपके नज़दीक में कोई योगा एक्सपर्ट हैं तो उनकी आप सहायता ले सकते हैं। एक श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात करें। जी नमस्कार। हेलो।
4: नमस्कार संजय
1: जी।
4: नितिन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूं। जी जैसा है जिनको सर दर्द कर रहा है, जिनको गैस है, उसके लिए क्या क्या योग है, इसके लिए जानकारी?
1: अच्छा, थोड़ा सर दर्द के लिए बता दें कि सर दर्द जो है वो किस तरह का सर दर्द है?
4: गांव भर में

0: अलग लोग बराबर
1: ये डिपेंड करता है। आप मुझे ये बताइए कि उनको महामारी के टाइम पे सर दर्द हो रहा है?
2: हाँ, महामारी के टाइम में
0: पहले भी होता है, उसके बाद कभी भरोसा नहीं, 10-15 दिन पे होता है, आधा सर दर्द करता है।
1: आधा सर? हाँ हाँ, आधा सर जब दर्द करता हो तो उनके लिए क्या है कि जलनीति का अभ्यास सटकर्म के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ उन्हें जो है शीर्षासन यदि करवा सकते हैं तो वो कर रहे हैं, या ये किसी भी एक्सपर्ट के सहायता से करें, अपने मन से नहीं करेंगे। और जो है आपको इन्वर्टेड आसन, जो जिसमें सर जो है नीचे जाता है, ऐसे अभ्यास उनको काफ़ी हेल्प करेगा। एक चीज़ और कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने कई सारे लोगों को करवाया है, नींबू और पानी को मिक्स कर लीजिए, उसको पहले पी लीजिए, और आपका जो उंगली है, उंगली का जो टिप है, जो ऊपर वाले भाग को आप 30 सेकेंड 1 मिनट के आसपास प्रेस करेंगे तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा सर दर्द में। तो ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जो भी इन्वर्टेड आसन है, सर के बल करने वाला आसन, वो काफ़ी हेल्प करेगा सर।

0: रात में खाना खाने के बाद वज्रासन के लिए कई एक्सपर्ट बताते हैं कि वज्रासन में जाने से भी गैस की जो समस्या है वो थोड़ी कम होती है।
1: ऑब्वियसली तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा जो अभी खान पान है, मोबाइल और जो अभी हमारा वर्किंग लाइफ है, इसके कारण से लेट नाइट हो गया है, जिसके कारण से भी जो गैस बनना, एसिडिटी होना या खाने के साथ जो हम पानी पीते हैं, इसके कारण से भी गैस बनने की समस्या, एसिडिटी होना, ये सब हो जाता है। तो खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद पानी पिए तो बहुत ही हेल्प मिलेगा।
0: और रात में खाना खाने के बाद, दो घंटे के बाद सोए तो ज़्यादा।
1: हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोग बताते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अभी बताया था तो 2017 में बायोलॉजिकल क्लॉक पे नोबेल प्राइज़ मिला है। तो शाम के बाद मतलब भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के बाद भोजन नहीं करेंगे तो हमारे पास टाइम मिलता है, तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तब हम सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है वो सुबह इजी टू बाहर निकल जाता है, बहुत ही आराम से बाहर निकल जाता है, तो पेट साफ होगा तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी।
0: इस समय हमारे एक श्रोता जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: हमारा नाम हुआ सर जोगिंदर और उम्र हुआ 65। सर सुनिए ना, ये ठौना जो दिनों है ना, कमर का नीचे एकदम इतना दर्द करता है, चलने में भी अस्वस्थ हो रहा है, बेचारे 10 दिन से हुआ है।
1: आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि आपको भुजंग आसन का अभ्यास बहुत ही आराम से आप उसको कर सकते हैं। अन्यथा आप दोनों हाथ को अपने जो आपका ठुड्डी है, ठुड्डी के पास लगा लीजिए, स्टैंडिंग पोजीशन में मकरासन की स्थिति में आ जाइए, और एक के बाद एक पैर को आप मोड़िए और अपनी कुल्हे से टच करेंगे। इससे क्या होगा कि जो जिन्हें मतलब कमर का जो दर्द है, वो कमर का दर्द में काफ़ी रिलीफ उनको मिलेगा। घुटने के दर्द के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप जानू नमन का अभ्यास करेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और कभी कभी जो है आप अपने लेग में थोड़ा सा ऑयलिंग किया कीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा।
0: एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी नमस्ते सर, मैं भानुप्रिया गुप्ता समीला दरभंगा से बात कर रही हूं।
0: जी जी भानुप्रिया, बताइए क्या जिज्ञासा है।
3: जी सर, मेरी मम्मी का उम्र है 37, उनका पैर की ना मतलब एडी में बहुत दर्द रहता है 10-15 दिनों से, तो अच्छा। उसके लिए कोई योग है बताएं सर।
1: आप मुझे ये बताइए कि मम्मी ने हाल में कोई चप्पल या स्लीपर जो भी है वो चेंज भी की है क्या?
3: नहीं सर, वो तो बहुत एक ही स्लीपर है जो रेगुलर यूज़
1: हाँ करती। तो जो फ्लैट होता है ना, जो मतलब स्लीपर जो हार्ड हो जाता रहता है, वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम करता है एरी दर्द में। तो जो कांटे वाले जो चप्पल होते हैं वो लीजिए, और रात में सोने से पहले एक बकेट पानी में सॉल्ट डाल के लेग को उसमें डालना शुरू कीजिए, वार्म वाटर में। और जिन्हें बीपी हो वो क्या करेंगे कि वार्म वाटर के साथ साथ एक तौलिए को नॉर्मल पानी में गीला करके सर पे रख लेंगे, और साथ ही साथ इसको करने के बाद थोड़ा सा ऑयलिंग कर लीजिए लेग में, तो ये जिनको सोने में रात में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती, उनको भी ठीक होता है। जिनको वेरिकोज वेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनका एरी में दर्द है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक बार आप यूरिक एसिड का जरूर चेक करवा लीजिए, यदि यूरिक एसिड में प्रॉब्लम होगा तो फिर एक बार अपने एक्सपर्ट से, जो भी डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, वैद्य हो, उनसे जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको और बेटर सलाह दे सकते हैं।
0: एक श्रोता जुड़ गए। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: मैं राम कुमार शाह से मेरा भिंडी कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ श्रीमान।
0: जी नमस्कार, बताया जाए क्या जिज्ञासा है।
4: जिज्ञासा है कि मेरे दाहिने घुटने में फुटबॉल खेलने के क्रम में 50 वर्ष पहले,
0: जी
4: श्रीमान 50 वर्ष पहले मेट आ गया था, जिसका इलाज किया, प्लास्टर हुआ, 1.5 महीने तक प्लास्टर भी कराया, कटने के बाद सारी क्रियाकलाप किया, कॉलेज का जीवन, सेवा का जीवन ऐसे व्यतीत किया, अब तो रिटायरमेंट में ही हूँ, 79 वर्ष का उम्र मेरा हो चुका है
0: जी।
4: और अब जो है पिछले 2 वर्षों से पुनः वही दर्द हो रहा है, बैठने उठने में, कुछ चलने में, वैसे साइकिल चला लेता हूँ लेकिन चलने में उठने बैठने में परेशानी है, तो वृद्धावस्था का उम्र है और इस उम्र में कौन सा वृद्धाश्रम किया जाए ये हम जानना चाहेंगे।
0: राम
4: और इसके पूर्व योग दिवस है, इसकी शुभकामना हम करते हैं।
0: राम कुमार शाह जी

0: 80 साल की आयु में आप थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर लेते हैं,
1: ये बहुत ही अच्छी बात है,
0: ये सुखद अनुभूति है हम लोगों के लिए भी। और जो घुटने का दर्द है ना, आपने बताया कि 50 साल पहले चोट लगी थी, उससे आप तो उभर गए थे, लेकिन अब वो दर्द उभर कर फिर से आने लगा है।
2: जी यही कारण है।
1: जी अभी आपने रिसेंटली कहीं पे चेक करवाए थे क्या?
2: चेक करवाए थे।
1: उसमें क्या बोला गया आपको?
2: उन्होंने कहा कि ये वृद्धावस्था से संबंधित रोग है।
1: ओके,
2: इसलिए इसको दवा खाते रहिए।
1: आपके पैर की उंगली, आपने दायां पैर बोला था ना, दाहिने घुटने में दर्द हो रहा है, राइट? हाँ, तो आपके पैर की उंगली में भी दर्द होता है?
2: नहीं, उंगली में दर्द नहीं।
1: हाँ, तो पैर की उंगली का जो चौथा उंगली है, अंगूठे से लेके चौथा उंगली जो होता है, चौथा उंगली है ना, उस उंगली के पास में जो ज्वाइंट है उसको भी आप प्रेस करेंगे तो आपके घुटने के दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक बार घुटने का, एक बार घुटना, हाँ चौथा उंगली, उसको आप दबाएंगे उससे भी ठीक होगा। और इससे पहले भी मैंने बताया है कि आप उंगली नमन, क्या कहता है, जानू नमन, ये सब अभ्यास आपके घुटने में काफ़ी हेल्प करेगा, तो इस अभ्यास को कीजिए। और चौथे उंगली को आप प्रेस करेंगे, और एक पेपर टेप आता है जो दवा दुकान पे आपको मिल जाएगा, वो पेपर टेप लीजिए, उसमें मेथी चिपकाइए और उस चौथे उंगली में उसको चिपका के उस मेथी को प्रेस करेंगे तो आपके घुटने दर्द में काफ़ी आराम आपको मिलेगा। तो इस तरह से करने से घुटने दर्द को आप आराम दे सकते हैं।
0: एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: दुखी पंडित राम। हाँ,
0: दुखी पंडित जी बताइए, क्या जिज्ञासा है?
3: हमारा जिज्ञासा है सर, हमको भी गैस बनता है, बस आप तबियत रहता है, बस यही बीमारी है, तो हम लोग आज कैसे करें उसको, जो कि हमें आसान मिले।
0: दो बात बता दीजिए दुखी पंडित जी, आप करते क्या हैं पहली बात, और दूसरी बात कि आपकी उम्र कितनी है?
3: हमारा उम्र है सर 64 वर्ष सर, कीर्तन भजन में रहते हैं, नाल बजाते हैं।
0: अच्छा।
3: और अपना घर पर जीवन है,
0: अच्छी बात है, सुनिएगा क्या बता रहे हैं।
1: दुखी जी, आपके लिए जो अभ्यास है मैंने पहले भी बताया, टीटी के तरासन, तिर्यक तरासन, कटी चक्रासन, आप पहले क्या करेंगे, रात में सोने से पहले एक चम्मच जीरा लेंगे और एक गिलास पानी में डाल देंगे, सुबह उस पानी को गर्म करके और उस जीरे को साइड कर लीजिएगा और पानी पी जाइएगा। उसके बाद बस जितना पानी पी सकते, गर्म पानी ही पीना है सुबह में, और पीने के बाद आप ये तीन आसन, तारासन, तिर्यक तारासन और कटी चक्रासन, ये अभ्यास करेंगे। आप किसी भी एक्सपर्ट के सहारे आप इस अभ्यास को करें तो बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे अभी गैस बना हुआ है तो आपका जो हाथ का तलहती है, तलहती पे आप दूसरे हाथ के अंगूठे से उसको प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे तो 5 मिनट के बाद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो गैस है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे मधुमेह के लिए योग,
0: योग जी,
1: तो उसमें जो योग का अभ्यास है, मंडूकासन हम कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार में भुजंगासन भी आता है, इसके बाद जो है भुजंगासन के साथ पादहस्तासन, तो ये सब अभ्यास। लेकिन ध्यान ये है कि ध्यान ये देने की बात है कि हम ब्रेथ के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे बहुत ही अच्छे से पड़ता है, क्योंकि जब हम देखेंगे तो हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारे ब्लड के साथ मूव करेगा तो जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज होना बंद हो जाएगा, और जिसी को हम लोग प्राण ऊर्जा बोलते हैं, तो उस तरह से प्राणायाम के साथ, ब्रीदिंग के साथ हम अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी ही मधुमेह पे काबू पा सकते हैं।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार।
3: गर्मी में योग कितने देर करना चाहिए? सर्दी के मौसम में
0: ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है
1: आपका, बहुत ही अच्छा।
0: एक बार अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम है चंदेश्वर साहब, इस फल के चंदेश्वर साहब बराबर सुरभि जाले प्रखंड से बोल रहे
0: हैं। समझ गया चंदेश्वर साहब जी, आपका पहला सवाल तो ये था कि उम्र सीमा निर्धारित है क्या योगा, योग
1: नहीं,
0: के लिए,
1: योग के लिए।
0: अब पूछ रहे हैं कि मौसम के हिसाब से योग कितनी देर करना चाहिए। जी
1: तो मौसम के हिसाब से, अभी गर्मी चल रहा है तो गर्मी में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए।

0: जिससे हमारा बॉडी जो है मतलब क्या कहता है कूल हो, मतलब जिसमें ठंडापन शीतलता का अनुभव हो। तो इसमें शीतकारी प्राणायाम, प्राणायाम शीतली प्राणायाम या चंद्रभेदी प्राणायाम, जो चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं नाक से सांस लेना छोड़ना इस तरह से, तो ये अभ्यास बहुत हेल्प करेगा। तो कम से कम 1 घंटे, इतना भी नहीं हो पा रहा है तो 10-10 मिनट का गैप करके भी, मतलब भर दिन में 10-10 मिनट भी यदि आप योग 3 बार 4 बार कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है कि आपको योग का अभ्यास खाली पेट करना है। तो कम से कम खाना खाने की 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने के बाद, या उससे पहले आधे घंटे पहले आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी राहत देगा। योग का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा पूरा बॉडी मुड़ जाए घूम
1: हाँ
0: जाए, ऐसा
1: जैसा
0: कहते नहीं है। योग का मतलब इतना है कि हम किसी भी आसन को स्थिर पूर्वक, जैसे कहा गया है पतंजलि योग सूत्र में स्थिर सुखम आसनम, तो स्थिर पूर्वक जब हम किसी भी आसन में बैठते हैं तो वो योग कहलाता है। अब हम हमें जब प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ है और वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए योग कैसे करवाएं? तो जस्ट उनका फिंगर यदि हल्का भी मूव करने लगा तो डैट इज योग, कि वो योग है। ब्रीदिंग के साथ यदि वो ब्रीदिंग पे अपने श्वास पे यदि फोकस करना शुरू कर दे ध्यान पूर्वक बहुत ही स्थिर से, तो वो भी प्राणायाम के अंतर्गत आता है और वो भी योग का ही पार्ट है। तो मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन्हें ये सब प्रॉब्लम है, बस मेरी बात को थोड़ा सा अमल करके देखिएगा। 1 सप्ताह के लिए ही आप सिर्फ शाम का भोजन छोड़ दीजिए, और शाम मतलब 5 बजे तक आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद भोजन मत कीजिए, और
1: सूर्यास्त के बाद भोजन
0: सूर्यास्त
1: मत
0: के बाद
1: कीजिए।
0: भोजन मत कीजिए, और सुबह में चाय जो आप लेते हैं उसको 1 वीक के लिए आप स्किप करके देखिए। आप देखेंगे 1 वीक के बाद आपके अंदर क्या चेंजेज आता है, और आपको यदि अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा।
1: अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो प्राणायाम को लेके ज्यादा इच्छुक होते हैं।
0: निषदों में कहा गया है कि सबसे जो बेस्ट है, मतलब आसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम को दिया गया है।
1: अच्छा,
0: तो जितना ज्यादा प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से आप सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो क्योंकि आप देख लीजिए कि जो हमारा बायां जो नोस्टिल है वो चंद्र नाड़ी है, दायां जो नासिका है वो सूर्य नाड़ी है। तो इसके माध्यम से हमें बोला जाता है कि बायां करवट लेके सोना चाहिए। बायां करवट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट हो, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो, इसलिए बोला जाता है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा दोनों मतलब ब्रेन में जो है ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और हम स्वतः धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं।
1: अनुलोम
0: तो
1: विलोम,
0: अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो अनुलोम जैसे प्राणायाम
1: भस्त्रिका।
0: भस्त्रिका प्राणायाम, तो सभी अलग अलग जो प्राणायाम है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए उसमें अलग अलग प्राणायाम करवाया जाता है। तो सभी के लिए जो भी मतलब जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं।
1: नरेंद्र प्रसाद निराला जी, कार्यक्रम का समय अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ है, तो चलते चलते ऐसे लोग जो 40+ हैं, 50+ हैं, 60+ हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
0: उनको बस हम एक ही चीज कहेंगे कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो दिल खोल के ठहाके मार के हंसना शुरू कर दीजिए।
1: अच्छा,
0: इस तरह से जब आप करते हैं, इस तरह से आप हंसते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो जितने भी प्रॉब्लम हैं स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे।
1: अच्छा,
0: सूक्ष्म योग कर सकते हैं, जितने भी ज्वाइंट हैं हमारे, जितने भी ज्वाइंट है उसका मूवमेंट करना है ब्रीदिंग के साथ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी अभ्यास करें तो हम श्वास पर श्वास के साथ अभ्यास को करेंगे, तभी हमें वो फायदा करेगा।
1: कुल मिलाकर इतनी बात कि बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग, ये था आज की हेलो जिंदगी का विषय। बतौर विशेषज्ञ आज कार्यक्रम में नरेंद्र प्रसाद निराला जी, आपने अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आज के दिन खासकर हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले अंक में किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ साथ संजय को विदा दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: एल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। और बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ पे हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अभी आप सुन रहे थे 21 जून 2026 को प्रसारित हेलो जिंदगी का संपादित अंश। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: Janak Lata. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में

0: मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्ज़र तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards.

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर के उपरांत यानी दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत के अंतर्गत स्वदेश फिल्म में एआर रहमान को। दोपहर के 1:15 पर सुनवाएंगे फिल्म संगीत। दोपहर 2 बजे आप सुनिएगा हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। इलाकाई खबरों का समय होगा दोपहर के 2:05 पर। दोपहर 2:10 पर सुनिएगा रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। समय होगा दोपहर के 2:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2:30 पर। बच्चे का लोकगीत सुनवाएंगे दोपहर 3 बजे। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम। चर्चा का विषय होगा ओलंपिक मूल्य और भारत के युवा खिलाड़ी। संध्या 5:40 पर आप आनंद ले पाएंगे नए फिल्म संगीत का। संध्या 6 बजे सुनिएगा दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। विद्यापति गीत का आनंद ले पाएंगे आप संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे संध्या 6:25 पर। संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर नव ऊर्जा। चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर। संध्या 7 बजे सुनिएगा खेती गृहस्थी। संध्या 7:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 7:47 सुनिएगा जिले की हलचल। संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सिंगरहार यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9 बजे सुनिएगा न्यूज़ एट 9।

खबरनामा आप सुन पाएंगे रात्रि के 9:15 पर। विविधा सर्वभाषा यह कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। इंग्लिश टॉक सुनवाएंगे आपको रात्रि 9:45 पर। एक फनकार यह कार्यक्रम सुनिए रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार और रात्रि के 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आइए अब आपको हम सुनवाते हैं देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है स्वदेश फिल्म से। आवाज है AR रहमान की।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गाने के संग, जिसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है सागर।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है फिल्म रेड से। आवाज है राहत फतेह अली खान की। मनोज मुंतसर के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है रेखा भारद्वाज और जावेद अली की आवाज में। गुलजार के लिखे गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने। फिल्म है रावण।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है फिल्म पुकार से। आवाज है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। सिद्धार्थ गरिमा के लिखे गीत को सुनिए संजय लीला भंसाली के संगीत में, आवाज नीति मोहन की। फिल्म है पद्मावत।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए अभिजीत और निर्जा पंडित की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म खूबसूरत।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। फिल्म है लुटेरा।

और अब फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आखिरी गाना जो हमने चुना है आपके लिए, वो हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाज है श्रीनिवास की।

फिल्म संगीत का भी आप आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया जा रहा था। पुनः फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर के 2:30 पर।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों और कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। श्री कुरियन की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचारों और संकल्पों को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पटना स्थित भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक भव्य पार्क बनाने की भी घोषणा की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने ऋण वितरण को लेकर बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ऋण वितरण में बैंकों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के

0: मुकाबले अब तक बहुत कम ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी भी दी है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बांका समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के गिरियक में सबसे अधिक 71.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में लू चलने की संभावना है। जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अररिया जिले में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों में नशा मुक्ति को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनखर चौक के पास एक दोपहिया वाहन के शोरूम में आग लग गई। इस घटना में कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप असीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनाकिद होने वाले दूसरे शहरी अवार्ड तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री समेत कुल 65 पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। मारूफ टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूटी, प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म अवार्ड पाने वालों में शामिल हैं। मरकजी वजीर बराए कोऑपरेटिव अमित शाह आज नई दिल्ली में इंडियन कौमी ज़रई बाहमी मार्केटिंग यूनियन नेफेड की नीलामी पोर्टल का आगाज़ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी के अमल में शफाफियत, महारत और रसाई के फ़रोग में अहम कदम है। इससे नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को आसान बनाने और किसानों और ज़रई इदारों के मफाद में नेफेड का काम में बेहतरी लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा। वजारत बाहमी इश्तराक ने बताया कि प्रोग्राम के दौरान जनाब अमित शाह कई अहम डिजिटल और किसान पर मरकूज पहल का भी आगाज़ करेंगे। अक्लियती उमूर और माही और मवेशी परवरी नीज डेरी के वजीर ममलिकत जॉर्ज कुरियन ने मरकजी वजारत को कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी असर से उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। जनाब कुरियन के राज्यसभा की रुकनियत की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरंदेश ख़यालात और अज़ायम को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। वज़ीर-आला पटना वाक़े बीजेपी दफ्तर में जनसंघ के बानी जनाब मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुनक़दा खराज अक़ीदत प्रोग्राम से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि NDA हुकूमत एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर को मुस्तहकम करने के लिए लगातार काम कर रही है। वज़ीर-आला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर शानदार पार्क बनाने का भी ऐलान किया है। नायब वजीर आला और वजीर खजाना बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कर्जों की तकसीम के हवाले से बैंकों की खराब कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। पटना में रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए मिस्टर यादव ने कहा कि कर्जों की तकसीम में बैंकों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि हदफ के मुकाबले में अब तक बहुत कम कर्ज तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बैंक हुकाम को कारकर्दगी में सुधार लाने की वार्निंग भी दी है। ریاست کے بیشتر حصوں میں مانسون کی سرگرمی نظر آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں نالندہ، نوادہ، شیخ پورہ، لکھی سرائے اور بانکا سمیت ریاست کے جنوب وسطی اور جنوبی مشرقی حصوں میں بھی کئی مقامات پر درمیانے درجے کی بارش درج کی گئی ہے۔

0: नालंदा के गिरियक में सबसे ज़्यादा 71.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने अपने पेशगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत रियासत के शुमाल वस्ती, शुमाल मशरक़ी और जनूब मशरक़ी हिस्सों में कई मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का भी खदशा है। महकमा ने अपनी पेशगोई में यह भी कहा है कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद और पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में लू चलने का इम्कान है। जहानाबाद के एसडीओ की सदारत में मुहर्रम के पेशे नज़र टाउन थाना कैंपस में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़द की गई। मीटिंग में त्यौहार के दौरान अमन व अमान बनाए रखने के लिए गौर व खौज किया गया। अररिया ज़िला में 17 जून से 26 जून तक नशा से पाक हफ्ता का इनाकात किया जा रहा है। इस दौरान मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों और दफातर में नशा से निजात के लिए हलफ लिया गया। मगरबी चंपारण के रामनगर थाना हल्का के तहत सोनखर चौक के करीब एक दोपहिया गाड़ी के शोरूम में आतिशबाजी के वाक़े में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। उर्दू डायरेक्टरेट काबीना सेक्रेटरीट बिहार पटना के ज़ेर एहतमाम आज वहाब अशरफी यादगारी तकरीबात का इनाकाद फनेश्वर नाथ रेणु हिंदी भवन में किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर रईस अनवर ने की। इस मौके पर नदीम जाफरी की सदारत में महफिल सुखन का भी इनाकाद किया गया। महकमा के डायरेक्टर एसएम परवेज़ आलम ने कहा कि इस तरह की तकरीब के इनाकाद से नई नस्ल को पुराने लोगों से जोड़े जाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026, कुल पद 1829, आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जा सकते हैं। JKSSB 2026, कुल पद 130, आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2026, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026, कुल पद 607, आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। BSNL 2026, कुल पद 100, आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026, न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल, अधिकतम 30 साल। ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।
3: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी।

0: पार्टी का, और मूठ जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षा

0: भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनेनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनेनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय

0: पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गाना सुनिए हेमंत कुमार की आवाज में। साहिल लुधियानवी के लिखे बोल को संगीत दिया है SD बर्मन ने। फिल्म है प्यासा।

अगला गाना सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत, फिल्म तेरे घर के सामने।

पिया तो से नैना लागे रे। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और अब सुनिए फिल्म काला पानी में आशा भोसले को। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है एजरी बर्मन ने।

इसी गाने के संग फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं अब बज्जी का लोकगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं मणिमाला कुमारी, अवधेश कुमार राय, ब्रजेश कुमार सुमन और अमित कुमार। इन चारों से एक एक बज्जी का लोकगीत का आनंद लें।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: घर सामानी कौशल्या देवी खांग पंचायत गांव के तो बढ़ा रहे है कि गली नली बना रहा है हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है आगे बढ़ाने चाह रहा है ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था उस सब के बना रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पर पार्क बनवाया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया जो है, कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अभी आप बज्जिका लोकगीत का आनंद ले रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हुए हैं। हमारी पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः संध्या 5 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: हम
1: ये ना
0: बता ना
1: हो,
0: कर रहे,
1: हाँ
0: खुद ही
1: बिल्कुल,
0: फंस गए उस चक्कर में
1: ये ना हो कि
0: तो
1: बात पहले झगड़े हो रही थी आपस में, बात बात वाला।
0: लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
1: जी
0: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है।
1: जी
0: अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
1: जी
0: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
1: बिल्कुल। और एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
0: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई, और उसको सुनकर के तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
1: बिल्कुल
0: काम
1: पड़ोसी हो
0: करता
1: चाहे
0: है।
1: भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
0: बिल्कुल। और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है ना कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम
1: बिल्कुल,
0: कर रहे हो, है ना?
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस

बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम, तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। अगर नजरों से

0: तो देखो भाई, इतनी गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए, हाँ। कि आग में घी डालने वाली बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्रोता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आइए लिखते हैं कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज़्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज़ को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है, नमक मिर्च लगा के, तो वो चीज़ें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहाँ पर वहीं तक सीमित
1: रखे, समझाने जी करें, ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल,
1: है
0: हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
1: अब बताओ तुम क्या करते हैं?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर

0: सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लॉ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पर अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए, जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी।

0: तो देखो भाई हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करनी
1: है। बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो काम होते थे सब वही होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुड़ जाता
1: बिल्कुल था। हर मौसम समझ लीजिए हमारे

0: आंगन में उतरता था,
1: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में
0: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था, क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
1: तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी भर जाए।
0: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी, सभी के घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहाँ पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहाँ पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे।
1: देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे, आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पर मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर करते थे, तो बहुत मजा आता था।
0: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते हैं, अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
1: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत याद है। और हमारे साथी क्या
0: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे, गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक थी।
1: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी, मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय। और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है, उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे, ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे, मिट्टी

0: के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे, याद होगा तुम्हें, ईंटों से घर बनाते थे खेलने के लिए, गुड्डे गुड़िया भी रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की
1: बिल्कुल
0: जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता
1: जी।
0: लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताज़ी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता है ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो, एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे ज़माने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है, बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था, जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितने किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था, जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी।
1: और हर मौसम का, हर मौसम का, चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहाँ जहाँ धूप जा रही है ना, वहाँ वहाँ पे कुर्सियां भी जा रही, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गया सीजन में तो वो भी काट के, सब
1: मतलब जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का।
0: आनंद उठाते हैं गीत,
1: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया।
1: इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15, फिल्म मुल्क,
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा,
0: और फिल्म थप्पड़,
2: एक टुकड़ा भूत का अंदर अंदर मनसा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
3: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली, और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और दधियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब

0: मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
1: जी।
0: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
1: जी,
0: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
1: जी जी।
0: ये 1984 का जमाना था।
1: कितने बड़े थे आप?
0: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओ, तब तो बहुत छोटा।
0: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है। तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: जो पान में सुपारी खाई जाती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी,
0: थोड़ा
1: जी।
0: सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ। और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
1: जी, जी, जी।
0: या उसको समझने में या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर,
0: हाँ, कर दिया ऑन। और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही थी।
0: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।
1: क्या बात।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई।
1: ओ।
0: और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने,
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम हुआ करता था।
0: हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई। और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई, पहली गजल मैंने उसी दिन कही। और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी।
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है।
1: हाँ।
0: क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो
0: बिल्कुल,
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना?

0: भी सुन सकते हैं, वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है
1: जी
0: गानों
1: हाँ,
0: की,
1: जी हाँ, जी
0: उसकी
1: हाँ,
0: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
1: हाँ वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
0: क्या बात है,
1: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
0: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है जख्म भरते ही
0: जी।
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है
0: जी जी।
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है
0: जी।
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप के यहाँ।
0: बिल्कुल।

0: जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था। तो ये प्रोसेस था,
1: चल रही थी,
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
1: जी।
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये

0: तो ये प्रोसेस था,
1: चल रही थी,
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
1: जी।
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे। और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ
1: जी।
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
1: जी।
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं, लड़की।
1: जी जी जी,
0: ठीक है। तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में, स्किज़ोफ्रेनिया। मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ, जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
1: जी,
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है, वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर,
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह,
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह,
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
1: जी,
0: हम उसको बहुत आसानी से, उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए, उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है, दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं नानी की जबान से सुनी हुई, वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत, नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है यार।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है।
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था
1: जी जी।
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से, एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था, जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनिया

0: कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था उसमें कमजोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ,
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहाँ पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में।
1: जी, सूरत में। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी,
0: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की।
1: जी, शीन काफ निजाम भी आए थे इसमें।
0: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है।
1: कुंडली आपकी पता है। लेकिन हमें श्रोताओं तो कुछ जाना है। सारी
0: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीन काफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी,
0: सब
1: जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
1: जी,
0: मुल्क
1: जी,
0: में
1: जी।
0: संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं
1: जी जी।
0: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था। और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
1: जी,
0: थे
1: जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का समय था।
0: हाँ, हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीन काफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूंगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवानही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है,
0: है ना,
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा था।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के

0: था मैं, तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नज़दीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है, अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते,
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था
1: जी, जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशआर लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी

0: व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
1: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
0: जी,
1: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए।
0: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
1: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
0: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका, उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी,
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी।
0: अच्छा,
1: कभी
0: ये बात तो नहीं पता,
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
0: भीड़
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
0: जी।
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त।
1: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने
0: जी,
1: वाले
0: जी, जी।
1: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूँ मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कट कटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं

0: उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा है, बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ।
0: हाँ,
1: व्हाट्सएप नंबर।
0: हाँ, तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी,
1: जी जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद,
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी। तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है। तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार,
0: जिद,
1: जिद फिल्म,
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया, है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में।
1: जी, क्या बात।
0: तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया है। वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।

विभ 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत और साथ ही साथ कुछ आपसे बातचीत भी होगी। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं अरविंद कुमार झा के स्वर में ये भगवती गीत।

अभी आप दोस्तों सुन रहे थे पूनम कुमारी के स्वर में ये लोकगीत। और कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत भी करेंगे ओलंपिक मूल्य और भारत के युवा खिलाड़ी इस विषय को भी लेकर के। लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत कुमारी कल्याणी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे कुमारी कल्याणी के स्वर में ये लोकगीत। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पूर्व में चर्चा की थी कि आज हम लोग बातचीत आपसे करेंगे ओलंपिक मूल्य और भारत के युवा खिलाड़ी इस विषय पर। तो आइए, ओलंपिक मूल्य भारतीय युवाओं के चरित्र निर्माण और शारीरिक विकास का मुख्य आधार बन रहे हैं। खेलों की मदद से देश में न केवल एथलेटिक प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी में अनुशासन, समानता और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का जज्बा भी पैदा हो रहा है। खास करके युवा, कहा जाता है कि युवा जो हैं वो तो समाज के रीढ़ होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सचमुच वो तो समाज के रीढ़ हैं, और यदि कोई काम असंभव सा प्रतीत हो रहा है तो फिर हमें हम चाहें तो युवा को यदि सौंप देते हैं तो इन किन प्रकारें युवा वर्ग उस कार्य को संपादित कर देता है या कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता की बात यह है, या सोचने की बात यह है कि क्या यदि युवा समाज में न हो तो क्या उस समाज का विकास हो पाएगा? तो शायद हम सभी लोग उत्तर जानते हैं कि वह विकास जो है विकास के नाम पर विकास नहीं होगा, और हम सभी लोग नहीं अर्थात नहीं ही आंसर देंगे, अर्थात उस समाज का विकास नहीं होगा ये जिस समाज में यदि युवा ना हो। क्योंकि युवा युवा हैं, उनमें अथाह शक्ति की बात होती है और एक अलग से जज्बा भी होता है, जुनून भी होता है, और काम करने का तरीका हो या फिर कोई भी कार्य क्यों ना हो, उनके लिए बहुत आसान सा प्रतीत हो रहा होता है, और घंटों के काम वह मिनटों में कर बैठते हैं। जहाँ तक युवाओं का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और खेल के साथ जीवन में भी निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित करती है, यह खिलाड़ियों को अपने प्रतिद्वंद्वियों, नियमों, पर्यावरण और स्वयं का सम्मान करना सिखाती है। और साथ ही साथ मित्रता की भी यदि बात होती है तो जब खेल खेल में, चूंकि सारे लोग जानकार ही होते हैं अर्थात आपस में एक दूसरे को जान ही रहे होते हैं, ऐसी भी बातें नहीं होती है। यदि हम दो लोग चार लोग यदि खेलना आरंभ करते हैं तो गाहे वगाहे दो चार लोग वहाँ भटकते हुए, दो चार युवा वहाँ आ बैठते हैं जो सबसे पहले तो मित्रता करते और फिर खेल में हाथ बटाते, साथ में खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार की उनकी मनोवृत्तियाँ होती है या इस प्रकार का उनका मानना होता है। फिर हम युवा जो हैं वह विभिन्न प्रकार से या विभिन्न तौर तरीके हम अपने कार्यों को करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम भारत की जो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी, उनकी बात यदि हम करते हैं तो देखिए किस प्रकार से उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। उदाहरण स्वरूप नीरज चोपड़ा और मनु भाकर जैसे युवा खिलाड़ियों की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने, युवा खिलाड़ियों की सफलता ने करोड़ों भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया है कि वे विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं। और यदि वो विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं तो उनका समाज, उनका घर, उनका जिला, उनका राज्य, इन सभी क्षेत्रों में भी वह अव्वल होते हैं। यहां तक कि

केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और वह भी सम्मान पाती है और कंधे से कंधे मिलाकर के कार्य को करती है। चाहे बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग हो, लड़के हो या लड़कियां हो, उससे यहां यह मतलब नहीं होता है। लेकिन चाहे वह क्रिकेट का मैदान हो या फिर बैडमिंटन का मैदान हो, चाहे शतरंज का खेल हो या फिर भाला फेंकने की बात हो, हर जगह महिलाएं अपना उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। और क्या वो युवा नहीं है? ऐसी भी बातें नहीं है। वह हम युवाओं की तरह कंधा से कंधा मिला करके कार्य को करना जानती हैं और कार्य करती भी हैं। अस्तु, कार्यक्रम में पुनः हमारी आपसे बातचीत होगी आगे। तब तक आपको हम सुनवाते हैं ये लोकगीत सुषमा कुमारी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे नीलम झा एवं सहेली के स्वर में ये लोकगीत। और देखिए दोस्तों, यूं ही बातचीत करते धीरे धीरे घड़ी की सुई भी आगे बढ़ती चली जा रही है और अब हम लोग कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म फराज का यह गीत। गायक कलाकार हैं खालिद अहमद, संगीत निर्देशन समीर राहत का है और बोल हैं आलोक रंजन श्रीवास्तव एवं समीर राहत के।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के

अभी आप सुन रहे थे एनिमल फिल्म का यह गीत सोनू निगम की आवाज़ में, बोल थे राजेश शेखर के और संगीत निर्देशन हर्षवर्धन रामेश्वर का था। अब आइए सुनते हैं, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तेजस का यह गीत अरिजीत सिंह एवं शाश्वत सचदेवा की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऑन द रोड का यह गीत हिमांशु रावत की आवाज में। संगीत निर्देशन मृगांका भट्टाचार्य का था और बोल थे शाश्वत राज के। श्रोताओं क्षमा करेंगे, बोल थे श्वेता राज के। इसी गीत के साथ दोस्तों फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसे सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किया जाएंगे और खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7:00। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे इसी सभा में संध्या 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा सर्वभाषा। रात्रि 9:45

मिनट पर इंग्लिश टॉक प्रसारित किए जाएंगे। एक फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। पुनः आप फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल अर्थात बुधवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। वो 10 वर्षीय बालक विषय होगा और आलेख एवं वाचन होगा सुरेंद्र झा का। कृषि चर्चा आप सुनेंगे 5:55 पर। 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। ल्यूकोरिया रोग विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर हीना आरजू। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रतिदिन 6:10 पर। रामचरित मानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे और नमस्कार मिथिला कार्यक्रम प्रातः 7:05 पर प्रसारित किए जाएंगे। अंजुवन प्रोग्राम आप सुनेंगे 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। 10 बजे समय होगा फिल्म संगीत का। लोकगीत 10:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे बांसुरी वादन दिन के 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर। पुनः आप 12 बजे आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। देशभक्ति गीत दिन में 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। इलाकाई खबरें का समय होगा दोपहर 2:05 पर और दिन में 2 रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे 2:30 पर। सुगम संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 3 बजे। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवानी कार्यक्रम। विद्यापति गीत संध्या 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी शाम 7 बजे प्रसारित किए जाएंगे। गांव घर आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। लोक माधुरी कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किए जाएंगे और गीतों के रंग 10:30 पर आप सुनेंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत, संवेत स्वर में ये सुनिए विद्यापति गीत।

अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। कलाकार थे काशीनाथ झा किरण। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई राष्ट्रपति भवन मे आयोजित दोसर नागरिक अलंकरण समारोह मे पद्म पुरस्कार प्रदान कयलनि। राष्ट्रपति 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण आ 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण प्रदान कयलनि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशम गुरु शिवू सोरेन के मरणोपरांत पद्म भूषण सँ सम्मानित कयल गेल। पार्श्व गायिका अलका याग्निक, सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज आ अभिनेता ममूटी के पद्म भूषण सँ सम्मानित कयल गेल। ओतहि भारतीय टीमक पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पद्मश्री सँ विभूषित कयल गेल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आई नव दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टलक शुरुआत कयलनि। एहि पोर्टलक आरंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता आ सुगमता बढ़ेबा में एकटा महत्वपूर्ण डेग अछि। एहि सँ

0: नीलामी संबंधी गतिविधि सभ के सुगम बनेबा आ किसान सभ आ कृषि संस्था सभक हित मे नैफेडक कार्यकुशलता बढ़ेबाक लेल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होयत। नैफेडक प्रगतिक चर्चा करैत श्री शाह कहलनि जे ई संगठन आई 74 लाख किसान सभक सेवा करयवला एक मजबूत संस्थान बनिकऽ सोझा आयल अछि। बिहार पुलिसक सिपाही भर्ती परीक्षा काल्हि प्रदेश भरिक विभिन्न केन्द्र सभ पर आयोजित कयल जायत। ओहि के लऽ कऽ सुरक्षाक व्यापक प्रबंध कयल गेल अछि। एम्हर रेलवे अभ्यर्थी सभक सुविधाक लेल कतेको स्पेशल ट्रेन चलेबाक निर्णय कयलक अछि। पूर्व मध्य रेलवेक मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र जनौलनि जे आई आ काल्हि कुल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनक परिचालन कयल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक नेतृत्व मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचार आ संकल्प सभ के साकार कयल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री पटना स्थित भाजपा कार्यालय मे जनसंघक संस्थापक श्री मुखर्जीक बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक भव्य पार्क बनेबाक सेहो घोषणा कयलनि अछि। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ऋण वितरण के लऽ कऽ बैंक सभक खराब प्रदर्शन पर नाराजगी प्रकट कयलनि अछि। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटीक बैसक के संबोधित करैत श्री यादव कहलनि जे ऋण वितरण में बैंक सभक लापरवाही सोझा आयल अछि। ओ बैंक अधिकारी सभ के प्रदर्शन सुधारबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। भारतीय जनता पार्टी आपातकालक वर्ष दिवसक अवसर पर 25 जून के राज्य भर में संविधान हत्या दिवसक रूप में मनाओत। भाजपाक वरिष्ठ नेता पवन जायसवाल आई पटना में प्रेस वार्ता में जनौलनि जे एहि अवसर पर पटनाक ज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जेपी सेनानी सभ के सम्मानित कयल जायत। ओ जनौलनि जे केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में सम्मिलित होयताह। अल्पसंख्यक कार्य आ मत्स्य पशुपालन आओर डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सँ इस्तीफा दऽ देलनि अछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तत्काल प्रभाव सँ हुनकर इस्तीफा स्वीकार कऽ लेलनि अछि। राज्यक अधिकतर भाग में मॉनसूनक सक्रियता देखल जा रहल अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में जनौलक जे अगला 24 घंटाक दरमियान दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी सुपौल सहित राज्यक उत्तर मध्य उत्तर पूर्व आ दक्षिण पूर्व भाग में कतेको ठाम अन्हर पानिक आशंका अछि। एहि दरमियान किछु ठाम वज्रपात भऽ सकैत अछि। विभाग अपन पूर्वानुमान में जनौलक जे पटना सहित राज्यक दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण गर्मी की संभावना अछि। अररिया जिला में 17 जून से 26 जून धरि नशा मुक्ति सप्ताहक आयोजन कयल जा रहल अछि। एहि दरमियान कतेको सार्वजनिक संस्थान आ कार्यालय सभ में नशा मुक्ति के लऽ कऽ शपथ ग्रहण कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक बक्सरक दौराक दरमियान प्रशासनिक लापरवाहीक आरोप मे नगर परिषदक कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक के निलंबित कऽ देल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

0: भाई अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार लाल बहिन, संगे संग नव ऊर्जा के जे श्रोता लोकन युवा लोकन उनका एक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। देखियो लाल बहिन, युवा लोकन जे होत ओ अथाह ऊर्जा के स्रोत होत छथि। आवश्यकता एक गप कह कि हुनक ऊर्जा के उचित दशा और दिशा दल जाए आ अई दिशा में छे से जे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है इस समाजक लेल लोक सेवा के महत्व आ ओकर गुणक सम्मान केने विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान के उजागर केने लोक सेवा के काज के मान्यता देने और युवा लोकन के लोक क्षेत्र में कैरियर बनाबे के लिए प्रोत्साहित केने अछि।
0: एतबेने गुप्पी भाई, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाओल जाते है जे आई अछि आज के दिन। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विगत 2003 ईस्वी से समुदायक लेल सार्वजनिक सेवा के उपयोगिता ओ गुण के जश्न मनेबा के दृष्टि से नामित कयल गेल छल।
1: आ वर्ष 2003 में पहिल पुरस्कार समारोह के बाद से संयुक्त राष्ट्र के दुनिया भर से लगातार बेसी संख्या में आवेदन प्राप्त भ रहल अछि। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार लोक सेवा में उत्कृष्टता के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अछि। ई ओहि लोकन लेल अहाँ के जे लोक सेवा संस्थानक जे रचनात्मक उपलब्धि अछि और योगदान के पुरस्कृत करत अछि जे विश्वभर के देश में बेसी प्रभावी और उत्तरदायी लोक प्रशासन के बढ़ावा देत अछि। वार्षिक प्रतियोगिता के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार लोक सेवा के भूमिका व्यावसायिकता और दृश्यता के स्पष्ट करित अछि।
0: ठीक है, हाँ कहलो तो ई तो भेव के आई असली तो गप अहाँ कहलो गोपी भाई, मुदा आई जे कार्यक्रम अपन सबके ओ तो नव युवा भाई बहन के लोकन कार्यक्रम है ना, तो हुनका लोकन के तक किछ अपना सब जना के देखियो जे नव ऊर्जा कार्यक्रम में हम सब गप करे छी नव श्रोता लोकन के लेल नव युवा लोकन के लेल। तो केंद्र सरकार द्वारा युवा लोकनिक विकास के हेतु कतेको प्रकारक योजना सब चलाओल जा रहल अछि, जाहि में से एकटा योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अछि, जकर मुख्य उद्देश्य युवा लोकन के रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएब अछि।
1: देखियो युवा लोकन अथाह ऊर्जा के स्रोत होइत छै।
0: हाँ,
1: आवश्यकता एहि गप के अछि कि हुनक छै से जे योग्यता अछि ओ योग्यता के छै से निखारनाइ,
0: बुझलियै ना।
1: अच्छा, सबसे पहले अछि कि छै से शारीरिक और मानसिक दशा और दिशा ठीक हेबाक चाही, तो अइ लेल छै से युवा लोकन के अपन शरीर पर स्वास्थ्य पर ध्यान देबाक चाही।
0: निश्चित रूप से,
1: आ जँ स्वस्थ रहता
0: तखने निक स्वस्थ
1: आ हाँ आ कोनो विशेष अहाँके काज के लेल अगर ओ शिक्षित और प्रशिक्षित हेता तो वह मानवीय संसाधन बनता जे बेसी से बेसी उत्पादन क के समाज क और राष्ट्र के देता।
0: देखियो सब जाता सरकारी नौकरी तो उतने संभव है तो तहन तो हमरा सब के जे कौशल विकास रहे कभी कल ऊर्जा छे नहीं उनका पास बुद्धि छे नहीं आ मेहनत आ ईमानदारी जे रहतन तो बहुत रास एहन क्षेत्र छे जाय में वो काज क अपन पैर पर
1: प्रधानमंत्री कौशल
0: प्रसन्न रह सके छे, तनाव में नहीं रहता आ ने दोसर देश पलायन करता, ने देश में रह क बहुत रास एहन काज है जे
1: प्रतिभा का जो सम्मान है तो प्रतिभा के पलायन किया है,
0: काज के कोन कमी छे। आवश्यकता एक गप के छे अहाँ अपन हुनर के निखार करू, अपन जज्बा के देखाओ आ ईमानदारी पूर्वक अहाँ जै क्षेत्र में जाओ कर।
1: तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जे अइ में अहाँ के युवा लोकन के अपन कौशल के निखारे लेल प्रशिक्षण देल जाइए आ देखियो प्रशिक्षणो काल में जे प्रशिक्षण जे काल अछि ओहू में छै से अहाँ के मानदेय के रूप में जे अभ्यर्थी होइत छथि हुनका 8,000 रुपया प्रति मंथ माने प्रति माह छै से अहाँ के देल जाइए ताकि जैसे हुनका उत्साह बढ़न। तो सरकार देखियो छै से अहाँ के प्रशिक्षणो दऽ रहल अछि, अहाँ के मानदेयो दऽ रहल यऽ,
0: मनोनुकूल रोजगारक लेल प्रशिक्षण तऽ देबे करै छथि आ पूँजी के व्यवस्था सेहो कयल जाइत अछि।
1: हाँ हाँ,
0: पूँजी के किस्त मे माने सधबियौ अहाँ
1: एहन जे शिक्षा अहाँ के जे संस्थान में प्रशिक्षण लऽ रहल छी ओहि संस्थान में रोजगारों के व्यवस्था भऽ
0: जाय, निश्चित रूप सँ आ जाहि मे सरकार द्वारा अनुदान सेहो देबाक प्रावधान अछि। आवश्यकता अहाँ ठीके कहलहुँ, एहि गप के अछि जे हम कते जागरूक छी आ कते
1: सजग छी साकान छी,
0: किया तऽ जागरूक तहि के रह पड़त,
1: किया तऽ आँखि बंद कऽ कऽ रोजे रहबै तखन तऽ छै से अहाँ लाभ नहि उठा सकै छी।
0: सुतल के मुँह मे तऽ मृग नहि एतै, कोशिश करे पड़त, एहि लेल तऽ अहाँ के
1: मेहनत करब, सजग रह पड़त, साकांच रह पड़त आ सरकार के योजना के छै से उचित समय पर
0: जानकारी सेहो रहत।

0: प्रखंड कार्यालय में जानकारी भेटे
1: बहुत रास गप अपना सब कर मुदा पहले किस संदेश है सुन ले छियो के बाद
2: समय पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
5: बात घर की।
6: आज का दूसरा सवाल पूछा है इरफान मलिक जी ने। मुंबई में बारिश के कारण इनके घर में दीमक की समस्या काफी रहती है। गांव में घर बनाते वक्त ये समस्या ना हो, इसके लिए उपचार जानना चाहते हैं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
7: जिन इलाकों में दीमक की दिक्कत आती है, वहाँ निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किसी एक्सपर्ट के द्वारा करवा लें। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके घर की नींव से लेकर हर एक प्लिंथ और फ्लोरिंग तक केमिकल की परत लगाई जाती है, ताकि दीमक से आपके घर को बेहतरीन सुरक्षा मिले।
5: बात घर की।
0: हाँ, छोटसिन विराम को उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई संग में छले तहां का छे से लाल बहिन। तो लाल बहिनों कहित रहे यहाँ का कि जे युवा लोकन जे छथि हुनका जे यहाँ का ई लोक सेवा दिवस है, ई लोक सेवा दिवस के माध्यम से लोक सेवा में केना महत्वपूर्ण योगदान दे सके छी, आ आई के लेल जे उचित मानसिक दशा और दिशा हेबाक चाही आ काज के प्रति जानकारी हेबाक चाही, तो लोक सेवा दिवस के माध्यम से ई जानकारी काज के प्रति आ काजक लेल जे तैयारी हेबाक चाही से छै से अहाँ के एमे भेटैत अछि।
1: आप गोपी भाई किछ मनोरंजन करे मन अपना सब अपन बता लोकन के
0: कि हां
1: क्या त जहन गीत नाद में रहे छै तखने तनाव मुक्त भ
0: गीत नाद रहे छै तखने ने ऊर्जा बनल रहत
1: ऊर्जा बनल रहत आ छुछे खाली काजे करता तहन त नै मोन लगत
0: नै कि हां
1: त कि आप त गीत नाद भ जाय ने
0: हां एकदम
1: सुनि हमरा लोकन एकटा लोक गीत
0: सुनी।

0: हाँ एखन हमसब अहाँके गीत सुनै छलहुँ हँ, कलाकारके छलथि हँ
1: बजरंग बलियो
0: श्याम बिहारी छलथि,
1: श्याम बिहारी राय छलथि। तऽ देखियौ बजरंग बली के दिन छनि आ बजरंग बली वला गीत सुनलहुँ, श्रोता लोकनि के सेहो खूब नीक लागल हेतनि। आ देखियौ
0: वास्तवमे देखियौ बजरंग बली जे छै ओ कर्मयोगी छथि
1: एकदम,
0: जँ हुनक चरित्रके अंश मात्र हमसब जीवनमे उतारी, युवा लोकनि उतारै हँ, तऽ जीवनके सर्वांगीण विकास
1: हैत, सफल भऽ जेतनि जीवन।
0: हुनका बारेमे कहल जाइत अछि कि मनोजवंग मारुतुल्य विगंग जितेन्द्रियंग बुद्धिमतांग वरिष्ठम वातात्मजंग बानरुत मुख्यंग रामदूतंग शरणंग प्रपद्य। मन को ओ जितने रहित आ दोसर तरफ कहै छथि कि राम काजू किने बिनु मुही कहाँ विश्राम, जाबत तक सीता मैया के खोज नहि कऽ लेब ताबत तक कोनो आराम नहि करब विश्राम नहि करब।
1: तहिना युवा लोकनि के जब तक जे लक्ष्य के प्राप्ति नहि भऽ जाइ छनि तब तक विश्राम नहि।
0: हमर सबके देश के जे प्रथम प्रधानमंत्री छलथि पंडित जवाहरलाल नेहरू ओहो कहने छलथि युवा लोकनि के कि आराम हराम अछि, जाबत तक अपन लक्ष्य के प्राप्ति नहि कऽ ली ताबत तक आराम नहि करब।
1: मन मे हम बना लेबै ठान लेबै आ जज्बा अहाँके जे हमरा ई करना अइ तऽ अहाँके निश्चित रूपसँ एक बेर मे नहि हैत, दू बेर मे नहि हैत, तीन बेर, लेकिन प्रयास जे अहाँके जारी रहत ओ निश्चित रूपसँ गोपी भाइ हेबे टा करत। तऽ युवा लोकनिके एहि बात पर बुझबाक चाही। तऽ एहि लेल सबसँ पहिने गोपी भाई युवा भाई बहिन लोकनिके स्वस्थ रहनाइ बड़ आवश्यक छै,
0: एकदम जरूरी अछि।
1: स्वस्थ जहन रहता हुनका मानसिकतामे स्वस्थ विकास,
0: स्वस्थ रहता तखने छै से अहाँके
1: सोचो हुनकर सकारात्मक
0: अपन क्षमताके 100% ओ दऽ सकै छथि। आ गर्मी मासमे स्वस्थ रहनाइ एहि लेल किछु विशेष प्रयास करब। आब देखै छियै कते डकहा रोड अहाँके, ई प्रचंड रोदी चंडाल वाला रोदी, हँ तऽ एहि रोदीमे छै से जखन बहुत आवश्यक अछि तखने घर सँ बाहर निकली आ जँ निकली तऽ माथा पर छै से कम से कम हँ सूती छै से तुलिया भेल या किछु भेल,
1: एहिमे लाज के बात नहि छै। युवा भाई बहिन कहै छै जे नहि से नहि नहि छाता लेलहुँ तऽ अहाँ गमछी ओढ़ि लिअ, अहाँ अपन जान बचाओ, अहाँ ई नहि देखियौ जे हमरा एहिमे खराब लगैया कि नीक लगैया।
0: बेसी से बेसी जल पीबाक चाही
1: निश्चित
0: रूप से, ताकि जैसे शरीर जे यऽ ओ अहाँके हाइड्रेटेड रहे।
1: जल नहि तऽ सत्तू नहि तऽ नेबो पानि,
0: नेबो पानि भेल
1: किछु पीबू अहाँके, जे सब अन्न कमो खाओ, खाना अहाँ कमो खाओ गोपी भाई वाला, नहि कोनो बात
0: जल बेसी से बेसी
1: पानि वाला चीज, खीरा ककड़ी,
0: खीरा भेल ककड़ी भेल नेबो
1: भेल,
0: नेबो जल बराबर सेवन करबाक चाही। आ हल्का पौष्टिक आहार के सेवन केनाइ अनिवार्य अछि, तेल मसाला के उपयोग कम से कम करी, हल्क भोजन करी, तो अहाँ लू से और डिहाइड्रेशन से सुरक्षित अहाँ रह सकै छी। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास जल पीबाक चाहिए, भले अहाँ के प्यास नहीं लागल हुए
1: तैयो जबरदस्त।
0: हाँ अच्छा, प्राकृतिक जो पेय पदार्थ है शरीर के ठंडा रखे लिए नेबो पानी भेल, नारियल पानी भेल, छाछ भेल, सत्तू भेल,
1: ई सब बेसी से बेसी।

0: कैफीन और अल्कोहल सब बची चाहिए एकदम कम से कम पीबी
1: आदत छन त ठीक छै एक बेर भिनसा में
0: कॉफी त बिल्कुल
1: नै
0: पीबी अच्छा अल्कोहल से शराब से एकदम बचवा के चाहिए ई मस एना केखनो
1: ई जे
0: खराब काज है कोनो मास में छै से अल्कोहल के सेवन नै करी हम आ चाय कॉफी और शराब का सेवन बिल्कुल नै करी किया त शरीर में ई जल के कमी करैत अछि आ रौद में निकले से बची दिन का सबसे जे गर्म समय हो या 11 बजे से लो के आ सांझ में 4 बजे तक घर के अंदर में या छाया में रहे के कोशिश करी
1: हां जे आवश्यक काज है तो ठीक छै कहां के जनाय आवश्यक है तो साकांच भ का ई नियम के पालन क
0: नियम के पालन कर
1: गाड़ी चलबे छी त उत्तिक रौद में ने गाड़ी चलाऊ कनी कनी गति सीमा में अपन गाड़ी युवा लोग चलाबे थे माने अपन स्वास्थ्य पर ध्यान रखत सब काज करत त निश्चित रूप से सफलता भेट बेटा करतन आपकी गोपी भाई मनोरंजन हेबा चाहिए
0: तो गीत ना हेबा के चाहिए
1: तो की पहले गीते ना सुना दे छिन फिर गप सफेद
0: है ठीक छै

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। सिरी यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत सिरियामा। हमने RWD के प्रयास से, ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: हाँ, एखन हम सब गीत सुने छलो हम,
4: एखन सब सुनलहुँ।
3: हाँ, उससे पहिने अरविंद कुमार झा के स्वरमे। देखियो लाल बहन, हम सब चर्चा करे छलो हाँ, कि रौद आ गर्मी से बचाव कोना करब, तो ओहिमे सन स्क्रीन के प्रयोग करबाक चाहिए। घर से बाहर निकले से पहिने नीक क्वालिटी के आके सन स्क्रीन चश्मा जे होइए से, आ उचित कपड़ा पहिनी, हल्क रंग के सूती और ढीला ढाला कपड़ा पहिरबाक चाही, ताकि हवा आसानी से शरीर तक पहुँच सके। आ पौष्टिक आहार लेबाक चाही, भोजन कम करी लेकिन जे करी पौष्टिक आहार,
4: रोग प्रतिरोधक क्षमता बनल रहत।
3: अच्छा, आ ताजा फल आ बेसी से बेसी टटका फल जे होइए,
4: सलाद
3: सलाद हाँ भोजनो टटका हेबाक चाही। अपन आहार में तरबूजा भेल अहाँ के, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जे हाँ हाँ, कहबे कहलहुँ कि हल्क भोजन करी, भारी या बेसी मसालेदार खाए से बची, किया तो शरीर में अहाँ के अंदरूनी गर्मी बढ़ाबे। आ बाहर का खाना से बची,
4: बुझलहुँ,
3: पेट के बीमारी जेना दस्त या जे फूड पॉइजनिंग होइए, ओहिसे बचे लेल कटल फल या स्ट्रीट फूड जे रोड चौराहा पर जे बिकाइए खुला में, हाँ ओ नहीं खेबाक चाही। और व्यायाम करबाक चाही, योगा करबाक चाही। 21 जून के विश्व योगा दिवस छल, देखलिए पूरा विश्व अहाँ के योग कर रहल छल।
4: ई नहीं एक दिन वही दिन खाली केलहुँ, ओकरा देखियौ हम ई कहब युवा भाई लोकन के, बुझलहुँ जे भागम भाग जीवन में व्यस्तता बेसी छन, लेकिन ओहिमे जेना सब काज लए हमसब ब्रश करै छी, नहाइ छी प्रतिदिन,
3: ओकरो आवश्यक बुझी,
4: ओ आधा घंटा नहि हुए 15 मिनट हुए, लेकिन प्रतिदिन करबे
3: प्रत्येक दिन तकने एकर लाभ है। आ योग जे है,
4: एक दिन कलबे
3: योग जे है, जो वहां का वास्तव में तन मन के जोड़े, तन मन के संतुलित करे, बुझलहुँ, तो योग के माध्यम से अहाँ शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्षम बन सके छी, स्वस्थ बन सके छी, आरोग्य बन सके छी। आ तखने न जखन तन और मन संतुलित रहत, आरोग्य रहत, तखने छै से कोनो काज अहाँ नीक जना कऽ सकब, नीक जना कऽ सकब।
4: जे युवा भाई बहन पढ़ाई करै छथि तऽ ध्यान केंद्रित ओहिसँ होइ छै, की गोपी भाई,
3: एकदम होइ छै,
4: पढ़ाई में अहाँके स्मरण शक्ति सेहो अहाँके तेज होयत, अहाँ भिनसरे उठ कऽ जे पढ़ै छी, तऽ जे भाई बहन अपन तैयारी करै छथि तऽ हुनको दिनचर्या में केना छनि, आइ हम ई पढ़ब, आइ ई सब्जेक्ट पढ़ब, आई पढ़ब, ई विषय में आई पढ़ब, तो तहिना प्रतिदिन दिनचर्या जो निक रहतन, निश्चित रूप से वो अपन जीवन में सफलता पेबे टा करता। दिनचर्या लेकिन हेबाक चाहिए प्रतिदिन, ई नहीं आई केलहुँ आ काल्हि छोड़ देलिए, से नहीं हेबाक चाहिए। कोनो काज
3: कोनो चीज के जे अहाँ अभ्यास करबे,
4: हाँ बहुत पैघ छै,
3: लगातार करबे तखने छै से ओकर उचित परिणाम भेटै छै। और अहाँके जे जे समय में व्यायाम

0: करै छी ओही समयमे करबाके चाही। जहाँ ई नहि कि छै से कखनो कऽ लेलहुँ 9 बजे
1: दिनमे
0: आ कखनो छै से रातिमे कऽ लेलहुँ।
1: कोनो चीजके समय सुतैएके कि भोजन करैके देखियौ कोनो चीजके समय होइ छै। आइ काल्हिके युवा लोकनिके देखै छियनि जे नहि खाएके समय रहै छनि, नहि जलपानके समय रहै छनि, नहि सुतैके समय रहै छनि, मोबाइले देखै छथि तऽ रातिमे 12 बजे 1 बजे। तऽ नहि, सवेरे उठू आ मोबाइलके सुतासँ पहिने तँ 2 घंटा निश्चित रूपसँ ओकरा नहि छूबू
0: कि
1: तखने अहाँके बढ़िआँ नींद हैत। आ नींद भेनाइ तँ बड़ आवश्यक छै, ओहि समय तनावमे अहाँ आबि जाइ छी, चिड़चिड़ापन भऽ
0: जाइ छै। तखन तऽ अहाँ छै से शारीरिक आ मानसिक रूपसँ बोझिल बनि कऽ रहब आ कोनो काजमे अहाँके रुचि नहि आयत, कोनो काज नीक नहि हैत,
1: तामस भऽ जायत, अहाँके क्रोध भऽ जायत,
0: क्रोध भऽ जायत। आ घरके ठंडा राखी, दिनके समय खिड़की आओर पर्दाके बंद कऽ कऽ राखी ताकि सोझे जे छै धूप घरके अन्दरमे
1: नहि
0: आबै छै से।
1: हँ, आ त्वचाके बाहरे रहलासँ लू लगै छै,
0: घरोमे रहै छै ने। हँ हँ, आ त्वचाके देखभाल करैत रही, बुझलहुँ कि नहि। आ बाहर जखन निकली तऽ टोपी आओर रोजके जे चश्मा होइत अछि ओ अहाँके लगा ली। तऽ ईसब जे किछु गपके ध्यानमे राखब तऽ निश्चित रूपसँ छै से अहू मासमे हमसब स्वस्थ रहब, आरोग्य रहब, आ सकाञ्च रहऽ पड़त। आओर सबसँ पैघ जे आवश्यक अछि कि सकारात्मक सोच, सोच चिन्तन अहाँके छै से आरोग्य हेबाक चाही।
1: हँ,
0: जखन चिन्तन अहाँके आरोग्य हैत तखने अहाँके काज आरोग्य हैत। आब अहाँ कतबो व्यायाम कऽ लेब लेकिन मोनमे अहाँके भरल यऽ दुष्टता, भरल यऽ ककरो विकासके देखि कऽ छै से अहाँ एकदम जरि रहल छी, ककरो अहाँ उपकार नहि करऽ चाहै छी, ककरो अहाँ सहयोग नहि करऽ चाही, तऽ चिन्तन जे नकारात्मक रहत तऽ कतबो अहाँ योगा कऽ लेब एकर अहाँ पूर्ण रूपेण आरोग्य। एहि लेल सबसँ पहिने आवश्यक अछि लाल बहिन कि चिन्तन अहाँके छै से आरोग्य हेबाक चाही, स्वस्थ हेबाक चाही आ सकारात्मक हेबाक चाही।
1: सदैव ई प्रयास रहबाक चाही जे हमरा जेना केओ हमरासँ ककरो उपकार भऽ जाए तऽ हम जरूर कऽ दी।
0: अरे अपन सबके आकाशवाणीके मनोग्राम अछि अहाँके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित हेबाक चाही, सब सुखी रहैत प्रसन्न रहैत, सबके विकास हेतु, ओहिमे ने
1: ओहिमे ने
0: हमरो सबके विकास हैत।
1: आ खाली हमरे टा विकास हैत आ बाकी के नहि, तऽ ई तऽ नहि कोनो बात भेल। हमर देशके विकास हुए, हमर गाँवके
0: विकास
1: हुए, युवा लोकनिके किया जोर देल जाइ छनि जे हुनका पास बुद्धि छनि, बल छनि, जज्बा छनि, तऽ ऊर्जा छनि, तऽ तखन जे ओ कोनो काज करता, जएह काज करता, पढ़ाइ करै तऽ, व्यवसाय करै तऽ, उद्योग
0: कहल गेल छै अहाँके उदार चरितानंग वसुधैव कुटुम्बकम्, जे उदार चरित्रके व्यक्ति अछि ओकरा लग वसुधा जे छै कुटुम्ब छै, अपन छै।
1: हँ,
0: तऽ सबके अपन बुझियौ आओर सबके सहयोग करियौ, आ जँ सबके अहाँ सहयोग करबै, सम्मान देबै
1: तऽ
0: अहूँके अहूँके भेटत निश्चित रूपसँ
1: छै।
0: ई तऽ अहाँके परस्पर छै, बुझलहुँ कि नहि। दोसर हाथसँ भेटबे करत,
1: हँ, अपना सबके विश्वास
0: है। अच्छा, युवा लोकनिमे देखै छियनि सहनशीलताके कमी, तऽ सहनशीलताके गुण बढ़ेबाक
1: चाही।
0: अगर माय बाप पढ़ै लए डाँटि रहल यऽ तऽ माय बापके गप पर कोनो क्रोधित नहि हेबाक चाही।
1: ककरो नहि, माय बाप की मानि लिअ, अगर केओ पासो आसो पड़ोसके केओ कहलनि जे अहाँ पढ़ाई करू नीक,
0: उचित सलाह देलनि,
1: सलाह दै छथि तऽ ओहि बातके मानबाक चाही,
0: नहि कष्ट हेबाक चाही।
1: गलत काज करै छी तऽ केओ अगर मुँह पर कहि देला तऽ अहाँके नीक,
0: अहाँके हितैषी
1: छथि, अहाँके मुँह पर बात कहला, परोक्षमे अगर कहता तऽ कोनो फायदा नहि अहाँके
0: हैत। देखियौ, जैसे अहीके संगे अहाँके गाम घरके जे समय अछि ओ सम्पन्न भऽ गेल, हमसब खेती पथारीके कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली। तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रममे किसान भाई लोकनिके हार्दिक स्वागत अछि। तऽ सबटा बहिन, कोना की खेती बाड़ी भऽ रहल छै से कहू।
1: सबसँ पहिने तऽ किसान भाई लोकनिके ठीक कहलहुँ, स्वागत करै छियनि आ कार्यक्रममे नमस्कार करै छियनि। देखियौ गोपी भाई, किसान भाई लोकनि तऽ सब दिन काज करै छथि, कोनो हाथ पर हाथ धऽ कऽ तऽ कहियो नहि बैसै छथि, कहियो कोनो फसिल लगाबै छथि, कि कहियो तरकारी लगबै छथि, कि कहियो फल लगबै छथि, लेकिन खेतीसँ तऽ जुड़ल रहै छथि। मुख्य गप हमरा सबके ई अछि जे बीजोपचारके मतलब कोनो फसिल लगबै छथि ओकर बीजोपचार कऽ कऽ तहन लगेबाक चाही। किया तऽ हमरा सबके बीजोपचारके मने प्रसंग अपना सब गप्पे आइ कऽ रहल छी। बीजोपचार बड़ आवश्यक होइत अछि कोनो फसिलके लेल। फसल लगेबासँ पहिने बीजोपचार अवश्य करबाक चाही, एहिसँ 2 टा लाभ होइत अछि गोपी भाई। एहिसँ फसल स्वस्थ रहैत अछि आ रोगरोधी होइत अछि।
0: रोगरोधी होइत अछि, हाँ, एकदम फसिल जे होइए पुष्ट होइए, हाँ, नमहर फल होइए। तऽ बीजोपचार अहाँ की करी, बहुतसँ पहिने बियाके फफूंदनाशक, कीटनाशक या जैविक कल्चरसँ उपचारित करबाक एकटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया अछि। तऽ ई बियाके जे शुरुआती बीमारी आओर कीटसँ बचाबैत अछि, अंकुरण क्षमताके बढ़ाबैए आ फसिलके उपजमे लाल बहिन 15-20% तकके वृद्धि होइए।
1: कतेक एहिसँ लाभ छै, एतबे नहि गोपी भाई। देखियौ, बीजोपचार कतेको विधिसँ कयल जाइत अछि, जेना अहाँ कहलहुँ ने।

0: जेना जीवाणु बीजोपचार, स्लरी बीजोपचार, सुखल बीजोपचार, भीजल बीजोपचार, गरम पानिसँ बीजोपचार, सूर्यक तापसँ बीजोपचार, राइजोबियम कल्चरसँ बीजोपचार, मने एतेक रास मने बीजोपचारक से विधि अइ।
1: तऽ देखियौ तऽ उचित तरीकासँ जे बीयाक उपचार करब, एम अहाँके एफ आई आर के जे क्रम छै ओ अहाँके पालन करबा, जेना फफूंद नाशक भेल फंगीजीसाइड, सबसे पहले बीया के फफूंद नाशक दवाई जेना कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से एकरा उपचारित करी। आ ई बीया और माटि जनित जे रोग होइया ओकरा ई रोकैया। कीटनाशक जे भेल इंसेक्टिसाइड, ओ एकर बाद कीटनाशक में अहाँके भए गेल इमिडाक्लोप्रिड उपचारित करी, जे शुरुआती कीड़ा मकोड़ा के दीमक के हमला से फसल के रक्षा करैत अछि। आ जैविक राइजोबियम कल्चर जे अंत में अहाँ के दलहनी फसल के लिए राइजोबियम या PSV जेहन जैविक कल्चर के लिप लगाबी, ई जड़ में की करे कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करे, मतलब नाइट्रोजन बढ़ाबे। नाइट्रोजन जे फसल के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, बुझलहुँ, ऐसे की हो उपज क्षमता बढ़े छे। आ ध्यान रखे के जे गप छे कि जो अहाँ फफूंद नाशक, कीटनाशक और जैविक कल्चर तीनों को उपयोग करे छी तो हमेशा अ क्रम में करी, पहले फफूंद नाशक उपयोग करी, ओकर बाद कीटनाशक करी और अंतिम राइजोबियम कब उपयोग करी। हाँ, आ छाया में सुखाबी उपचारित बीया के कखनो
0: सो, हाँ हाँ
1: एकदम छाहिर में कोनो सोझे धूप में ओका नहीं सुखेबा के चाहिए, बराबर छायादार जगह पर सुखा ली और बाग करे से पहिने 4 घंटा के अंदर में ओकरा उपचारित करी।
0: हम्म,
1: मात्रा छे से कृषि विशेषज्ञ के द्वारा बताएल गेल जे अनुशंसित मात्रा है कि प्रति किलो बीया पर दवाई के कते हेबाक चाहिए, जे ग्राम मिलीमीटर है ओकरे उपयोग करबा के चाहिए। आ उपकरण बीया का हाथ से रगड़े के बजाय जो पोलिथीन के थैली या उचित बीजोपचार जो मशीन हुई है सीड ड्रेसर के उपयोग करी, ताकि दवाई के जो है वो सामान परत अहाँ फसल पर चढ़ा छे। तो ये सब जो ध्यान में रखब गप का, तो निश्चित रूप से जो फसल हैत अहाँ के लाल बहन रोग रोधी है,
0: उत्पादन बढ़िया है,
1: पुष्ट है,
0: पुष्ट है,
1: अच्छा स्वदगर है,
0: स्वदगर
1: है। आ जखन ई सब गुण है तखन तो समझ लीजिए गीत नाद सुने के मन करो
0: निश्चित रूप से। हाँ, से अहाँ कहलो। आ एक टा और गप कह दे छन किसान भाई लोग के, जे फसलक बिया के जे उपचारित करबा से पहिने अहाँ बहुत रास गप जानकारी कहलियन है, ई एक टा सावधानी बड़ आवश्यक है। सबसे पहिने उपचारित रसायन अथवा दवाईक एक्सपायरी तिथि देख लेबाक चाही, संगे एकर निर्धारित मात्रा के व्यवहार करबाक चाही। आ उपचारित करबाक बाद निर्धारित अवधि धरि अहाँ कहबे के लिए छाहरि में सुखाबी। आ ई दवाई के डिब्बा जे छै तकरा जहन उपचारित करी तो डिब्बा के चाहे झोरा में जे छै ओकरा माटि में गाड़ि देबाक चाहिए, ओकरा खुजल स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि माल जाल या छोट बच्चा ओकरा नहीं छुए।
1: हां, नहीं ओकरा छुबे छै से
0: बड़ सावधानी छै।
1: हां छै, हां
0: ठीक है कहलौं। आ जहन एतेक नीक से सब
1: हां तखन तो उपजा नीक हेत ना, तो उपजा नीक हेत बाजार में बेच के अहां एकदम कैसा नीक
0: कमाएब। जब में पैसा रहै छै तो मन लोग के प्रसन्न रहै छै, हर्षित रहै छै, कहते छै मन हर कीत गावे गीत
1: गीत
0: तहन गीतनाथ सुने के मन होइ छै।
1: एकदम तो गीतनाथ सुनल जाए, हम सब
0: सुंदर सन लोकगीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय के रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी, वही गली नली है, वो पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका, यही काम बेसी।

0: खास बच्चे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: छोटछिन विराम के उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई आ संगमे छथि लाल बहिन। लाल बहिन, किछ विज्ञापन से पहिने अपने सब गीत सुने छलो मीरा कुमारी के सर स्वर में दर्शन लेल मैया।
4: आशा करे छी जे सब गोटा के गीत खूब निक लागल, हमरो सबके खूब निक लागल।
3: वास्तव में देखियो माँ भगवती के आशीर्वाद से है जीवन में सर्वांगीण विकास होते,
4: सबके विकास होय से होय छै।
3: किछ गलतियो हमरा सब से भ जाइया तो कहल गेल कि पुत्र को पुत्रंग भवति माता को मातान, हुनक आशीर्वाद हुनक स्नेह बनल रहैत अछि।
4: नारायण
3: खुद कहलखिन कि जे काज नहीं करल जे अपना लेल तत्पर नहीं हैत ओकरा हाथ हमेशा हमू
4: उठा देबे
3: तो कहबा के मतलब ई छै कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा आ जो जस करे सो तस फल चाखा। बुझलहुँ
4: तऽ देखियो एखन गप सप करै छलहुँ अपना सब जे बीजोपचार पर केलहुँ। आब देखियो अपना सब किसान भाई लोकनि तऽ ओना अपने बड सजग रहै छथि, साकांक्ष रहै छथि, लेकिन गोपी भाई एकटा आओर बहुत आवश्यक गप छै जे किसान भाई लोकनि के हमसब बेर बेर कहै छियनि जे रासायनिक खादक उपयोग ओ निश्चित रूपसँ बन्द कऽ देत, एकदम बड्ड जतऽ आवश्यक होइ देनाइ ओतहे देत, नहि तऽ जीवाणु खादके प्रयोग करैत,
3: जैविक खादके उपयोग करैत,
4: प्राकृतिक खेती करैत, जाहिसँ कि हमर जे जमीन जे हमर जे भूमि अइ एकर उर्वरा शक्ति बनल रहै।
3: देखियौ ने, चारू दिस अहाँके प्रदूषण पसरि रहल छै। आब एतेक रासायनिक खादके अंधाधुंध उपयोग भऽ रहल यऽ कि भूगर्भके जे जल अछि ओहो प्रदूषित भऽ गेल, जे हमसब छै से अहाँके समरसेबुलसँ लै छी, चापाकल तऽ कतेक जगह सुखि गेल हँ, आ समरसेबुल जे खिंचैया पानि ओहो अहाँके रासायनिक खाद से युक्त अछि।
4: कतो न कतो एकर सबके भागी तऽ हमहुँ सब छी,
3: एकदम भागी छी।
4: बेसी से बेसी गाछ वृक्ष लगेबाक चाही।
3: देखियो कहबाक हमर सबके जे पूर्वज छलथि संतोषी छलथि, आ प्रकृति जे अछि अहाँके आवश्यकता के पूरा करत, अहाँके लालच का महत्वाकांक्षा के पूरा नहि करत। अपना सबके जे पूर्वज छलथि कहै छलथि कि जे सूखल गाछ हो बेटा ओकरा काट छै से,
4: आ
3: एकटा गाछ अगर काट तऽ दसटा लगो
4: ओही जगह पर फेर नया गाछ लगाओ।
3: आब तऽ हमसब सूखल गाछ छोड़ू, हरियर गाछ के काटे से छै से संकोच नहि करै छी, आ गाछ काटि लै छियै लगाबे के वक्त में छै से एकदम नहि लगबै छी।
4: ई तऽ एकदम बहुत, ई तऽ एकदम सोच लेबाक चाही जे हमरा गाछ जीवन में लगेबाके अछि। कोनो देखियो आइ कोनो होइ जाय अपना हमरे सब गोटा अपना सब जन्मदिन मनबै छी, हम पूछै छी जन्मदिन मनबै छी अहाँ केक नहि बिसरै छी लेकिन गाछ लगेनाइ किए बिसरै छी?
3: अहाँके जे हमर सबके जे वेद यऽ, वेद कहैत अछि ने कि पितृ ऋण होइ छै, देव ऋण होइ छै, ओनाहिए प्रकृति ऋण होइ छै। प्रकृति जे अहाँ ओते दे तऽ प्रकृति के लेल अहाँ की केलिए? की केलिए तऽ प्रकृति के, तऽ प्रकृति के सेवा तखने ने हेतै जखन कि हमसब प्रदूषण कम पसारबै, बेसी से बेसी गाछ वृक्ष लगेबै, पोखरि खुनेबै, इनार खुनेबै।
4: खाली कहले जात नहि, अपनो तऽ हमरा की विवेक कहैए?
3: हँ,
4: सेहो ने करबाक चाही।
3: मानव के जँ अपन विवेक से नहि काज करै छै तैं नहि भऽ रहल छै जे दुर्गत छै। अहाँके देख रहल छी एखन जे डकहा रोध पड़ि रहल अछि, किया तऽ हमसब लालच मे प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के लिए।
4: मौसम में बरखा नहीं होइए,
3: एखन मानसून के समय चल रहल अछि,
4: कमजोर भऽ गेलै देखियौ
3: मानसून के एहि समय मे तो मूसलाधार बरखा होइत छल, एखन बरखा के दर्शन
4: पानि भेल तऽ किसान भाई लोकनिके जे खेत के ओरियान भेल हेतन तऽ ओ बिचरा खसेता, कते गोटा के बिचरा भऽ गेल हेतन तऽ वो करता।
3: जे अपना जे साधन सम्पन्न छै ओ सब अपना छै से अहाँके खान कऽ रहल छै, मुदा छै से जँ बरखा नहि हैत तऽ ई
4: जे
3: कृत्रिम जे साधन यऽ ओहि साधन सँ अहाँके नहि हैत छै से।
4: धान
3: पर बेसी लगे, आब तऽ खैर एहन एहन धान के उन्नत प्रभेद भऽ गेल हँ कि कमो जल मे छै से भऽ जाइए।
4: वएह किसान भाई लोकनि के लगाबक चाही किया तऽ पानि के स्थिति तऽ देखिए रहल छथिन, ओही हिसाब सँ अपन काज।
3: किसान भाई को हमसब जे मौसम सूचना दऽ देबन तऽ एहिसँ की हैत कि छै से कोई मौसम सूचना के आधार पर ओ अपन काज करता,
4: हड़बड़ाइ नहि छथि,
3: हड़बड़ाइता नहि।
4: तऽ पहिने मौसम कहि दियौन गोपी भाई।
3: हँ हँ, तऽ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के दिस से जारी 20 जून से 24 जून धरि जे 2026 मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश भाग में गर्म आ शुष्क मौसम रहबाक संभावना है। 23-24 जून के दौरान एक दू स्थान पर

406 मिलीमीटर हलुक वर्षा भ सकैए आ जखन कि मधुबनी जिलामे 24 जून के लगभग 65 से 70 मिलीमीटर भारी वर्षा होइके संभावना अछि। अधिकतम तापमान जे हैत अधिकांश जिला में 38 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि आ जखन कि सारण गोपालगंज आ पूर्वी चंपारण जिन किछु जिला में तापमान 40 से 42 डिग्री पहुँच सकैए जैसे लू की स्थिति बनि सकैए। न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि। 21 से 23 जून के दौरान बेगूसराय सारण सिवान पूर्वी पश्चिमी चंपारण के कईटा स्थान पर हीट वेव के स्थिति बन सकी एकर विपरीत दरभंगा मधुबनी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीतामढ़ी वैशाली जिला में कतौ कतौ मेघ गर्जन आ तेज झोंका के साथ हवा चले के अनुमान कल किछ हलुक वर्षा भेल रहा मेघ गर्जनों भेल रहा आ भोरका जे सापेक्षिक आर्द्रता अछि ओ 65 से 70% आ दोपहरिया के सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 30% रहबाक अनुमान अछि आ हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा में 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल सकैए आ पूर्वानुमान अवधि के दौरान आकाश में हलुक मेघ

0: हाँ,
1: मेघ गर्जनों भेल रहा। आ भोरका जे सापेक्षिक आर्द्रता है ओ 65-70% आ दोपहरिया के सापेक्षिक आर्द्रता 25-30% रहबाक अनुमान है। आ हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा में 7-12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल सके। आ पूर्वानुमान अवधि के दौरान आकाश में हलुक मेघ बनल रहे के संभावना है।
0: इस हमर सबके मौसम
1: मौसम पूर्वानुमान छै।
0: तो मौसम के देखैत किसान भाई लोग अपन काज करैत जाहि ठाम बरखा के अनुमान है तो ठीक छै, जे काज में जेना अखन बरसाती तरकारी लगवा के बेर है तो नहीं पटायब, बरखा भ जेतै तो देख लेब। हाँ, ओहि हिसाब से बुझल रहै छै तो उहा पो नहीं होइ छै, लोग आराम से अपन काज कर लैया।
1: अखन तीमन तरकारी के लगाबे के समय है। हाँ, खीरा भेल, अहाँके सजमनि भेल, करैला भेल, ई सब अहाँ लगा सकै
0: तैयारी भ गेल छन तो
1: लगा सके छी।
0: आ बरखा छिटपुट कनी मने भ जाय छै त कनी जा सहयोग भ जाय छै, अब कम पटाव पड़तन पटौनी। आप देखियो गोपी भाई, आप कनी पहिने किछु मनोरंजन भ जाय तहन फिर आगू गप सप हेतै।
1: हाँ हाँ, जितना तो जीवन के आगू बढ़े लेल जीवनक विकास लेल बड़ आवश्यक है।
0: कार्यक्रमों में जहन मनोरंजन नहीं होइ छै तहन होइ छै जे नहि की काज मैंने कैल जाए से वाला बात भाई छे ना। किसान भाई लोग के एखन सांझुक बेर जे होइ छन ने से उनका मनोरंजन के बेर होइ छन,
1: सरस और सरल बने लेल आवश्यक के ओमे गीत ना धुए। तो हम सब पूनम कुमारी के स्वर में एकटा गीत सुनी।

0: पूनम कुमारी के स्वर में ई हम सब छै से फसिल गीत सुनै चलो बड़ निक फसिल गीत छै
1: जेने बेर एखन धान के रोपरो के बेर है जे किसान माय ओकर के बिचरा तैयार भगल छन रोप के रोपनी क सकै छ बरखा भेबो के लिए कने मने कतो
0: क काल तक किछ वर्षा भेल
1: आ नै त अपनो सब पटौनी क क
0: हां अपनो सब जे जे बोरिंग छ जिनका पास छन जिनका पास दमकल छन हां
1: सुविधा छन
0: तो अपना केले थ आ देखियो एखन जे किसान भाई लोकन के जे समसामयिक सुझाव है कि वर्तमान में मानसून के कमजोर स्थिति के देखे किसान लोकन के सलाह देल जाते कि वो उसगर जमीन में धान के खेती नहीं करें आ जे किसान के पास पटौनी के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है वो मध्यम अवधि वाला धान के किस्म जना राजेंद्र नीलम है राजेंद्र भगवती है राजेंद्र सरस्वती है राजेंद्र श्वेता के बिचरा बिया स्थली में गिरा सके बिया स्थली में पर्याप्त नमी बना के रखने आ गाछ के सूखे से बचाव के लिए आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक पटौनी करी वर्तमान कमजोर मानसून परिस्थिति के देखते विशेषकर उचगर जमीन में धान के बदला वैकल्पिक फसल के खेती पर विचार करवा के चाहिए आ किसान लोग के रामतरोई भेल अहाँ के सजमनि भेल खीरा भेल करेला भेल ई तीमन तरकारी के बौ करे के सलाह देल जाइए
1: हम
0: ई तीमन तरकारी के फसिल में खर पात नियंत्रण हेतु नियमित कमौनी करी जैसे फसिल के वृद्धि और विकास रुक सके
1: आप देखियो हमर सबके कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भ गेले एकरा समेटी आ किसान भाई लोकन से चलबाक आज्ञा ले छी नमस्कार गोपी भाई
0: नमस्कार लाल बहिन।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 65 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार श्रेष्ठ भारत के लिए कर रही है कार्य। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल राज्य भर में सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। रेलवे आज और कल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का कर रहा है परिचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबु सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पार्श्व गायिका अलका याग्निक, सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से विभूषित किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों और कृषि

0: संस्थाओं के हित में नैफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया है।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नैफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नैफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचारों और संकल्पों को साकार किया जा रहा है। श्री चौधरी पटना स्थित भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने उनकी स्मृति में पटना में एक भव्य पार्क बनाने की घोषणा भी की है।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम सभी लोगों को याद रखना होगा, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आपकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा में रखना है और आपको स्वस्थ करते हैं। अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन एक भव्य नया पार्क
0: भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर 25 जून को राज्य भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जायसवाल ने आज पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जेपी सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा कल प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज और कल कुल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आज रात पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, भभुआ रोड और नवगछिया समेत विभिन्न स्टेशनों से सहरसा, सिवान, बेतिया, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल बिहार शरीफ, राजगीर, क्यूल, नवादा, बक्सर, झाझा, गया, सुपौल, बेतिया, पूर्णिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और कटिहार समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने ऋण वितरण को लेकर बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ऋण वितरण में बैंकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के मुकाबले अब तक बहुत कम ऋण वितरित किया जाना चिंता की बात है। श्री यादव ने बैंक अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी भी दी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। श्री कुमार आज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन के बाद समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री कुमार ने बैठक में पीएमसीएच के किसी भी वरीय अधिकारी की मौजूदगी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5 चीनी मिलें खोलने का लक्ष्य

0: रखा गया है। पटना में गन्ना नर्सरी योजना और डिजिटल गन्ना सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि गन्ना आधारित उद्योगों के समग्र विकास के लिए विभाग ने कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान और IIT पटना के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है? इधर तो
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए पुलिस मुठभेड़ मामले में जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुठभेड़ में मृत युवक भरत तिवारी की मां के बयान के आधार पर इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजावलपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक इम्तियाज अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक बेस मशीन, एक बैरल, 3 अर्धनिर्मित मैगजीन सहित हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दोपहर बाद भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और आसपास के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है।
5: दिनांक 24 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर वज्रपात की घटना दर्ज की गई। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया है कि बलिया प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगामी मॉनसून के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सुपौल जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के क्रम में जिला आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता मोहम्मद तारिक और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने आज जिले के किशनपुर और सरायगढ़ अंचल का निरीक्षण किया। इधर किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिले में संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने बैठक में राहत और बचाव कार्य, आश्रय स्थलों, चिकित्सा सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था तथा NDRF SDRF जवानों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की है। रोहतास जिले में आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकटी गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में बिहार पुलिस के कई जवान घायल हो गए। FCI के चावल लदे एक ट्रक ने पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस में पीछे से टक्कर मार दी।

0: दुर्घटना में 3 पुरुष और 9 महिला जवान घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला पुलिसकर्मी नंदनी कुमारी को सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया है। विक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
1: ये जो कंपनी आ रही थी बेगूसराय से आ रही थी, बेगूसराय से यहाँ रोहतास मुख्यालय में, फिर मुख्यालय से इनका जगह जगह मुहर्रम के अवसर पर थाना में पोस्टिंग किया गया था। तो उसी के क्रम में बस से ट्रेवल कर रहे थे तो एक FCI का ट्रक इनको पीछे से ठोकर मार दिया है। तो जिसमें कुल 9 फीमेल कांस्टेबल और 1 मेल कांस्टेबल इंजर्ड हो गए हैं।
0: वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के तत्वावधान में निजी चैनलों की प्रतिस्पर्धा के बीच लोक प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रासंगिकता को लेकर एक सर्वेक्षण किया जाएगा। विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय अकादमिक टीम और बोनाफाइड जर्नलिस्ट सोसाइटी विभिन्न चरणों में ये सर्वेक्षण करेगी। जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अररिया जिले में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों में नशा मुक्ति को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनखर चौक के पास एक दोपहिया वाहन के शोरूम में अगलगी की घटना में कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर दौरे के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋतिक को निलंबित कर दिया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह कार्रवाई की है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनौधा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 800 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 65 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
1: मधेपुरा जिले के NH 106 पर फुलौत स्थित निर्माणाधीन कोसी मेगा ब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है। बीते दिनों जिले की प्रभारी मंत्री शीला कुमारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस फोर लेन पुल के बन जाने से बीरपुर से बिहपुर तक सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र में व्यापार, कृषि और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इधर जिला सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल में 20 बेड का हाईटेक पोषण पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। यहां नवजात शिशुओं से 5 वर्ष तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज और विशेष देखभाल की जा सकेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह केंद्र बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ धाम में लगने वाले श्रावणी मेला की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधिकारी अभिषेक

0: रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, पंडाल, राहत शिविर और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा में जिले के एक दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सफल अभ्यर्थियों में अखिलेश कुमार, मनिका सिंह, शुभम कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद आदिल सहित कई उम्मीदवार शामिल हैं। उनकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। सफल अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और सही रणनीति के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
1: मेरा नाम राहुल कुमार है। मैंने 70th BPSC में 1192 रैंक मिला है और रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। पहला तो श्रेय तो सबसे पहले मेरे घर वालों को, माता पिता को जाता है। फिर उसके बाद जो भी टीचर्स जिन्होंने हमें गाइड किया, उसके बाद खुद के मेहनत को, क्योंकि 4 साल तक मोटिवेट खुद को रखना, तैयारी करना, इट्स अ लॉन्ग पीरियड।
0: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जब से 14 से कार्यभार संभाले तब से हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई और आर्थिक नीति ये हमारा जो है ये काफी ठोस रहा है, जिसके वजह से आज हमारा देश काफी मजबूत हुआ है आर्थिक दृष्टिकोण से। दूसरा जो हमारा विश्व स्तर जो हमारा काम था, सम्मान था, हमारा मान था, उसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव के वजह से जो हम लोगों का प्रभाव पूरी दुनिया में रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग कहीं पीछे नहीं है। राम मंदिर बन रहा है जो लगभग 500 साल से अटका हुआ था, और आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, नक्सलवाद गृह मंत्री जी के प्रयास से पूरी तरह खत्म हो गया, देश हमारा लगभग नक्सल फ्री होते जा रहा है, ये तमाम काम पूरे देश में हो रहा है।
0: बीते दिनों आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले के विभिन्न निकाय क्षेत्रों में नगर सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मधेपुरा में बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच के तत्वावधान में नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 101 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बल दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विश्व माहवारी स्वच्छता को लेकर जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने रेड डॉट चैलेंज के साथ अपने हाथों पर लाल बिंदु बनाकर माहवारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और इससे जुड़े सामाजिक मिथकों को दूर करने पर विशेष जोर दिया। जिले में भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय में माई बर्थ माई अर्थ मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अभियान के तहत अब तक 3000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और पौधों की नियमित देखभाल पर जोर दिया गया। इधर भारतीय जननाट्य संघ इप्टा मधेपुरा की ओर से विमेंस कॉलेज परिसर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और कलाकारों ने विभिन्न पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। मधेपुरा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गौशाला परिसर समेत अन्य संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और योग के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।
3: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
4: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रोग का यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में बोल हैं संतोष आनंद के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म प्रेम रतन धन पायो का यह गीत सुनिए पलक मुच्छल एवं साथियों की आवाज में। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है।

अब सुनिए, कुदरत फिल्म का यह गीत विनोद राठौर एवं अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल हैं इंदिवर एवं देव कोहली के, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है।

अभी आप सुन रहे थे साथी फिल्म का यह गीत कुमार सानू की आवाज़ में, बोल थे समीर के और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार, कार्यक्रम सिंगरहार सुनिहार समस्त गोटे के स्वागतक संग हम छी माला झा। साहित्यिक एहि कार्यक्रम में आई पद्य साहित्यक किछ गप करब, ताहू पर सँ मैथिली खंड काव्यक, जे महाकाव्यक सदृश्य खंड काव्य प्रबंध काव्यक एक गोट प्रकार अछि। महाकाव्यक एक भाग वा खंडक अनुसरण के निहार काव्य खंड काव्य कहबैत अछि। एहिमे जीवनक सर्वांगीण चित्रण नहि रहि ओकर एकटा अंशक चित्रण मात्र रहैत अछि। तैं ओहन खंड जीवन में महाकाव्यक शैली में वर्णित अछि, कलात्मकता सँ ओतप्रोत अछि खंड काव्य थिक। डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन मैथिली साहित्यक इतिहास में अपन उदार दृष्टिक परिचय दो बहुतो प्रकारक रचना के खंड काव्यक परिधि में लो अन्य छथि, मुदा से उचित नहीं। वस्तुतः मैथिली में दुई प्रकारक खंड काव्यक उपलब्ध होइत अछि, अनुदित आ मौलिक। अनुदित खंड काव्य मध्य अबैत अछि, परमानंद दत्त, छेदी झा, मधुप, शशिकांत शर्मा आ आर सी प्रसाद सिंहक कालिदासक प्रसिद्ध खंड काव्य मेघदूतक मैथिली रूपांतर, गौरीनाथ झाक भर्तृहरि निर्वेद काव्यक मैथिली अनुवाद आ पोद्दार रमावतार अरुणक अशोक पुत्रक, डॉक्टर केदारनाथ लाभक मैथिली अनुवादक पाछा एकमात्र उद्देश्य रहल अछि मातृभाषा मैथिली में खंड काव्यक भंडार के भरब। मौलिकी मौलिक मैथिली खंड काव्य में प्रमुख अछि उपेंद्र नाथ झा व्यासक सन्यासी, मथुरानंद चौधरी माथुरक कृषक, डॉक्टर केदारनाथ लाभक लखीमा रानी आ भारती, रमाकर

जीक शरशैया आ रविन्द्रनाथ ठाकुरक सीता। माँ जानकी सीता जिनक नाम स्मरण में अबते अद्भुत शक्तिक अनुभूतिक आ श्रद्धा भक्तिक भाव हृदय में अनायासे आबि जाइत अछि।

लिख मैथिली खंडकाव्य में प्रमुख अछि उपेंद्रनाथ झा व्यासक सन्यासी, मथुरानंद चौधरी माथुरक कृषक, डॉक्टर केदारनाथ लाभक लखीमा रानी आ भारती, रमाकर जीक शरशैया आ रविन्द्रनाथ ठाकुरक सीता, माँ जानकी सीता जिनक नाम स्मरण में अबते अद्भुत शक्तिक अनुभूतिक आ श्रद्धा भक्तिक भाव हृदय में अनायासे आबि जाइत अछि।

0: आई अपने लोगों खंड काव्यक गप सुन रहल छी। सन्यासी कीचक वधक समान अमिताक्षर छंद में रचित श्री व्यास जी अनुपम खंड काव्य थिक। एहिमे विश्वनाथक वैराग्य भाव घर छोड़ि हिमालय पर चल जायब आ वर्तमानक महत्व के ज्ञान भेला पर पुनः परिवार में एबाक कथा वर्णित अछि। मुदा ओ तखन घूरै छथि जखन विरह वेदना सहित सहित पत्नीक अंत समय से निकट आबि जाइत अछि। एकर अंत दुखांत अछि आ तें नवीनताक परिचायक अछि, कारण जे भारतीय काव्यक समापन सुखांत होइत अछि। कवि एहिमे सामाजिक धार्मिक रूढ़िग्रस्त अवस्था के जेहन आलोचना काव्यत्वपूर्ण शैली में केने छथि से सर्वथा अभिनंदनीय अछि। युगक कटु सत्य कवि के अत्यंत प्रभावित केने अछि। वर्तमान स्थिति में दूषित ग्राम्य समाजक भर्त्सना कवि कोन प्रकारे केलन तेकर अंश सुनी। मूर्ख बनक यदि इच्छा अछि रहु गाम, अक्षरशः ई सत्य गाम रहि लोक सीखल केवल क्रोध राग विद्वेष मत्सरसा आनक उन्नति के देख ईर्ष्यानल स दग्ध चित्त असंतोष आर्थिक संकट पंगु संकुचित दृष्टि दूषित ग्राम्य समाज सकल ग्रामीण। एक ठाम कविक आक्रोश सेहो द्रष्टव्य अछि। धर्मक नामे होइछ एतौ अधर्म, ई समाज सुख दिन में एकर महत्व हृदयहीन निर्मोह अपन अस्तित्व राखे हेतु करे कत अत्याचार। मथुरानंद चौधरी माथुरक कृषक चार सर्ग में भारतीय कृषक के मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करैत अछि। बेचारा कृषक एक बेर महाजन सँ कोनो काजक हेतु पैंच लैत अछि, जी तोड़ि हुनक खेती में परिश्रम करैत अछि, मुदा दुर्भाग्यवश तैयो ऋण शोध नहि होइत अछि आ एहि कारणे ओकर समस्त परिवारक सत्यानाश भऽ जाइत अछि। अंततः महाजन कृषकक डीह पर हर जोतबैत छथि। कथोपकथन में नवीनता चमत्कारपूर्ण वर्णन रसक सम्पुष्टि नव रीतिक गीतक प्रयोग छंद भिन्नता आ समग्र रूपे सामाजिक विषमता के समाप्त के निहार स्वर जे एमे सर्वत्र ध्वनित अछि से एकरा अत्यंत महत्वपूर्ण आ प्रगतिशील बना देत अछि। कृषक के संदर्भ कविक उक्ति द्रष्टव्य अछि। कृषक आंगन सुन्न परल छल, टूटल टाट उजार सौंसे आंगन लतेर रहल छल, हरियर हरियर दुबक झार। दुखमय दिवस बितौने कृषकक एक काज छल शेष, कोना महाजन ऋण सधायब अतिशय भेल विशेष। एकरे हेतु कृषक पति सुत पुत्री भऽ गेल नाश, नहि तथापि छल धन पैत मन में रति भऽ गेल नाश। किछुए दिन उपरांत डीह के ज्योत बोलन धनराज, हर्षित सन भय तुरत रुपोलन आलू भाटा प्याज। लक्ष्मा रानी पांच सर्ग में अमुक्तक छंद में रचित महाराजा शिव सिंहक स्त्री सर्वगुण संपन्न पतिव्रता आ काव्य मर्मज्ञ विदुषी रानी लक्ष्माक चरित्रांकन प्रस्तुत करैत अछि। ओना तक का कल्पनाक अभाव में काव्यक रचना संभवे नहीं थिक, मुदा कल्पनाक असीम गगन में उड़ितो कवि सतत सावधान रहलाह अछि। जे कथानक में कतौ ऐतिहासिक व्यक्तिक्रम नहि भऽ जाय तब सुनल जाओ एकटा ई काव्य पाठ कृष्णमोहन पाठक सँ।
1: कविताक शीर्षक अछि भरत भूमिक शान। भरत भूमि केर शान हमहि छी, गंगा केर संतान हमहि छी,

कृष्ण मोहन पाठक के स्वर में सुन रहल छलहुं एक काव्य पाठ भरत भूमि के शान। मुक्त छंद में जे गप करी त लक्ष्मा चरित्रांकन आ कथानक के क्रम में कवि कतेक ठाम कला कल्पना काव्य जीवनक एहन सुंदर परिभाषा देने छथि जे हठात पाठकक चित्त के आकृष्ट कऽ लैत अछि। मिथिलाक सांस्कृतिक महत्वक प्रतिपादन कविक जन्मभूमि प्रेमक परिचायक थिक। वास्तव में अपन मिथिलाक विद्वताक जतेक चर्चा करी कौमे लागत। सुनी एहने सनिकटा गीत।

अरविंद कुमार झा के स्वर में सुन रहल छलहुँ मिथिला वर्णन। कार्यक्रम के अंत में सुने छी शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि हठात। मैथिली साहित्यिक कवि लोकनि के रचना ततेक उत्कृष्ट रहै छनि जे हठात पाठकक ध्यान आकर्षित भऽ जाइत छनि, माने लगले किछु ध्यान में आबि गेनाई। एकटा शब्द अछि अछार। काल्हि एक अछार बरखा भेल, अलगले छुट्टियो गेल। या शब्द विमर्शक संग आब अपने लोकन से ली आ गया। नमस्कार।

0: अभी मैथिली कार्यक्रम सिंहरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को

0: केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में

0: मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2-3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार,

0: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation, and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino.

0: India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamieson Greer and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
1: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singhalka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूति और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हॉस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम ने मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब

0: पद्म अवार्ड तीन जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अद्भुत आलिम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक्स गुलुकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत एनिनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है, और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबा बंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताज़ा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया, क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ خان کا رول مختلف تھا اور انہیں دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभ्य समाज के निर्माण में उसके सकारात्मक सोच की भूमिका अहम होती है। आज के आधुनिक युग में हम सभी असहिष्णु होते जा रहे हैं। बढ़ते भौतिकवाद और सिकुड़ते सरोकार के इस युग में किसी को किसी से बहुत खास मतलब नहीं रहा है। हम और हमारा समाज लकीर के फकीर होते जा रहे हैं। कभी कभी इसकी परिणति सौहार्द के ताने बाने उधेड़ते हुए दिखाई देने लगती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बढ़ती असहिष्णुता हमें चौंकाती भी है, यह हमें डराती भी है। अपने क्षुद्र हितों के लिए कई बार इस असहिष्णुता का खामियाजा गंभीर हो जाता है। हमारी सोच का विज्ञान भी अजीब है। किसी नकारात्मक प्रक्रिया पर वह तुरंत तवज्जो देता है, अमल करता है, लेकिन 100 अच्छाइयों सकारात्मक प्रक्रियाओं से वह जानबूझकर अनजान बना रहता है। समाज में रोजाना अनेक घटनाएं घटती हैं जिनमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हमारे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, एकता और सहिष्णुता की परम आवश्यकता है। कुछ लोग एक दूसरे के मनोभावों को अपने हित में इस्तेमाल करने की कला बखूबी जानते हैं। ऐसे में देश की सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और इसके पीछे खड़े तत्वों की पहचान हम सब के लिए बड़ा मुद्दा है। सभ्य समाज नकारात्मकता से नहीं, सकारात्मकता के पैरों से चलकर ही खड़ा होता है। ख्वाब देखने के लिए नींद चाहिए। नींद तभी आएगी जब मन शांत हो। नकारात्मकता न सोती है न सोने देती है। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति अपनी मिसाल खुद इसलिए है कि इसकी सहिष्णुता जीती और जीने देती है। अनेकता में एकता की ऐसी मनमोहक निरंतरता शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही देश की ताकत है, यही इसकी पहचान, व्यवहार और किरदार है। इस पर चोट पड़ती है तो दिल दुखना स्वाभाविक है। भारतीय समाज की गहरी मानसिकता को उजागर कर देश को गौरवान्वित करने की आवश्यकता समय की मांग है। नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती, पर सकारात्मकता को छोड़ना भी नहीं चाहिए। मगर अच्छाई और

चाय की लकीर को इतना बड़ा कर देने का प्रयत्न जरूर किया जाना चाहिए कि बुराई की लकीर अपने अस्तित्व से शर्माने लगे। हमेशा से भारतीय समाज की चार खूबियां रही हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक बाहुल्य, अनेकता में एकता, सभी को अपने में समेट लेने की शक्ति और वैचारिक व अपनी विश्व दृष्टि के अनुसार जिंदगी गुजारने की स्वतंत्रता। यदि इस दृष्टिकोण से हम देखें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में असहनशीलता और संकीर्णता बढ़ी है। हमारी सामाजिक सहिष्णुता, बहुलवादी चरित्र और भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा रही है। आज हमारे समाज में असहनशीलता और वैचारिक एवं आस्था कहीं से भी मेल नहीं खाते। समाज और देश में बढ़ती असहिष्णुता हमारे हजारों साल के अतीत और संस्कृति के विपरीत हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भारतीय समाज की मिश्रित संरचना और बहुलवादी चरित्र का जिक्र है। हमारे देश की संस्कृति सदियों के सम्मिलन और एकीकरण से विकसित हुई है। आज का समाज हमेशा नकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। अपने साथ नहीं रहने वाले को लोग अपना विरोधी ही समझने लगे हैं। तर्कशील भारतीय समाज वाद विवाद अथवा तर्क वितर्क के बजाय असहिष्णु होता जा रहा है। ऐसी सोच और प्रवृत्ति सभ्य समाज के लिए घातक और चरित्र संरक्षण में मुख्य बाधक है। हम जिस समाज में जन्म लेते, पढ़ते और अंत में अलविदा कहते हैं, उस समाज में हमें तय अनुशासन का पालन करना पड़ता है। जन्म से मरण तक हमारा जीवन अनुशासन से बंधा होता है। आज हमारे समाज का वातावरण बड़ी तेजी से दूषित व समाज विरोधी होता जा रहा है। सभ्य समाज के निर्माण में हर धर्म और जाति का अहम योगदान होता है। समाज का निर्माण किसी जाति या धर्म विशेष से नहीं बल्कि सभी धर्मों और जातियों से बनता है। ईश्वर ने मात्र एक दुनिया बनाई, पर हमने अपने स्वार्थ के कारण भारत, जापान, अमेरिका, ईरान, इराक आदि बना डाले। ईश्वर ने मात्र एक मानव जाति का निर्माण किया, पर हमने अपने निहित स्वार्थ की खातिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि धर्मों में स्वयं को बांट लिया। आज भी हमारे समाज में सभ्य लोगों की कमी नहीं है। अनेक सकारात्मक सोच समाज को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। समाज में जो भी सामूहिक कार्य होते हैं उनमें समाज के सकारात्मक सोच वाले लोगों की भूमिका अहम होती है। हम समाज में रहते हुए नित्य प्रति अपनी नई नई घटनाओं से रूबरू होते हैं। नकारात्मक सोच और प्रवृत्ति के लोगों से समाज को काफ़ी हानि होती है। वहीं सकारात्मक प्रकृति के लोगों की भूमिका से हमारा समाज सभ्य और खुशहाल बनता है। आदर्श समाज के रूप में हमारी प्रशंसा होती है। नकारात्मक सोच ने हमारे समाज को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। समाज में होने वाले लड़ाई झगड़े को समाज में मिल बैठकर सुलझाने की बजाय कोर्ट कचहरी तक ले जाने में नकारात्मक सोच हावी हो जाता है। आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। यदि हमारे समाज में सकारात्मक सोच को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जाए तो हम भी विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। घृणा और असहिष्णुता का वातावरण हमारे सभ्य समाज के विकास में रुकावट डालता है। आज का समाज आधुनिक धुन में संकुचित होता जा रहा है और इस भागदौड़ की जिंदगी में किसी से किसी को कोई मतलब भी नहीं रहता। हर व्यक्ति एकल परिवार के रूप में अपनी दुनिया बसा रहा है। यहाँ भी सकारात्मक सोच का घोर अभाव है। नकारात्मक और असहिष्णु सोच के कारण ही संयुक्त परिवार का विघटन जारी है। घर से लेकर संसद तक सकारात्मक सोच की कमी के कारण ही कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। यदि

0: पर खूब विचार करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। महात्मा गांधी का कहना है कि हिंसा का एक रूप असहिष्णुता है और लोकतांत्रिक भावनाओं के विकास में रोड़ा है। असहिष्णुता की बढ़ती प्रवृत्ति और भय का माहौल हमारे समाज को खोखला बना रहा है। सकारात्मक सोच से हम दूर भाग रहे हैं। असहिष्णुता और नकारात्मकता का प्लेग तेजी से समाज और देश में फैल रहा है। सहनशीलता का घोर अभाव देखा जा रहा है। अदृष्टता के कारण ही अज्ञानता का जन्म होता है। भारत का राष्ट्रीय जीवन का आधार संस्कृति एवं आध्यात्मिक है। हमने सकारात्मक सोच का त्याग कर विकास की अंधी दौर में सब कुछ पाने के बावजूद उन तत्वों को खो दिया है जो राष्ट्र की आत्मा है। भाषाई और जातीय विद्वेष ने हमारे सकारात्मक सोच को विखंडित किया है। अमीरी गरीबी की गहरी खाई इसे निगल रहा है। सामाजिक असमानता हमारे बीच वैमनस्यता का विष बो रही है। आज हमारे समाज और राष्ट्र में बुद्धिजीवियों एवं श्रमजीवियों में कोई तालमेल नहीं है। आज नकारात्मक सोच ने व्यक्ति परिवार और समाज के बीच का संबंध को तोड़ने का काम किया है। ज्ञान और कर्म के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हुई है। हमने संस्कृति के विरुद्ध कार्य किया है। इसके बावजूद हमने सकारात्मक सोच के बल पर समाज और राष्ट्र को उजागर करने की भरपूर कोशिश की है। भारत एक शक्ति है। भारत राष्ट्रों का गुरु है। भारत के सकारात्मक सोच की शक्ति ने विश्व को मार्गदर्शित किया है। हमारे समाज में जातिगत विषमता अनेक रूपों में उभरी है। आज के वर्तमान समाज में सकारात्मक सोच का घोर अभाव है। इसी कारण हमारा समाज विघटन के कगार पर पहुंच गया है। आज भी हमारा समाज गंभीर आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार है। आज मजबूत समाज के निर्माण में नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक सोच को अपनाना समय की मांग है। सर्वप्रथम हमें चरित्रवान नागरिकों के गढ़ने की आवश्यकता है। चरित्रवान और सकारात्मक सोच वाले नागरिक ही किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में बुनियाद से लेकर गुंबद तक के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके लिए उनके अंदर सकारात्मक सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। समाज में संपन्नता लाने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की सख्त जरूरत है। तभी हमारा समाज और राष्ट्र विश्व पटल पर अग्रणी साबित होगा। अब समय की मांग है कि हम समाज और राष्ट्र के निर्माण में नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ अपनी ऊर्जा को भलीभांति लगाएं। अंत में यह कहा जा सकता है कि यदि हम सभ्य समाज के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं तो हर हाल में सकारात्मक सोच का दामन पकड़ना ही होगा। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित होकर देश दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगी। इस प्रकार सभ्य समाज के निर्माण में सकारात्मक सोच की भूमिका अहम है। हमें हर पल सकारात्मक सोच अपनाने की सख्त जरूरत है।
1: अभी आप हिंदी वार्ता सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन

0: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फनकार। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अलका याग्निक के गाए कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनाते हैं फिल्म जख्म का यह गीत अलका याग्निक की आवाज में। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन MM करीम का है।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दोबारा का यह गीत, अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत निर्देशन अनु मलिक का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दोबारा का यह गीत अलका याग्निक की आवाज में। इसी गीत के साथ एक फनकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जाल का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अब सुनिए सरस्वती चंद्र का यह गीत मुकेश की आवाज में, बोल हैं इंदिवर के और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

अब सुनिए सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है।

सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म चोरी चोरी का यह गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है।

0: पवन में, दिल से मेरे लहर उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के समूह में। पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
1: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी का यह गीत किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ

ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।